यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से तैखा सवाए तां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ए डीडी फ्री डिश ते बुधी सकंदा आयो असने प्रोग्राम जो आगाज थी चुको है तफसील कुछ इन तरह थोड़ी देर में अवां भगत कौराम जन जो सदाबहार आवाज हूं तंखा पोए एक तकरीर पेश कई उन्वान है असो लोक वरसो तकरीरकार जनाब ढूंढ लाई उन्हीं कुछ हब वतन गीत पेश कया यह असि प्रोग्राम की तफसील ही आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है हिंसर अच्छा भगत कौराम जन जो सदाबहार आवाज बुधूं।

0: भगत कौरम जो सदाबार आवाज बुधो ये आकाशवाणी की सिंधी सरिस है हेर पेश है एक तकरीर कुमान है असन जो लोक वरसो तकरीरकार जनाब डोनल राही
1: हर कौम तारीखी सिलसिले की एक अहम कड़ी है समय के समुद्र में लहरू पुठियों लहरू ईदी रहन थी उन्होंने की गहराई में लोक वर्थ जहा अणमया अणमुलाहता मोती मिलंदा रहन था सजन खां सचिन गवासन उन्हीं तिली डेई मानायता मोती मेरे इंसान जात के सूखड़े तौर पर दिना है शाह लतीफ के लफ्जन में ये गत हवा सन ये समझ से जाऊं तेजी मंज पाता रजे मोती मेड़ियाऊं आने दिनाऊं हीरा लाल हथन से लोक वर्षे जो यो अमन खजानो हर जाति के पीढ़ी दर पीढ़ी परतंदो रहे है लोक वर्षे की मुराद के समझण लाए पहरी लोक लफ्ज की माना वाजे करण जरूरी है लोक संस्कृत लफ्ज है जैसी माना है मानू सिंधी में लोक लफ्ज कुशा की माना में कतब अचे थो सिंधी में लोक की माना है अवाम यानी आम मानू लोक वर्षे से मुराद है सभ्यता ए संस्कृति जो वो वर्षो जो कहीं कौम के संदस के नामालूम ए गुमनाम अजीम फनकार जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी पड़पंद रहो है कला है संस्कृति की रूह ए संस्कृति है सभ्यता के पैमानो कायनात की तामीर का पोए रस्ता रस्ता इंसानी वजूद नमूदार थो इंसान की दिमागी विनोड़ संदस उमंगन के लर्जिश में आंदो संदस उमंगन एहसासन ए तजुर्बन के मुजस्म रूप के कला ए कारीगरी सदो वो कें भी कौम की कला या लोक कला में उन कौम के अबाणे वर्षे से रोशनी पवे थी उन कौम की कहनी कथनी रहनी कहनी पोशाक पहराव हार श्रृंगार घर जेवर विश्वास अतीजे कृतकार शोक शोल विंद्र विरूह वगैरह की जान पवे थी लोक वर्षे में अवाम जो अक्स उतारियल हों है लोक वर्षे की तारीख भी एतरी आगाठी है जेतरी खुद इंसानी तारीख छाकाण इंसानी सभ्यता ए संस्कृति के अनंत सिलसिले में पल पल का नई कड़ी जुड़ी थी रहे माजी हाल ए मुस्तकबिल में अटूट ए गहरो रिश्तो है।

हर कौम उन रिश्ते जो मुजस्म रूप डॉक्टर अलाना चवे थो त हर का कौम अंज ए काख के पेट में पैदा थी सुभाणे के जन्म दिए थी जै कौम अज के हालतों काल के तस्वुर के अहमियत दिनी उहाई कौम सुभाणे सरही थी। हर कौम जो लोक वरसो उते जे मुल्की ए मुकामी हालतें पंगति सियासी ए तमदनी असरन सां मुतासिर हुंदो आहे पर के अहिड़ा आलमी अनासिर बहन जे समूरी इंसान जात सां वाबस्ता आहिनि जॾहिं खां इंसान पैदा थियो आहे ऐं समुझ खां कमु वठणु शुरू कयो अथसि तॾहिं खां पंहिंजनि वीचारनि ऐं अहसासनि जो कंहिं न कंहिं नमूने इज़हार कंदो रहियो आहे। वक़्त जी नज़ाकत ऐं माहौल खां मुतासिर थी इंसान पंहिंजनि जज़्बनि ऐं अहसासनि खे मुख़्तलिफ़ रंगनि ऐं रूपनि में पेश कंदो रहियो आहे। लोक वरसे खे कुझु जी माना में खणूं त लोक कला लोक साहित्य ऐं लोक संस्कृति लोक वरसे जे वसी दायरे में अची वञनि था। लोक कलाउनि में लोक संगीत लोक नृत्य लोक मुसबरी लोक संग तराशी लोक मैमारी लोक सनतगिरी वग़ैरह कलाऊं अची वञनि थियूं। अजंता एलोरा ऐं खाजूराव जी बहितरीन कलाकृतियूं सहसे आलीशान तारीफ़ी इमारतूं ऐं क़िला मंदर ऐं मस्जिदूं हैरत अंगेज़ महल ऐं मुनारा भवन ऐं हवेलियूं अॼु बि सूंह ऐं बनावट सबबि इंसान ज़ात खे मकनातीस वांगुरु छिके था वठनि ऐं इहे सभु असांजे लोक वरसे जा बहितरीन मिसाल आहिनि। लोक साहित्य खे नसुर ऐं नज़्म जी शाखाउनि में विरिहाए सघिजे थो। लोक साहित्य जे नसरी शाख में हिकु तरफ़ लोक कहाणियूं अचनि थियूं जिन में इंसानी उमंगनि ऐं अहसासनि जी अकासी हूंदी आहे ऐं कूड़ मथां सच जी ऐं बुराईअ मथां चङाईअ जी जीत ॾेखारियल हूंदी आहे त ॿिए तरफ़ क्रोधी ॿुधारतूं सत सुरियूं हुनर नूर ॾहस वग़ैरह अची वञनि था जेके इंसानी अकुल इदराक ऐं तर्क ॿुधीअ जा उमदा मिसाल आहिनि। लोक चवणी पहाका ऐं इस्तलाह बि लोक नसुर जा अहम हिसा आहिनि जेके ॾिसण में नंढड़ा पर मानवी लिहाज़ खां गहरा गंभीर ऐं समुझ तोड़े अकुल सां भरियल आहिनि। लोक साहित्य जे नज़्मी शाख में लोक गीतनि जा मुख्य नमूना जहिड़ो के लाॾो लोली छलो मोरो वेलण ओराणो पूजा गीत पंजड़ो काफ़ी वाई बैत लोहड़ो वग़ैरह अची वञनि था। कंहिंखे बाल कहाणियूं बि लोक कविता जा उमदा मिसाल आहिनि। लोक कलाउनि ऐं लोक साहित्य जूं नदियूं वरी लोक संस्कृतीअ जे महासागर में वञी छोड़ थियूं कनि। इन चवण में को वधाउ कोन थींदो त लोक संस्कृतीअ जे समुंड में इंसानी ज़िंदगीअ जो माज़ी हाल ऐं मुस्तक़बिल समायल आहे। लोक साहित्य में असांखे समाजिक इतिहास जा सुहिणा चित्र बि मिलनि था ऐं इंसानी भावनाउनि जूं सुहिणियूं झलकूं बि नज़र अचनि थियूं ऐं गॾो गॾु ऊच कदुरनि ऐं सिखियाउनि जा मानादार मोती बि मिलनि था। लोक साहित्य में क़ौम तोड़े मुल्क जे प्राचीन सभ्यता ऐं संस्कृति समाजिक ऐं सियासी ज़िंदगीअ जा लाहा चाढ़ा कदुर ऐं माण आशाऊं उमेदूं कुर्ब ऐं कुर्बानियूं देशभक्ति इख़लाक ऐं आचार वहिंवार जा दिलि खे छूंदड़ दास्तान भरिया पिया आहिनि। इन करे चई सघिजे थो त कंहिं बि मुल्क जी ॿोलीअ ऐं साहित्य जी इमारत जी पीढ़ लोक साहित्य ते ई ॿधल थींदी आहे ऐं लोक साहित्य असांजे लोक वरसे जो अहम तरीन हिसो शुमारजे थो। असांजे लोक वरसे में सियाणप ऐं अकुल जा उहे आबदार मोती आहिनि जिन जी चमक समय गुज़रंदे पाण वधीक उजागर थींदी वञे थी। लोक वरसे में प्रेम ऐं सूंह हिमत ऐं सुराई कुर्बानी ऐं हमदर्दीअ जा सवें दिल आवेद अफ़साना समायल आहिनि। लोक वरसो सभ्यता ऐं संस्कृतीअ जो आईनादार ऐं तर्जुमान आहे। उहो असांजे माज़ीअ खे हाल सां ॻंढे थो ऐं मुस्तक़बिल जे रोशन माग जो दम पिण ॾेखारे थो। सदियूं अॻु के निकल लाल गुमनाम कलाकार नामालूम साहित्यकार अजातल सुघर ऐं कारीगर गोशानशीन फनकार पंहिंजूं ज़िंदगियूं वक़्फ़ करे पंहिंजूं शख़्सियतूं पंहिंजनि कलाकृतियुनि में ओते विया ऐं इंसान ज़ात खे लोक वसे जे रूप में फनी शापारनि जा अहिड़ा अमुल हीरा मोती अता करे विया आहिनि जंहिंजी चमक ऐं रोशनी जावदान आहे। उन्हनि अज़ीम फनकार

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बस ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते बुझी सकंदा आहियो। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर प्रोग्राम में अॻिते पेश आहिनि कुझु हब वतनी गीत।

आकाशवाणी जी सिंधी सरिसा है। हिन असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियो आहे। वरी असां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए पहली अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा है कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को डीओ में मिसमैच है, उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। आप ये भी ना सोचिए कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैंडर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है, उस पर केस लिखा होता है।

0: लिमिट होती है कि कितने यूजर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड मैनर में नोटिस मिले हैं और वैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते रहेंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है और उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देशभर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। यश डवास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकी ने जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा है कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति एबीवीपी की प्रतिबद्धता को लेकर युवाओं में दृढ़ विश्वास बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ये जीत विकसित भारत के लिए योगदान के प्रति विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जापान में 20वें एशियाई खेल में भारतीय निशानेबाज एलेवेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी में मुकाबले में उतरेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इसी के साथ आज का संगीतिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई संभावनाएं लेकर आती है, इसलिए आज की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है हौसला और निरंतर प्रयास। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी मंजिल दूर दिखाई दे, लेकिन जो व्यक्ति, जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और वो नई उम्मीद के साथ हमेशा हमेशा खड़ा रहता है, संघर्ष करता रहता है, तो एक दिन वो अवश्य सफल होता है।

के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों अपने दिन की शुरुआत मुस्कान, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ कीजिए। ये छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए और अपने परिवार और अपनों के साथ समय बिताइए और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सूरज हर शाम को ढल जाता है लेकिन हर सुबह फिर नई रोशनी लेकर आता है। इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, उम्मीद का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पाने के लिए सिर्फ चाहत नहीं बल्कि जिद और जुनून भी चाहिए। जब रास्ते मुश्किल हों, लोग कहें कि यह संभव नहीं है, तब अपने दिल की आवाज सुनना और अपने लक्ष्य

की ओर बढ़ते रहना ही असली हिम्मत है, क्योंकि जिद्दी दिल हार मानना नहीं जानता। जी हाँ, गिरकर फिर उठना, रुककर फिर चलना और मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती है। तो आज की सुबह अपने अंदर के उस जिद्दी दिल को जगाइए और खुद से कहिए, मैं कोशिश करता रहूंगा क्योंकि मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। जी हाँ, और इसी जोश और जुनून के साथ सुनते हैं फिल्म मैरी कॉम का ये गीत।

विशाल डडलानी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म केदारनाथ का गीत अमित त्रिवेदी की आवाज में।

दोस्तों कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ी कर देती है जहां लगता है कि सब कुछ बस खत्म हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि हर ठहराव के बाद नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। बस जरूरत है फिर से उठने की, फिर से सपने देखने की और फिर से उड़ान भरने की, क्योंकि हार वही है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर दिल में विश्वास हो और आंखों में सपने, तो इंसान एक बार नहीं बार बार उड़ सकता है। जी हाँ, तो आज की इस खूबसूरत सुबह खुद से एक वादा कीजिए, जो छूट गया उसे पीछे छोड़ेंगे, जो पाना है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, और इसी नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई उड़ान के साथ सुनते हैं फिल्म रॉकस्टार का ये बेहद ही खूबसूरत गीत मोहित चौहान की आवाज में।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है और मुझे अनुराधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबी ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।

0: 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा तीन बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, जो कमी की है, उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, तो या उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी गवर्नमेंट के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्रप्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIR News Hindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
6: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को जीओबी में मिसमैच है, उसके सामने भी नाम लिखा हुआ है, कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। आप ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैंडर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ए आर ओ के यहाँ पे होनी है, उस पर केस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने यूजर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है, इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
7: We have to continuously be watchful of the
8: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
1: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाये रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यो में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
9: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमी सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टेक बॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसोजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। यह नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमरीकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ 200 चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से 200 के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, 200 में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सराय का लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू, दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट पे ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना। धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्ति युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
11: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any generation. genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom, or an oil marketing company mobile app. The Petroleum and Natural Gas Ministry has urged consumers who have not yet completed biometric Aadhaar authentication to do that before 1st October 2026. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
10: The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports

0: Welcome back. You're listening to Morning News. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital today. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections for proposed inclusions or deletions of name in electoral rolls, and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth-level officers will remain present at designated polling booths to receive applications. People can submit Form 6 for new voter enrollment, Form 7 for objections or deletion of entries, and Form 8 for any corrections or updating of details in the electoral rolls. Addressing the media regarding the ongoing SIR process in the national capital, Delhi Chief Electoral Officer Ashok Kumar has clarified that electoral registration officers can consider documents other than those listed in the notice during hearings on the case-to-case basis.
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को डीओ में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा.
2: Notices are being served to those who are unmapped. The notices are to address discrepancies. The list attached with the notices is not exhaustive and the voters can produce relevant documents. The EROs will consider these things on a case-to-case basis.
1: वो डिस्पोज होते जाएंगे उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे.
0: Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, ABVP, has secured three major posts in the Delhi University Students' Union or DUSU elections. ABVP's Yash Dabas won the post of President, while Riya Chavari secured victory for Secretary and Lakshya Raj Singh for Joint Secretary. However, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of Vice President. Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah have congratulated ABVP for the success in the DUSU elections. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnav said that India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. You have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: In international news, Iran has communicated its conditions to international mediators for restarting negotiation with United States. It has also warned that Tehran is prepared for a decisive war if Washington rejects its demands. Mohsen Rezai, Secretary of Iran's Supreme National Security Council, said Iran's conditions included an end to the war on all fronts, the release of frozen Iranian funds, and an end to the naval blockade. In a separate post on X, Rezai said that Iran has announced seven conditions for beginning negotiations with Washington and described Tehran's position as clear and unambiguous. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar Islands today. The Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Madhya Maharashtra, Orissa, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. On to sports now. In chess Olympiad, Indian men's team defeated Spain 3-1 with world champion D. Gukesh leading the way with a clean victory over former world championship challenger Alexei Shirov in Samarkand yesterday. Meanwhile, R. Pragyananda was held to a draw by David Anton Guijarro, while Nihal Sarin also settled for a draw against Jean Santos Latassa. In the women's section, India recorded a 3-1 victory over Mongolia. B. Savita Shree continued her impressive run with a fourth consecutive win, defeating seasoned player Bakht Kuyag. The 20th Asian Games 2026 will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines today. In today's cricket event, Indian women team will face Bangladesh in the semi-final. The knockout match will start at 10:30 a.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
4: Thank you, Saira. ABVP sweeps 3 of 4 JUSU seats and SUI rebel wins VP post, writes Hindustan Times. While the Sunday Tribune headlines, ABVP sweeps JUSU poll again, independence VP post win stuns rivals. FTA skilling incentives opening new employment avenues for youth, says Prime Minister, writes Sunday Pioneer. The Hindu also quotes the Prime Minister in its headline, developing nations wrongly blamed for emissions. The Sunday Statesman reports, Bengal bipolar drama, Mamta's Rajinagar candidate does U-turn after pull-out decision. The Asian Age headlines, India rejects new US tariffs pressure. And finally, Sunday Pioneer writes, end of an era, 1965 war hero Cook passes away. The legendary Indian Air Force fighter pilot, Flight Lieutenant Alfred Cook, played a crucial role in defending Kalaikunda in the 1965 Indo-Pak War and was awarded the V Chakra for the classic dogfight. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100-week Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andaman Nicobar. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And with that, we end the morning news. Have a great day.
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने अगले महीने की 1 तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्कभर में 1067 मकामात पर मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर रजिस्टर में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समर्थन में शतरंज ओलंपियाड में भारत के मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि इस साल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक जरूरी होगी। काबिल इतलाक सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी ग्राहकों को इन मराकज से सिलेंडर हासिल करने के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का अमल पूरा करना होगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
6: बायोमेट्रिक आधार तस्दीक इस बात को यकीनी बनाती है कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर सिर्फ मजाज और अहल कुंभों तक ही पहुंची। हर कनेक्शन को आधार तस्दीक से जोड़ने से घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडरों के कमर्शियल और सनअती इस्तेमाल में डायवर्जन की रोकथाम होगी। इसके अलावा इससे जाली और गैर मजाज कनेक्शन खत्म करने में भी मदद मिलेगी और सब्सिडी फराहम करने का अमल शफाफ और मरकूज हो सकेगा। भारत ने कहा है कि बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का मकसद किसी भी मजाज कुंबे को एलपीजी फराहम करने से इनकार करना नहीं है। वहीं वजारत ने यह भी कहा कि हर ग्राहक के पास इस अमल को पूरा करने के कई आसान तरीके दस्तियाब होंगे। भारत ने कहा कि 27 करोड़ 43 लाख सार्फिन पहले ही इस अमल को पूरा कर चुके हैं और उन्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तस्दीक का यह अमल सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम जाकर या तेल मार्केटिंग कंपनियों के एप्स पर भी पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने अब तक बायोमेट्रिक तस्दीक न करने वाले सार्फिन से अपील की है कि वो इस काम को 1 अक्टूबर 2026 से पहले मुकम्मल कर ले। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के 100 हफ्ते के तहत आज मुल्क भर में नौजवानों की शमूलियत वाले प्रोग्राम होंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने बताया कि मुल्क भर के 1067 मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद होगा। इन मकामात में 471 जिले माय भारत दफातर और 596 शराकतदार तंजीमों के मकामात शामिल होंगे।

0: ये तकरीब मोहनगीर सतह पर नौजवानों की शमूलियत का अहम लम्हा होगा, जिसमें माय भारत शराकत दार तंजीमें और नौजवान अफराद सेहतमंदाना फैसलों और नशा मुक्त मुस्तकबिल के अहद के लिए यकजा होंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जिसे पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन ने 18 सितंबर को सरहदी जिले पठानकोट से शुरू किया था, रियासत के आवाम की जानिब से इसे जबरदस्त पजीराई मिल रही है। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने कल फतेहगढ़ साहिब से यात्रा के चार मरहलों में से दूसरे मरहले का आगाज करते हुए इसे पंजाब में एक नई तहरीक का आगाज करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा महज एक सियासी प्रोग्राम नहीं, बल्कि पंजाब को मनशियात, जराइम और खौफ से आजाद कराने की इज्तिमाई कार्रवाई की अपील है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: 13 दिन तक जारी रहने वाली नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जो भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ शुरू हुई है, पंजाब को दरपेश तीन बड़े चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। ये चैलेंजेस है मनशियात का बढ़ता हुआ मसला, अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदनवानी। यात्रा रियासत में 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और तमाम 117 असम्बली हलकों से लोगों को मुतहरिक करेगी, ताकि मनशियात के खिलाफ जंग को एक बड़े अवामी एहतजाज तहरीक में तब्दील किया जा सके। तीसरी यात्रा आज कानून इंसाफ के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से फाजिलका के सादिकी सरहदी इलाके से शुरू की जाएगी। कल चौथे मरहले का आगाज मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी की जानिब से भटिंडा के तलवंडी साबोह से किया जाएगा। नशा मुक्त पंजाब यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में इख्तिताम पजीर होगी, जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की शिरकत मुतवक्के है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नई तकर्री पाने वाले 51,000 से ज्यादा नौजवानों में तकर्री नामे तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हालिया बरसों में नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए जरूरी महारतें और मौके फराहम करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज की है।
2: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईज को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंतक अजम से इबारत है, जो आज भी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के लिए हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के जरिए ये अजम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी के तारुफ के जरिए इस नजरिए को कार्रवाई में बदलने का जायजा पेश किया जा रहा है।
1: अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी साल 2017 में मुतारफ कराया गया था, जिसका मकसद मुख्तलिफ मरकजी और रियासती टैक्सों में तकसीम बाजार को वसीतर टैक्स निजाम में लाना था। इस मुश्तरक फ्रेमवर्क के तहत 17 टैक्सों और 13 सेस को यकजा किया गया और एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार को हकीकी शक्ल दी गई। जीएसटी से पहले बैन रियासती नकलो हरकत में मुतादित टैक्स, कागजी कार्रवाई और तवील इंतजार शामिल होता था। जीएसटी शरहों की मौजूदा इस्लाहात का सनत और आम आदमी दोनों ने खैर मकदम किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एमवीआईआरडीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के चेयरमैन और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सर डॉक्टर विजय कलंतरी ने कहा कि टैक्स शरों को मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हम आहंग करने से शहरियों की टैक्स अदायगी के तहत हौसला अफजाई हुई है। मुंबई की पेशावर नेहा कुलकर्णी ने कहा कि जरूरी अशिया पर जीएसटी की गई कमी से उनके कुंबे के माहाना अखराजात में कमी आई है और बजट में

0: راما پرتاپ نے ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے. مرکزی حکومت نے مختلف ہائی کورٹس میں 14 نئے ججوں کی تقرری کی منظوری دی. روزنامہ انقلاب نے سعودی وزارت دفاع کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا، دفاعی بحری اتحاد کے چوتھے منصوبہ بندی اجلاس میں 41 ممالک کی شرکت. اخبارات کی کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، گرین لینڈ پر امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان معاہدہ، اسلام آباد معاہدہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش جاری، ایران کا بیان، اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے سبسڈی والے ایل پی جی سلینڈروں کی ریفلنگ کے لیے آدھار بایو میٹرک تصدیق کو لازمی قرار دیا ہے. راشٹریہ سنکلپ سماروہ آج ملک بھر میں 1067 مقامات پر منعقد کیا جا رہا ہے، جو کہ 100 ہفتوں تک جاری رہنے والے نشہ مکت یوا ابھیان کا حصہ ہے. حج کمیشن آج دلی کے تمام پولنگ مراکز پر خصوصی کیمپوں کا انعقاد کرے گا تاکہ شہریوں کو ووٹر فہرستوں میں نام شامل کرنے یا انہیں حذف کرنے سے متعلق مدد فراہم کی جا سکے. بھارتی موسم موسمیات میں آج ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، کیرل، کرناٹک اور انڈمان و نکوبار جزائر میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور سمرکند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارت کی مردوں کی ٹیم نے اسپین کے خلاف 3-1 سے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ خواتین کی بھارتی ٹیم نے بھی منگولیا کو 3-1 سے ہرا دیا. اس کے ساتھ آکاش منی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की. श्रोताओं, जब कोई रचना समाज के तय दायरों को चुनौती देती है तो वह केवल पढ़ी नहीं जाती, उस पर बहस होती है, असहमतियां उभरती है और सवाल खड़े होते हैं. क्या घरेलू जिम्मेदारियों को संभालता पुरुष वाकई पितृसत्ता की जड़ों पर प्रहार है या फिर यह मात्र काल्पनिक और सुविधाभोगी प्रयोग? क्या लेखक ने दाम्पत्य के यथार्थ को सही ढंग से छुआ है या पाठक की नजर में कहानी कहीं लड़खड़ा गई है? पाठक को शिकायत लेखक से क्रम में लीजिए सुनिए सुरजीत सिंह जलैया की कृति हाउस हस्बैंड पर चर्चा. प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ लेखक समीक्षक और प्राध्यापक डॉ. नृत्य गोपाल शर्मा, वरिष्ठ लेखक और समीक्षक श्री राहुल सिवाय, वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर रजनी सिंह और युवा पत्रकार श्रीमती शिल्पा गुप्ता. चर्चा का संचालन कर रही हैं शिल्पा गुप्ता.
2: घर आखिर होता क्या है? चार दीवारें, कुछ रिश्ते और ढेर सारी जिम्मेदारियां. लेकिन जब इन जिम्मेदारियों को निभाने वाला पुरुष हो तो क्या समाज की नजर बदल जाती है? साहित्य समाज का आईना ही नहीं बल्कि कई बार वह सवाल भी है जिसे समाज पूछने से बचता है. आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक उपन्यास की जो परिवार, रिश्तों, पुरुष की पहचान और समाज की बनी बनाई धारणाओं को एक नए नजरिए से हमारे सामने रखता है. उपन्यास है हाउस हस्बैंड. नाम सुनते ही एक सवाल मन में आता है. हाउस वाइफ शब्द तो हम बहुत सहजता से सुनते आए हैं, लेकिन हाउस हस्बैंड सुनकर हमारे मन में इतनी जिज्ञासा क्यों पैदा होती है? इसी सवाल के बहाने आज हम जानेंगे इस उपन्यास की कथा. आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
3: धन्यवाद.
4: धन्यवाद.
2: राहुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हाउस हस्बैंड जब आपके पास प्रकाशन के लिए आई, पढ़ने के बाद आपके मन में सबसे पहला विचार या सवाल क्या आया?
4: जब भी कोई किताब हमारे पास आती है तो हम दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि तथ्य कैसा है और उसका शीर्षक कैसा है. क्योंकि कोई भी किताब वह बिकती बाद में है, सबसे पहले उसके शीर्षक को देखकर ही उसका पाठक आकर्षित होता है, उसका बाजार आकर्षित होता है. तो हाउस हस्बैंड नाम सुनते ही मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर यह उपन्यास किस प्रकार का है. मन में बहुत सारी बातें उठी कि क्या यह पुरुष विमर्श को लेकर लिखी गई कुछ बातों का उपन्यास है या इसके अंदर की जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं वो पाठकों के साथ साथ बाजार को कितना प्रभावित कर पाएगी, क्या लोग इसकी तरफ देखेंगे. तो पहला प्रश्न तो बिल्कुल क्लियर था कि हाउस हस्बैंड जिज्ञासा तो पैदा कर रही है, तो इस रूप में इस किताब को लाने से हमें फायदा होगा ही. हमने किताब को देखा, सुरजीत से हमने बात भी की और हमें जो लगा हमने कुछ सुझाव भी दिए और सुजीत ने उसको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया और एक बेहतरीन किताब जो कि अपने लगातार जिज्ञासाओं के साथ साथ संदर्भ और मनोविज्ञान तीनों को प्रस्तुत करती है आज हमारे सामने है.
2: जैसा कि राहुल जी ने कहा कि किताब का शीर्षक ही काफी अलग है, तो नीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाउस वाइफ हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हाउस हस्बैंड तो क्या लगता है, सिर्फ एक भूमिका है या इसके पीछे पुरुष की पहचान और सामाजिक सोच का भी सवाल छुपा है?
3: शिल्पा जी, ये जो नाम की अपनी सार्थकता है ना, ये किसी भी रचना के साथ बहुत गंभीरता से जुड़ा विषय होता है। ये आकर्षण भी होता है और उस रचना का प्रतिदर्पण भी होता है। अब ये जो शब्द है कि हाउस हस्बैंड और हाउस वाइफ चलता रहा अब तक, लेकिन पहली बार एक इस तरीके के विमर्श को केंद्र में लाना या एक रचना के रूप में सामने लाना सचमुच कई तरीके की जिज्ञासाएं उत्पन्न करता है। मैं जब ये उपन्यास पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि लेखक ने बीच में लिखा, ये जो जब रचना कर रहे हैं तो उन्होंने नाम दिया इसको घर का आदमी, लेकिन बाद में परिवर्तित हुआ, क्योंकि घर का आदमी कह देने से वो आकर्षण नहीं आ पा रहा है, वो भाव नहीं आ पा रहा है, वो संदेश नहीं आ पा रहा है, और जो परत जिसको आप उघाड़ना चाहते हैं वो परत नहीं उघड़ पाती है। इसलिए जब ये नाम आया कि हाउस हस्बैंड, तो एकाएक ना आपको ये आकर्षित करता है और उसके बाद विवश करता है कि आखिर इसमें ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं कि अब हाउस हस्बैंड किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं। तो ये जो इस के शीर्षक में आकर्षण है और जो विषय उठाया गया, देखिए अभी तक की जो शिल्पा जी व्यवस्थाएं हैं उसमें हम यही देखते आ रहे हैं कि स्त्री पुरुष, और उसमें भी स्त्री की भूमिका नारी के रूप में, और हम कह देते हैं कि घर की चार दीवारी में, लेकिन वहां से आगे समाज बहुत आगे आ गया, बहुत दूर तक हम लोग यात्रा कर चुके हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष बराबर की भूमिका में है कि दोनों आजीविका के क्षेत्र में जा रहे हैं और दोनों मिलकर बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। लेकिन बधाई देनी होगी सुरजीत मान को कि उन्होंने एक नए विषय को इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया है कि कुछ विषय और भी हैं, चिंताएं और भी हैं, और ये चिंताएं यदि समाज आज इन पर ध्यान नहीं देगा तो कल बड़ी भारी हो जाएंगे।
2: जैसे कि डॉक्टर नित्य ने कहा कि हम स्त्री और पुरुष की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर रजनी आप महिला हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं, प्राध्यापक हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस उपन्यास की खास बात आपको क्या लगी, कहानी, पात्र, भाषा या फिर वह सामाजिक सवाल जिसे ये उठाता है?
5: शिल्पा जी, इस उपन्यास को जैसे मैंने पढ़ा और मेरी नजर में इस उपन्यास में सभी चीजें जो आपने मेरे से पूछी अपनी अपनी जगह पे सभी बहुत बेहतर है। अब बात शुरू करूंगी मैं उपन्यास के शीर्षक से, हाउस हस्बैंड। अब हिंदी में उपन्यास है और शीर्षक उन्होंने दिया है हाउस हस्बैंड, वो क्यों दिया, क्योंकि समाज में हाउस वाइफ ही प्रचलित है नाम पहले से, तो उन्होंने हाउस हस्बैंड दिया। सबसे पहले तो सुरजीत को मुबारक है हाउस हस्बैंड के लिए। अब बात है कि कुछ नए शब्द जो उन्होंने चुने इसमें, वो शब्द साधारण है लेकिन उन्होंने खुद के लिए, जैसे एक उदाहरण दूंगी मैं इसी उपन्यास का, जब मैंने उस उपन्यास को पढ़ा तो उन्होंने खुद को कहीं लिखा है दीवार का सुराख, तो सुरजीत जी कहते हैं कि मैं खुद को एक दीवार का सुराख महसूस कर रहा हूं, जिसके अंदर झांकना तो हर कोई चाहता है लेकिन उस सुराख को, उस कमी को, उस कमजोरी को, उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर रहा और उस दर्द को कोई भरने की कोशिश नहीं कर रहा। समाज में जो उनको ताने मिल रहे हैं उन तानों को वो एक गिद्ध का रूप मानते हैं। लेखक ने खुद ही कहा कि तानों की जो तुलना है वो गिद्धों से करती है, जो मृत शरीर का मांस नहीं खाते बल्कि अपनी जीभ और अफवाहों से एक जीवित व्यक्ति के आत्मसम्मान को देख रहे हैं। और इसी तरीके से एक समाज में जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज की परंपरा चल रही है उसकी एक संकीर्ण सोच जो समाज में है उसको उन्होंने उभार के सामने लाए।
2: अब हमारे साथ इस किताब के लेखक सुरजीत मानजलिया सिंह भी फोन पर जुड़ रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं।
6: नमस्कार। सच कहूं तो वक्त को कौन समझ पाया है, जब कुछ हो रहा होता है तब तो जरा भी नहीं पता चलता कि क्या हमारे भले के लिए है और क्या बुरे के लिए। ये सब तो बहुत बाद में समझ आता है। और अगर इस किताब की बात करूं तो सच बताऊं मैंने कोई उपन्यास सोच समझकर लिखा ही नहीं था। बस दिन भर के काम काज के बाद जो फुर्सत मिलती, अकेले में बैठकर जो मन में आता वो कागज पर लिख लेता था। पन्ने भरते गए, दिन बीतते गए और बात यहां तक आ पहुंची। वो तो असल में मेरी डायरी के पन्ने थे, कब पूरा उपन्यास बन गए मुझे खुद पता नहीं चला। पर अच्छा ही है ना, अगर अपने घर की आम बातें और अपनी खुद की कहानी भी एक किताब बन सकती है तो हम सब लिखने वालों के लिए इससे बढ़िया बात और क्या होगी।
2: इन्होंने बिल्कुल ऐसे कहा जैसे अपने दिल की बात तो इन्होंने किताब में तो डाली ही और अब अपने शब्दों में भी डाली है। तो राहुल जी आप क्या कहेंगे इस बारे में?
4: देखिए, जब भी हम किसी चीज को अपने हृदय से, अपनी संवेदना से, अपने जीवन, अपने भावों से जोड़ देते हैं ना, तो उसका विस्तार अपने आप दूसरे के दिल से जुड़ जाता है। आप एक तरह से कहिए कि सुरजीत का ये कहना कि ये सिर्फ डायरी के पन्ने नहीं, धीरे धीरे जो ये उपन्यास के स्वरूप में हमारे सामने आया, वह ऐसा लगता है कि जैसे उसके मन से निकली हुई बात उसके पाठक के मन तक पहुंच रही है। वह उस तरीके से नहीं लिखता कि जहां पर उसे ये महसूस हो कि वह किसी प्रेमचंद के शिल्प को फॉलो करना चाह रहा है या ज्ञानेंद्र की तरह लिखना चाह रहा है या किसी नए लेखक की तरह लिखना चाह रहा है, कुछ विशिष्ट करना चाह रहा है, और वो दिखता भी है। सबसे विशेष बात यह है कि हाउस हस्बैंड को देखते हुए ना लोगों के मन में एक बात आती है कि यह जो हाउस हस्बैंड है यह पितृसत्तात्मक समाज या उसके विरुद्ध एक प्रयास और पुरुष विमर्श की बात करते हुए आगे बढ़ने वाला एक संग्रह होगा, लेकिन ऐसी चीज नहीं दिखती। वहां भी यह दिखाई देता है कि उस पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री है जो उसकी पत्नी है, जो कि एक विलन की तरह दिखाई देने लगती है बीच में। वो विलन नहीं रहती। जब वह उसकी डायरी को पढ़ती है और पढ़ने के बाद जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, और उसके बाद जब उसको प्रेरित करती है कि नहीं तुम इसको लिखो और अपने अंदर के लेखक को जीवित करो, तो वहां पर भी उस पुरुष के पीछे वह स्त्री दिखाई देती है जो उस पुरुष को आगे बढ़ाना चाहती है। विमर्शों के साथ यह बात मुझे मुख्य रूप से नजर आती रही है कि हम जब किसी विमर्श की बात करते हैं तो उसके केंद्र में जो वस्तु है उसके आसपास की सारी चीजों को या उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली चीजों को बिल्कुल उसके दुश्मन की तरह हम सामने रखने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी विमर्श जो है वह सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ता है। जैसे हमारा दाम्पत्य जीवन जो है वह सह अस्तित्व के साथ बढ़ रहा है। किसी भी चीज को सफल या असफलता तक ले जाने के लिए एक साझा प्रयास की आवश्यकता है। इस उपन्यास में वह साझा प्रयास दिखता है, और वह इसलिए दिखता है कि सुरजीत इसको कोई मसालेदार कहानी या किसी ऐसे ढंग के उत्तर की तरह परोसना नहीं चाहते कि जहां पर पढ़ने के बाद व्यक्ति अचंभित हो और लगे कि नहीं उसको इसने ठुकरा दिया और अंत में इसने ऐसा कर दिया और ये बहुत बड़ा कोई एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगे। संपूर्ण रूप से जीवन उसमें साथ साथ दिखाई देता है। पढ़ते हुए आप आज की कहानी है उसकी तरफ इसको मत देखिए, इसके विषय और चीजों को नया देखें, लेकिन इसको पढ़ते समय यह महसूस करें कि 70-80 के दशक की जो फिल्में धीरे धीरे बढ़ती थीं, जिसमें पारिवारिक और आपसी सद्भाव प्रेम दिखाई देता था, जो छोटे छोटे परिवर्तन होते थे और अंत में एक सुखद कथा की तरह कहानी समाप्त हो जाती थी, तो ये पूरा उपन्यास उसी रूप में दिखता है। और ये इसलिए दिख पाता है क्योंकि सुरजीत जो है ये अपनी कहानी को उन्हीं डायरी से बाहर निकलते हुए सिर्फ शब्दों का नयापन देते हैं, उसे कोई काल्पनिक चमक दमक प्रदान नहीं करते हैं।
2: अगर हम मान के चरित्र की बात करें तो उसे किस तरह देखते हैं डॉक्टर नित्या आप? क्या वह परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति है या अपनी पहचान को तलाशता हुआ एक आम इंसान?
3: शिल्पा, इस उपन्यास की ये बड़ी ताकत है जो प्रश्न आपने उठाया है। यदि पिछले पूर्व जो अभी चर्चा चल रही थी उसमें एक बात और भी कहने योग्य या मुझे ऐसा लगता है कि पाठकों तक पहुंचनी चाहिए, परंपरागत शिल्प का उपन्यास ही नहीं है। डायरी और उपन्यास के बीच की एक नई धरती विकास करता हुआ ये एक उपन्यास हमारे सामने आया है। अब रही बात इस उपन्यास के पात्र को और उसकी मानसिकता और उससे जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, तो देखिए एक बात तो हमें बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। प्रेम को केंद्र में रख के बात आरंभ हुई, उपन्यास जहां आरंभ होता है प्रेम से आरंभ होता है कि, और ये प्रेम दो बेरोजगार युवाओं का ही और बहुत महत्वपूर्ण है। दो बेरोजगार आज के समय में प्रेम करें और उसके बाद उस प्रेम को गृहस्थ के रूप में परिवर्तित कर लें, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ऐसा किया। यदि अभी बाद में थोड़ा संकेत मिलता है कि कुछ कार्य पूर्व में कर रहे हैं, जो महान है वो कर रहा है, लेकिन वो ऐसी स्थिति भी नहीं है कि बहुत जल्दी आसानी से निर्णय ले लिया जाए। तो बहुत सोच समझ के दोनों युवा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं। और इस निर्णय की जो चुनौतियां जो कि वो पूर्व में भास चुके, उन्हें आभास है कि इसकी चुनौतियां होंगी, और उन चुनौतियों पर बड़े गंभीरता के साथ बैठ के उन लोगों ने आपस में चर्चा की। और ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि समाज किस दृष्टि से देखेगा, और दोनों के हृदय में ना समाज को बनाए रखने की चिंता बहुत ज्यादा है। दोनों आपस में जब आरंभ में बात करते हैं तो उन्हें लगता है, मान कहता है कि देखिए वो उच्च कुल से है और मैं मध्यवर्गीय परिवार से हूं, और वहां जो उच्च कुल की समस्याएं हैं वो मोनिका को बहुत घेरे हुए हैं, और वो कहता है कि उसकी बहन है, उसके माता पिता हैं, वो उस संस्कार से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी मान के, उसे कष्ट भी होता है। आप पूरा उपन्यास देखो, उसे कष्ट भी होता है कि जब वो बाद में देखता है कि जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं उसमें उसकी डायरी रखी है, और उस डायरी में और वहां एक बक्सा में बहुत सारा सामान रखा है, और उस बक्से में जिस समय वो अपनी पुरानी यादें खोजता है और वहां पर उसे एक चित्र मिलता है कि वो अपने पिता के साथ में है, तमाम उसके जीवन की जितनी भी संभावनाएं ना एकाएक साकार होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को बहुत संभालता है और उस रूप में संभाल के और कहता है कि नहीं, मुझे अपने आप को बनाए रखना है। देखिए लगभग पूरा उपन्यास अकेले मान के चरित्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। मोनिका की भूमिका है कुछ संवाद तक, और आप तो उसमें देखेंगे कि बहुत जगह अधूरापन नजर आता है। इस दृष्टि में सुरजीत को इस बार में ध्यान भी देना होगा, केशव और जिया यानी उसके पुत्र और पुत्री वो बच्चे भर के रह जाते हैं, लेकिन उनका कोई चरित्र, उनकी अटकेलियां, उनका रुदन, उनकी जिद वो कहीं सामने नहीं आ पाती है। जबकि आप हाउस हस्बैंड के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अगर वो स्कूल जा रहा है बच्चा तो बोले मम्मा मेरा लंच, जबकि लंच बना रहे हैं पिता। तो अब हाउस हस्बैंड की ये जो भूमिका है, और समाज में सिर्फ एक चरित्र इन्होंने बीच में दिखाया कि एक दत्ता जो है पड़ोसिन वो एक कमेंट करती है, या एक पड़ोसी आके कमेंट कर जाता है और वो कहता है कि आप हैं तो यह है। मोनिका सामने खड़ी और मोनिका को कहते हैं, उस दिन वो सामने होती है, बोले आप हैं तो ये है। और ये जो एक वाक्य होता है ना मान के पूरे अस्तित्व को झंकार देता है। और आप देखेंगे कि नए शहर में जाके पहली बार मान अपना मुंह खोलते हैं, और वो भी तब खुलते हैं जबकि मोनिका सामने, और मोनिका उन्हें पूरा बचा दी है। लेकिन मान जिस तरीके से जिस हिम्मत और जिस संघर्ष का साक्षी बनता है, ये आगे आने वाले समाज के लिए एक नजीर बन के होगा। और मैं ये मानता हूं, और मैं ये जितने भी हमारे श्रोता या समाज जो भी सुन रहा है इस बात का विशेष संज्ञान लेना होगा। देखिए लेखक बमुश्किल इस समय लगभग 35 साल की उम्र में है, लेकिन एक बालक जो इस तरीके की त्रासदीनुमा वातावरण में घिर जाए, ये आज एक मान है, कल एक दो तीन चार में परिवर्तित हो सकते हैं। समाज को इनके लिए मार्ग खोजना होगा। इस मान को भी जो कि कल हाउस हस्बैंड की भूमिका में आना है, आज अब उसे आप बचा नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको व्यवस्था देनी होगी।
2: ये तो आपने हमें बताया कि मान की भूमिका के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा जाए तो कुछ संघर्ष, चाहे मेंटली लेवल पर भी हो, तो मोनिका के जीवन में भी था। तो डॉक्टर रजनी आपसे जानना चाहेंगे कि मोनिका की चरित्र को आप किस तरह से देखती हैं?
5: जी शिल्पा जी, जैसे कि अपने समाज में भी क्या है कि जब कोई स्त्री प्रगति करती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, आगे बढ़ती है, तो समाज जो है उसे अप्रिशिएट करता है, उसे मोटिवेट करता है। लेकिन अगर कोई पुरुष घर संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो बेकार है। लेकिन अब इस उपन्यास में जो हम देख रहे हैं कि मोनिका जो है वो भी जो मान अंदर महसूस कर रहे हैं, मोनिका भी कहीं ना कहीं, जैसे उनके कुलीग्स जो हैं, जब उनको ये कहते हैं कि आपके पति क्या करते हैं, तो मोनिका उनको बोलती है घर देखते हैं, तो उनके कुलीग जो है उनकी तरफ देखते हैं सवालिया नजरों से। वो आगे कहते कुछ नहीं है, लेकिन सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है इस चीज के लिए कि अगर वो घर देखते हैं इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहे। तो मोनिका जब इसके बारे में घर आके भी बोलती है, मान हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, और उस मुस्कान का जब जवाब मोनिका देखती है तो वो दे नहीं पाती, ना ही कुछ बोलती है वो, क्योंकि मान कुछ कहता ही नहीं आगे। अब अचानक उसके सामने डायरी आती है, क्योंकि ऑफिस से जल्दी आ गई, मीटिंग थी कोई, कैंसिल हो गई, अचानक से जल्दी आ गई। ऑफिस से आने के बाद जब उसने डायरी के पन्ने खोले तो उसने वो बहुत सारी बातें पढ़ी जो उसने महसूस भी नहीं की थी। हम अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपने नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक ही घर में, एक ही कमरे में हम साथी के बारे में अंदर तक की बात सोच भी नहीं सकते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। मोनिका को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना घर बार, नौकरी, शहर, सब कुछ लगाव जो होता है अपने घर की खिड़कियों से भी, पंखों से भी, धरती से, सब हर जगह से भी ना, तो वो सारा कुछ छोड़ के जब वो अपनी पत्नी के साथ उसके नौकरी के लिए गए, उसकी खुशी में उसका साथ दिया, तो मोनिका इस चीज से खुश थी। लेकिन जब उसे मोनिका को भी लेटर मिलता है या उसको फोन पे सूचना मिलती है नौकरी की, तो उसके मन में भी सवाल था, उसके मन में भी शंका थी कि मान आगे से क्या रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन मान का जवाब हाँ में था और वो उसकी खुशी में खुश थे। तो एक स्त्री होने के नाते भी इसमें मोनिका को सौभाग्यवती माना जाता है कि सौभाग्य था उसका कि उसने एक ऐसे पति को पाया कि जिसने अपना सब कुछ त्याग के अपनी पत्नी का साथ दिया उसकी नौकरी के लिए। लेकिन अब समाज की विडंबना देखिए आगे, समाज जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
2: कुछ भाव ऐसे होते हैं जो

0: कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं।
1: शिल्पा जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। रजनी जी ने बहुत अच्छा सा जो इसका विश्लेषण किया है, देखिए मोनिका का चरित्र भले से संवाद में कम बोलता हो, लेकिन एक बात बहुत सिरे से मजबूती के साथ पक्ष प्रस्तुत करता है कि मोनिका अगर यहां मान को सपोर्ट न करे तो मान टूट जाता, खत्म हो जाता। मोनिका ने इतनी व्यस्तताओं के बाद कि वो रात को 11 बजे भी आ रही है, और जिस दिन उसने देखा कि मान बिल्कुल भीतर से देखती है ना कि टेबल पर वो रख के गया कि कॉफी साथ पियेंगे, उस दिन जाके पूछती है उससे कि मान क्या बात है हम दोनों के बीच में, तो अगर ऐसा नहीं करती ना मोनिका, नहीं संभालती तो आप देखते कि मान टूट जाता, इसलिए टूटने से बचता है। तो उसको धन्यवाद तो देना ही होगा आपको
0: जी। एक इस किताब में प्रसंग भी है जली हुई रोटी, तो राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जली हुई रोटी सिर्फ एक प्रसंग है या गहरा संकेत?
2: देखिए आप इसको एक पक्ष की तरफ मत देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अभी जो मान महसूस कर रहा है ना, एक लंबे समय से स्त्रियां वो महसूस करती रही हैं बतौर हाउसवाइफ, तो हाउस हस्बैंड वाली जो पीड़ा है ना वो हाउसवाइफ की पीड़ा से बहुत अलग नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि स्त्रियों के लिए यह कार्य है, घर का कार्य, उसको कर्तव्य की संज्ञा देकर उसको मतलब जो है हम एक उच्च मानक की तरह देखने लग जाते हैं। लेकिन जब हम पुरुष की तरफ जाते हैं, जब कोई कहता है ना कि आपकी माँ क्या कर रही है, आपको पत्नी क्या कर रही है, जब उसको कहते हैं तो कहते हैं वो हाउसवाइफ है, तो उसको कभी इस रूप में हम नहीं देखते कि एक बेरोजगार स्त्री है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो हाउस हस्बैंड की भूमिका में आता है, तो वहां पर उसके काम के प्रति या उसके कर्तव्य के भाव को समाप्त करके अंदर का एक भाव सामने आता है कि नहीं, वो व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, उसको कुछ काम नहीं मिला, या वो पत्नी के पैसे पर जीने वाला व्यक्ति है, इस तरह की स्थिति तक भी पहुंच जाती है बात। चाहे वो जलती हुई रोटियां हो या किचन के अन्य चीजें, दीवार हो, दीवार की सुराख हो या जो भी है, देखिए सुरजीत ने बहुत कोमल तरीके से इन चीजों को एक बिंब की तरह यूज किया है उस पूरे उपन्यास में। वो जब बोलती है ना वो जली हुई रोटियां, तो लगता है जैसे कि सुरजीत के मन की पीड़ा जो है वो बोलने लगी है। और ये सिर्फ मन की पीड़ा नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि लंबे समय तक जो स्त्रियां जो घर में काम करती रही हैं, उनकी पीड़ाओं को भी उन रोटियों ने बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त किया है, उन दीवार की सुराखों ने, उन वस्तुओं ने। तो सुरजीत ने सिर्फ लैंगिक परिवर्तन किया उसके अंदर, असल में उसके अंदर का जो पुरुष विमर्श है ना, वो अंदर के उस स्त्री विमर्श और उस दाम्पत्य विमर्श को भी जिंदा करता है, जो दोनों की तरफ सोचने के लिए आपको मजबूर करता है। वह अनकहे में इतनी बात कह रहा है जिसे पाठक जब देखेगा, जब उसको समझेगा, जब उसको महसूस करेगा और अपने जीवन से जोड़ेगा, तो कई नए प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। तो मुझे लगता है इस हिसाब से आपको आपका उत्तर मिल गया है।
0: जी हाँ, अगर हम साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो क्या कोई बात ऐसी है जो सामने नहीं आनी चाहिए थी?
1: शिल्पा देखिए, मुझे इस समय पंक्ति किन की है, किन शायर की है, मैं सम्मान के साथ उन्हें विनम्रता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बात इतनी है कि अब वह मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। तो यहाँ पर मान को जितनी उलझन है ना, वो इसी बात की है, और जितना कथ्य उन्होंने बुना है, उस कथ्य में जो अपने आप को कहीं खोता हुआ पाते हैं, कि आरंभ में बात कही गई शिवाजी जी के द्वारा कि साहित्य तो समाज का दर्पण है, और मान कोई नई चीज अलग बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतनी सहजता से उस बात को हमारे तक पहुंचा रहे हैं कि समाज में ये भी है, और इस परिदृश्य को, इस दृश्य को हमें अब हृदयंगम करना है, हमें स्वीकार करना है। तो अगर आप साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सुरजीत भी इस बातचीत को जरूर सुन रहे होंगे, जो अभी थोड़ा सा अनगढ़पन है कि एक आधे से ज्यादा हिस्सा बहुत गंभीरता के साथ और बहुत उलझनों को सुलझाने की कोशिश में जाता है, लेकिन लगता है कि बाद में, चाहे जली हुई रोटी की आपने बात कही, वो लगता है कि जैसे कुछ समेटने के अंदाज में आ गए, जबकि मुझे लगता है अभी इस उपन्यास को समेटने की आवश्यकता नहीं थी। जहां पर उन्होंने इस पूरे कथ्य को समेटने की कोशिश की है, और बड़ी जल्दी से डायरी भी प्रस्तुत हो गई है, जबकि वो अंधेरे रात में, जबकि दोनों के दो बिस्तर भी अलग हो गए हैं, बावजूद इसके वो अंधेरी कोठरी में जाकर के लिख रहा है इतनी जल्दी डायरी को, मेरे ख्याल से क्योंकि मोनिका को भी अभी उसकी और कीमत समझने की आवश्यकता थी, तब दोनों समानता से, क्योंकि लेखक लिख चुका है कि बोले जो अहंकार सरकारी नौकरी प्राप्त करके किसी पुरुष में आता है वो

0: में भी आता है, तो ये जो अहंकार का गलना है ना, जो कि साहित्य के नजरिए से बहुत जरूरी है, उसकी आवश्यकता थी। तो बहुत जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है और एक समाज को दिशा देने वाला उपन्यास लिखा है। सुरजीत को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो ये थी बातचीत हाउस हस्बैंड के बहाने घर, रिश्तों और बदलती सामाजिक सोच पर। कहते हैं घर चलाने के लिए सिर्फ कमाई नहीं, समझ, संवेदना और साझेदारी भी चाहिए। शायद इसी वजह से हाउस हस्बैंड हमें सोचने का अवसर देता है कि घर संभालना किसी एक लिंग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी है। और एक और बात, रिश्तों में बड़ा वो नहीं जो ज्यादा कमाए, बड़ा वह है जो साथ निभाए। इसी खूबसूरत विचार के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी साहित्य की एक नई रचना और एक नई विचार यात्रा के साथ। नमस्कार।
2: पाठक को शिकायत लेखक से क्रम में अभी आप सुरजीत मान जलैया सिंह की कृति हाउस हस्बैंड पर ये चर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ लेखक, समीक्षक और प्राध्यापक डॉ. नृत्य गोपाल शर्मा, वरिष्ठ लेखक और समीक्षक श्री राहुल सिवाय, वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉ. रजनी सिंह और श्रीमती शिल्पा गुप्ता। चर्चा का संचालन कर रही थी शिल्पा गुप्ता। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह के प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा।
3: साहित्य जब कला से मिलता है और कला को काव्य की संवेदनशीलता का साथ मिलता है, तब सृजन का एक ऐसा संसार आकार लेता है जो लंबे समय तक स्मृतियों में बना रहता है। ऐसा ही अनूठा दृश्य 13 सितंबर 2026 को जशाला फाउंडेशन दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित त्रिवेणी समारोह साहित्य, काव्य एवं कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। ज्योति नगर दिल्ली में आयोजित इस समारोह में काव्य अनुगूज कवि सम्मेलन ने वातावरण को काव्यात्मक संवेदनाओं से भर दिया। कवियों की रचनाओं में जीवन, समाज और मानवीय सरोकारों की विविध छवियां दिखाई दी। वहीं समारोह का कला पक्ष अपने आप में बेहद अनूठा रहा। रस्सी चित्रकार सुरेश पाल वर्मा जसाला के रस्सी चित्रों की प्रदर्शनी ने उपस्थित साहित्यकारों और कला प्रेमियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। सामान्यतः उपयोग में आने वाली रस्सी को कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर तैयार की गई उनकी कृतियों ने यह संदेश दिया कि सच्ची कला साधारण वस्तु में भी असाधारण संभावनाएं खोज लेती है। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर जयसिंह आर्य ने की, जबकि श्री जितेंद्र बच्चन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह संत, श्री प्रीतम सिंह प्रीतम, श्री राजेंद्र वर्मा मंचासीन रहे। श्री रामचरण सिंह साथी, श्री निर्दोष कुमार शर्मा, श्री राजेश मंडार एवं श्री सोनू सागर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तित्वों की विशेष उपस्थिति रही। समारोह में दिल्ली NCR सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और समाज सेवी सहभागी बने। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर 2026 को दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को अकादमी के सभागार में हिंदी के विकास में संस्कृत का योगदान परंपरा से आधुनिकता तक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संगोष्ठी में लगभग 100 विद्यार्थियों तथा 30 अतिथियों, साहित्यकारों एवं भाषा साहित्य से जुड़े विद्वानों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाषा विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि संस्कृत और हिंदी भारतीय संस्कृति, चिंतन और ज्ञान परंपरा की दो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। हिंदी की शब्द संपदा साहित्यिक अभिव्यक्ति और वैचारिक परंपरा को समृद्ध बनाने में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोनों भाषाओं के समन्वय से भारतीय भाषाओं को नई शक्ति और व्यापक अभिव्यक्ति मिल सकती है। शर्मा ने कहा कि आज डिजिटल युग में हिंदी तेजी से नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। विज्ञान, तकनीक, पत्रकारिता, सोशल मीडिया और रोजगार के क्षेत्र में हिंदी का विस्तार हो रहा है। ऐसे समय में संस्कृत से प्राप्त वैज्ञानिक शब्दावली और हिंदी की सहज अभिव्यक्ति का समन्वय भाषा के विकास को अधिक प्रभावी बना सकता है। दिल्ली संस्कृत अकादमी के उप सचिव प्रशासन श्री सौरभ कुमार मिश्र ने दोनों विशेषज्ञों का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, दर्शन, साहित्य और वैज्ञानिक चिंतन की संवाहक भाषा है। कमला नेहरू महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने हिंदी के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत की शब्द संपदा, व्याकरण और साहित्यिक परंपरा के योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर संस्कृत विशेषज्ञ रेणु रतन मिश्रा।

0: उपन्यासकार श्री सत्यपाल चावला तथा अध्येता शिव कुमार मिश्रा सहित अनेक साहित्यकार, शिक्षक और विद्वान उपस्थित रहे। सहायक परियोजना अधिकारी राजेश चंद्र वाजपेयी ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 15 सितंबर 2026 को हिंदी साहित्य परिषद एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अभिनंदन अपनी भाषा का शीर्षक से विशेष कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में हुआ। इस अवसर पर हिंदी भाषा एवं साहित्य के महत्व पर विचार विमर्श के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति सम्मान, आत्मीयता, गौरव की भावना को और मजबूत किया।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे युवा पत्रकार श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही सम्पन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी कवित्री डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल से। इनसे भेंट कर रही हैं काजल सूरी। नमस्कार श्रोताओं, हमारे अतिथि कार्यक्रम में एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट काजल। और आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में है एक जानी मानी कवित्री और लेखिका डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल। डॉक्टर उर्वशी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।
3: वो कहते हैं ना, लफ्ज जब एहसास बन जाए और ख्वाब जब हकीकत का रूप ले तो सफर खूबसूरत हो जाता है। डॉक्टर रोशी, आप जानी मानी कवित्री हैं, लेखिका हैं और इसके साथ बिजनेस में भी आपने बहुत नाम कमाया है, तो आपको जो सफर रहा है साहित्य के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में किस तरह से आपका सफर रहा, आपकी जो इस दोहरी शख्सियत की जो यात्रा है, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को बताएं।
4: इससे पहले मैं दो पंक्तियां अगर आप मुझे परमिशन दें। हसीन चेहरे सलाम तुमको सुना रही हूँ, कलाम तुमको मेरी तरफ भी हो तवज्जो, मेरी तरफ से प्रणाम तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बात कर रही थी बिजनेस की,
3: आपके सफर की।
4: मेरे सफर की, कम उम्र में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने ले लिए हैं। बिजनेस का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है 10 से 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने सबसे पहले मेरे ख्याल से मैंने एक बुटीक से अपने जीवन की शुरुआत की थी और उसके साथ साथ मैं एक्सपोर्ट में आई और फिर उसके बाद साथ साथ एक्सपोर्ट्स के साथ साथ मैंने अपने आउटलेट्स तक खोले। और भारत की धरती पर नहीं, भारत की धरती पर मैंने शुरुआत जरूर की, लेकिन उस शुरुआत को, उस आरंभ को, उस आरंभ को जो अंजाम दिया वो इंटरनेशनल धरती पर जाकर के दिया। और मैंने मलेशिया में बिजनेस किया था, लेकिन मेरी धरती ने मुझे वापस पुकारा और यू टर्न लेना पड़ा
3: जी।
4: तो किसी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा यहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर थी, शायद उस वक्त मेरी उम्र 35 या 36 बरस रही होगी। तो उसके बाद मैं वापस आई तो वो एनर्जी मेरे अंदर थी, मैंने कहा ना मैं एक चकाचौंध में आ गई थी, यानी कि लाइट्स में आ गई थी। लेकिन मैंने क्योंकि अपने आप को हमेशा एक क्षमा या फिर चिराग से अपनी तुलना की, एक दीपक से अपनी तुलना की है, तो उस चकाचौंध में काजल दीपक का कोई काम नहीं होता। अगर हम सूरज की रोशनी में उस दीपक को जला के रख देते हैं तो कौन ही उसको देखेगा। तो मैंने एक अंधेरे कोने में अपनी जगह बनाई और अपने साहित्य को जगमगाने का काम किया और आज मैं आपके साथ आपके स्टूडियो में बैठी हुई हूँ।
3: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
4: बहुत शुक्रिया।
3: तो आपकी साहित्यिक यात्रा, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
4: जी जी काजल, साहित्यिक यात्रा की अभी शुरुआत ही हुई है। मीन्स मैं यही कहूंगी कि जब हम लिखना शुरू करते हैं या लिख लेते हैं और हम अपने आप को आंकने लग जाते हैं कि हमने 2, 4, 5, 6, 10 किताबें लिख ली हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक मीन्स प्रैक्टिस होती है। साहित्य की यात्रा तो अब शुरू हुई है, अब हम अपने अग्रज अपने बड़ों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा से ये यात्रा बहुत आगे तक जाएगी। और इस यात्रा में जो मेरे माइलस्टोन्स रहे हैं, मैं शबरी हूँ राम की एवं व्यथा कहे पांचाली,

0: यात्रा में बहुत सारे तजुर्बे मिले हैं।
1: अभी आपने कहा कि आपका गजल लिखना आपका पैशन रहा है, तो मैं जरूर चाहूंगी अपने हमारे श्रोताओं को आप कोई गजल जरूर सुनाए।
0: जो मेरी पहली गजल थी जो मुझे गजल की तरफ लेकर के गई थी, और ये गजल मुझे प्रिय है और इसको मैं अक्सर मंचों पर भी सुनाती हूँ और पसंद की जाती है। वो इस तरीके से है कि शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती।
1: क्या बात।
0: शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती, एक अकेला जुगनू थी मैं अंधेरों से क्या लड़ती।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत।
0: मैं थी नींव जड़ा एक पत्थर मीनारों से क्या लड़ती। मैं थी नींव जड़ा एक पत्थर मीनारों से क्या लड़ती, और मेरे समर्पण में तड़पन थी किस किस से ये बात कहूँ। एक अकेली मछली थी मैं मछुआरों से क्या लड़ती।
1: बहुत खूबसूरत।
0: समर्पण की इंतहा मैंने इस शेर के द्वारा कही, और वही हालात हमारे कई बार लड़कियों के लिए भी पैदा हो जाते हैं। और फिर तब मैं कहती हूँ कि काल कभी घेरे अनजाना, मुश्किल हो तेरा बचपाना, फिर अरियों का ही वध करने को बेटी तुम दुर्गा बन जाना।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और तन्हा ही कर डाला खुद को मैंने मीन कहानी से, पल पल रंग बदलने वाले किरदारों से क्या लड़ती। और मक्ता पेश करती हूँ कि जी में तो आया था उर्वी, अपना जीवन जी लूं मैं, लेकिन अपने आदर्शों और संस्कारों का क्या करती।
1: वाह।
0: जो कि जिनकी आज मुझे लगता है कि जरूरत नहीं होती है ना, या फिर उन आदर्शों और संस्कारों के साथ ही तो हम आगे चल रहे हैं,
1: पहलुओं
0: के साथ हम बात कर सकते हैं।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आपके आपने भी बात की मैं शबरी हूँ राम की विधा कहे पंचाली, इस पर भी मैं जरूर आऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, शब्दों में संवेदना और निर्णय में दृढ़ता, क्या एक सफल महिला के लिए व्यक्तित्व में इन दोनों का होना जरूरी है कि आपके शब्दों में संवेदना हो और आपके फैसलों में एक दृढ़ता हो?
0: बिल्कुल। जब हमारे फैसले ही दृढ़ नहीं होंगे, जब हम मीन्स कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, हमें तो सबसे पहले अपनी दृढ़ता को आगे लेके जाना होता है, और तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। अगर किसी चीज का हम फैसला ही नहीं करेंगे तो हम उसको अंजाम कैसे देंगे।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब मैं आपकी जो विधा कहे पांचाली बहुत बड़ा कविता संग्रह है उस पर मैं आती हूँ, और मैं कहती हूँ उसके बारे में आप जरूर बताएं, विधा कहे पांचाली के बारे में जरूर बताएं, आपका जो अनुभव रहा है उसको लिखने में, वो मैं चाहूंगी कि आप श्रोताओं से हमारे
0: जी
1: जरूर शेयर करें।
0: तो अब आप पांचाली के बारे में जो पूछ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा सफर रहा है। पांचाली को लिखने में मैंने 9 वर्ष लगाए, लेकिन सोचिए पांचाली ने तो जब तक जीवन पर्यंत वो जी थी, एक तो खून कष्टों के साथ जी थी। उस वक्त ही शायद मैंने सोच लिया था कि मुझे इस कैरेक्टर को जानना है, इस परिचय को मुझे जानना है। तो जब मैंने ये देखा और मैं ये इस चीज के साथ बड़ी होने लगी, राइट, ये क्या है। उसके बाद धीरे धीरे धीरे आज इसको मैंने पढ़ा और एक कविता लिख डाली। जब मैंने वो कविता परम पूजनीय अपने ससुर जी को सुनाई, तो उन्होंने कहा उर्वशी ये कविता पर आपका काम हो सकता है। उन्होंने भरे मन से और बहुत मन भर करके मुझे आशीर्वाद दिया,
1: प्रोत्साहन भी दिया,
0: प्रोत्साहन दिया। और पता नहीं कब ये व्यथा कहे पांचाली की रचना शुरू हो गई। काजल, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि इस किताब को लिखने में मुझे 9 वर्ष का
1: नौ वर्ष लग गए, एक बहुत लंबा,
0: 7 से 8 साल में मैंने इसको लिखा होगा, और इसके केश बांधने में अंतिम जो इसका साज सज्जा थी इस किताब की, उसमें मुझे लगता है कि मैंने 1.5 से 2 वर्ष लगाए, और उसके साथ साथ काम करती रही। तो अपनी तरह की एक अनूठी कृति है ये। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये किताब मैंने लिखी है, लिखने वाले लेखक को अपनी कविता की हर पंक्ति और अपनी हर एक किताब प्रिय होती है, बच्चों के समान होती है। तो 9 वर्ष लगाए, और जब मैंने इसको एज ए श्रोता भी पढ़ा, इस पर नाटक भी हो चुका है, और बहुत पसंद किया गया, आज भी आगे चर्चा चल रही है इस पर नाटक करने की। और इसी तरीके से जब ये किताब पूरी हुई, दर्शकों के हाथ में आई, काजल मेरे 5 संस्करण इस किताब के आ चुके हैं, और इसकी कई पंक्तियां मैं अगर आपको हो तो
1: जरूर,
0: सुना
1: जरूर,
0: देती हूं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें मैंने जो बात ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मैंने इसको आज की पांचाली के साथ जोड़ दिया, जो चीजें उस वक्त थी वो आज भी हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा, और इसको जो सबसे अच्छा काम मुझे इस किताब में लगा है काजल, वो ये लगा है कि मैंने एक अध्याय लिखा है द्रौपदी की ऊहापोह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पढ़ा है आपका। हाँ। ये इसको मैं अगर ग्रंथ कहूँ तो
0: जी काव्यखंड
1: बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत,
0: क्योंकि यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग महाभारत तो अपने घरों में नहीं रखते, महाभारत से बड़ी कोई सीख नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और मैंने आप कहूंगी कि मैंने एक मिनी महाभारत द्रौपदी के दृष्टिकोण से
1: आपने लिखी,
0: मैंने कोशिश की है,
1: और बहुत खूबसूरत कोशिश।

0: खूबसूरत पढ़ेंगे
1: तो मेरी कोशिश कामयाब।
0: बहुत खूबसूरत लिखा है।
1: वहाँ पहुंचे मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी।
0: जरूर।
1: ये द्रौपदी कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। पीड़ा एक खरी है मन में, पीड़ा एक खरी है मन में, ऊहा पोह भरी है मन में, युद्ध हुआ था ये दुखदाई, क्या केवल मैं उत्तरदायी, कुंती कर्ण व पांचों भाई, सब कौरव थे उत्तरदायी, उत्तरदायी सभी बड़े थे, भरी सभा में मौन खड़े थे, युद्ध का कारण बतलाऊंगी मैं आगे तब बढ़ पाऊंगी।
0: क्या बात, क्या बात।
1: तो यहां से मैं शुरुआत करती हूँ कि काश वचन स्वीकार न करती, काश वचन स्वीकार न करती मैं भी रेखा, मैंने क्यों मानी थी कुंती की वो शर्त। इससे पहले मैं फिर से शुरुआत करती हूँ कि काश वचन स्वीकार न करती, आपको ले जाती हूँ कुंती की उस कुटिया में जब अर्जुन उसे ब्याह करके लेके गए थे। काश वचन स्वीकार न करती मैं भी रेखा पार न करती, पांच पिया स्वीकारे क्यों थे, खुला शिवा का नेत्र न होता तो शायद कुरुक्षेत्र न होता। मैं बीच बीच में सुना रही हूँ आपको।
0: आपने इसमें गीता का भी बहुत खूबसूरत लिखा है। जब मैंने
1: मैं आपको सुनाती हूँ, मैंने कोशिश की है यहाँ पर युद्ध के पर्यायवाची शब्दों को अपने इस ऊहापोह के अध्याय में लेने
0: का,
1: ठीक है ना। तो अभी कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, अर्जुन भी बता दिया है मैंने, कुंती भी बता दी है। अब मैं कहती हूँ कि काश ना मुझको वर के लाइए। जो मैं अभी कह रही थी कि युद्ध के पर्यायवाची है, तो मैं यहाँ कहती हूँ कि काश न मुझको वर के लाता, अर्जुन सारे दुख का दाता, सत्य यही जो समर न होता, कुरुक्षेत्र फिर अमर न होता।
0: क्या बात,
1: समर युद्ध का पर्याय।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: काश कर्ण, अब एक कर्ण कर्ण भी था, काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं, कर्ण अगर न रोता शायद तो संग्राम न होता शायद। संग्राम
0: बिल्कुल।
1: दुशासन को माफ जो करती, लाल न होती फिर ये धरती, दुशासन मति मंद न होता, रिश्तों में फिर द्वंद न होता। द्वंद। दुर्योधन से हुई लड़ाई, सचमुच कृष्णा अब पछताए, जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता तो शायद यह युद्ध न होता।
0: बिल्कुल।
1: जो यह नहीं लड़ाई होती फिर भी तो पछताई होती। तो ये मैंने जो कारण देने की कोशिश की है, मैंने हर उस पात्र को इसमें घेरा है जो द्रौपदी के चीरहरण में उस वक्त मौन था या जो भी उसका कारण था। अभी आप गीता की बात कर रही थी तो मैंने अंतिम पंक्तियां आपको ये भी सुनाना चाहूंगी इससे रिलेटेड। अगर पाप का वर्ण न होता गीता, अच्छा ये मैं इससे पहले ये जरूर कहना चाहती हूँ काजल, यानी कि कहते हैं कि इतना 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नुकसान हुआ, कितना खून खराबा हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, भला क्या हुआ, किसका क्या भला हुआ, इससे क्या मिला। मैं बताती हूँ इससे क्या मिला।
0: बिल्कुल।
1: दुश्मन को यदि सजा न मिलती, सही हमें फिर दिशा न मिलती, दूर अंधेरा कैसे होता, नया सवेरा कैसे होता, कृष्ण अगर अवतार न धरते, अर्जुन भी संहार न करते, अगर पाप का वर्ण न होता, गीता का अवतरण न होता।
0: ये बहुत खूबसूरत
1: है। कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पंक्तियां ये। अब मैं आपकी दूसरा जो आपने जिस तरह से अपनी व्यथा कहे पंचाले लिखा, उस तरह से आपने कहा कि आपकी 16 किताबें आ चुकी हैं कविता की और अभी आप रामायण पे भी काम कर रही हैं, तो आपकी एक और कृति मैं शबरी हूँ राम की, इस पर आते हैं, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताइए। बहुत खूबसूरत किताब आपने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत।
1: ये जो शबरी है ना काजल, ये हर एक दिल में मौजूद है, हर एक जगह में, हर एक दिल में, सबके दिल में है। तो मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राही आपकी, हुई कहाँ पर देर।
0: क्या बात,
1: कितनी अचरज से भरा। इस दोहे ने मुझे बहुत पहचान दी है काजल, संत समागम, संतों में ये दोहा एक आकर्षण का केंद्र है, वहां पर कोट होता है ये दोहा, और वो दोहा इस प्रकार से है कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम।
0: बहुत खूबसूरत।
1: कौन कहता है कि शबरी ने बेर झूठे किए थे। और इसका अंतिम दोहा भी मैं इस तरीके से सुनाना चाहूंगी कि आई हैं वो द्वार पर, चाहे देर सवेर, स्वीकारे हैं राम ने शबरी तेरे बे,
0: बहुत खूबसूरत
1: गाने हैं राम,
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो उर्वशी जी, इतना खूबसूरत आपने अपना लिखा हुआ सुनाया और आपने कहा कि आपकी 16 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और जिसपे आप रामायण पे भी काम कर रही हैं।
1: बस अगर पांचाली ने 9 वर्ष लिए हैं तो ये
0: टाइम वर्ष तो ये भी लेगा, लेकिन तो आपकी निरंतर ये साहित्यिक यात्रा चलती रही, यही हमारी कामना है। तो आप हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी खूबसूरत बातें की, इतनी खूबसूरत अपनी कविताएं हमको सुनाई, हमारे श्रोताओं को सुनाई, खासतौर पर व्यथा कहे पांचाली आपकी गजल और मैं शबरी हूँ राम की, बहुत खूबसूरत। तो डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की अतिथि डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल और मैं आपके साथ आपकी दोस्त काजल, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। हमारे अतिथि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल से भेंट वार्ता, इनसे भेंट कर रही थी काजल सूरी।

सावेन आदाबर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 बजे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सावेन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशोन वाले प्रोग्रामों पर। बजकर 35 मिनट पर सुबह ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और आज सवेरे ये प्रोग्राम सुनेंगे आप 9:45 पर। सुबह 9:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अकवाल जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा। हुस्ने गजल इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं घनश्याम वासवानी और ML नकरा। आप पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा सुबह 10:05। सुबह 10:30 बजे रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ शख्स जनाब नंद किशोर विक्रम के साथ की गई एक बातचीत आप समाप्त करेंगे। आपसे गुफ्तगु की SM नुमान ने। दिन 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में चंद फिल्मी नगमे आप सुनेंगे और 11:30 पर मारूफ शायर मीर तकी मीर के फन और शख्सियत के हवाले से फीचर का पहला हिस्सा आप सुनेंगे। शायर के पर्दे में उसने गम सुनाया।

दिन में 12 बजे खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। फिल्मी दुकानों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 1 बजे तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 बजे तारीख साज प्रोग्राम पेश किया जाएगा। मौजू है एनी बेसेंट। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: सबका ही प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे, शब्द पेश कर रहे थे भाई बलविंदर सिंह जी निर्मला रंगीला माफ कीजिएगा और हम नवाब। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: एंड वैष्णवी, नाउ वी कम टू द हिस्ट्री एंड द इवेंट्स सेगमेंट, बट टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड क्लीन अप डे है एंड एवरी डे यू नो दिस इज लाइक यूनिवर्सल। एवरी डे मोर देन 1 बिलियन मील्स आर वेस्टेड वर्ल्ड वाइड, इवन एज मिलियंस ऑफ पीपल फेस हंगर। फूड वेस्ट ट्रेन्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स कंट्रीब्यूट्स टू climate change, squanders land and water resources, and undermines efforts to build more resilient and equitable food systems. So everyone listening to us, please be mindful. खाना उतना ही खाइए जितना आप खा सकते हैं, ज्यादा वेस्ट ना कीजिए।
2: बिल्कुल। और आज जो आपने शुरुआत में जो आंकड़े आपने बताए उससे यही साहब में पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम उतना ही प्लेट में ले जितना आपसे खाया जाए।
1: एग्जैक्टली,
2: व्यर्थ ना करें खाने की।
1: एंड वेरी माइंडफुली ईटिंग इज ऑल्सो टू बी डन वेरी माइंडफुली।
2: बिल्कुल।
1: तो इसका सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन टू मोर इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे। लेट्स बिगिन विद द ईयर 1904। ऑन 20th of September, Wilbur Wright completed the first circular flight in the Wright Flyer 2. In the year 1946, the first ever Cannes Film Festival commenced in France, showcasing films from 21 countries.
2: और 1952 में आज ही के दिन विज्ञान की दुनिया में एक निर्णायक प्रयोग हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग से यह सिद्ध किया कि जीवों की आनुवंशिक जानकारी प्रोटीन में नहीं बल्कि डीएनए में संचित होती है। इस खोज ने आगे चलकर आधुनिक आनुवंशिकी और जीव विज्ञान की पूरी दिशा बदल दी। और 2004 में आज ही के दिन भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखा कदम उठाया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी के जरिए एडुसेट नाम का उपग्रह प्रक्षेपित किया, जो देश का पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसे पूरी तरह शिक्षा के लिए समर्पित किया गया। एडुसेट के जरिए दूरदराज के इलाकों तक इंटरैक्टिव कक्षाएं, शिक्षण प्रशिक्षण और पाठ्य सामग्री पहुंचाना संभव हुआ। श्रोताओं, याद कर लेते हैं कुछ महान व्यक्तित्वों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
1: जी।
2: सबसे पहले बात करते हैं कनकलता बरुआ के बारे में। कभी कभी इतिहास में उम्र नहीं हौसला पहचान बन जाता है। असम की कनकलता बरुआ ऐसी ही युवा स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य साहस के साथ लिया जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने गोहपुर थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ रही कनकलता बरुआ को ब्रिटिश पुलिस की गोली का सामना करना पड़ा और 20 सितंबर 1942 को वे शहीद हो गई। तमिल सिनेमा के शुरुआती दौर में जब नायिकाओं की पहचान बनना आसान नहीं था, तब एक ऐसी अभिनेत्री सामने आई जिन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल कहा गया, टीआर राजकुमारी। वे सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि गायिका और नृत्यांगना भी थी। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में हरिदास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। 1944 में आई इस फिल्म में उन्होंने एनके त्यागराज भगवतर के साथ अभिनय किया। फिल्म हरिदास ने मद्रास के ब्रॉडवे सिनेमा में लगातार 114 सप्ताह चलकर उस दौर में एक असाधारण रिकॉर्ड बनाया। फिल्म का गीत मनमत्था लीले आज भी टीआर राजकुमारी की पहचान से जुड़ा हुआ है। हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब पर्दे पर श्वेत श्याम तस्वीरें हुआ करती थी, कुछ चेहरे अपनी खूबसूरती और अदाओं से दर्शकों के दिलों में रंग भर देते थे। शकीला भी ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय नाम है। 1950 और 60 के दशक में अपनी खूबसूरती, चुलबुले अंदाज और सहज अभिनय से उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाई। इससे पहले हम उनके बारे में आगे और बताएं आपको, आइए पहले सुनते हैं उनके खूबसूरत गीत।

0: गुरुदत्त की फिल्म आर पार में शकीला की मौजूदगी और उन पर फिल्माया गया गीत बाबूजी धीरे चलना आज भी हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों में गिना जाता है। तो रेनू, श्रोताओं को सुनाते हैं ये गीत जरूर।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: Beautiful, beautiful songs, Vaishnavi. Thank you so much.
1: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज के आज से वीरे में बस इतना ही। उम्मीद है इस मुलाकात ने आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
0: एंड हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्ख आज सवेरे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सबके 9:50 हुए हैं। अब खबरें नशे की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप मुलमार से खबरें सुनिए। हुकूमत ने अगले महीने की 1 तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्कभर में 1067 मकामात पर मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्ते तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उसे हज़्फ करने से मुतल्लिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि साल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक जरूरी होगी। काबिले इतलाक सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी ग्राहकों को इन मराकज से सिलेंडर हासिल करने के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का अमल पूरा करना होगा। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त युवा अभियान के 100 हफ्ते के तहत आज मुल्कभर में नौजवानों की शमूलियत वाले प्रोग्राम होंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने बताया कि मुल्कभर के 1067 मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद होगा। इन मकामात में 471 जिले माए भारत दफातर और 596 शराकतदार तंजीमों के मकामात शामिल होंगे। ये तकरीब मुल्कगीर सतह पर नौजवानों की शमूलियत का अहम लम्हा होगा, जिसमें माए भारत, शराकतदार तंजीमें और नौजवान अफराद सेहतमंदाना फैसलों और नशा मुक्त मुस्तकबिल के अहद के लिए यकजा होंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जिसे पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन ने 18 सितंबर को सरहदी जिला पठानकोट से शुरू किया था, उसे रियासत के आवाम की जानिब से जबरदस्त पजीराई मिल रही है। कल दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहब से यात्रा के 4 मरहलों में से दूसरे मरहले का आगाज करते हुए इसे पंजाब में एक नई तहरीक का आगाज करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा महज एक सियासी प्रोग्राम नहीं, बल्कि पंजाब को मुनशियात, जरायम और खौफ से आजाद कराने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नई तकरीरी हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हालिया बरसों में नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए जरूरी महारतें और मौके फराहम करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज की है। इंतखाबी कमीशन आज कौमी राजधानी दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंप मुनाकिद करेगा। दिन भर जारी रहने वाली इस

0: जीत हासिल की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने अगले महीने की एक तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्कभर में 1067 मुकामात पर मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्ते तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों पर नाम शामिल करने या उसे हस्फ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और अंडमान व निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है अख़वाल ज़र्रे पर मबनी शम फरोज़ा।
2: दुनिया में जो चीज हकीकत से जितनी ज्यादा करीब होती है, उतनी ही ज्यादा सहल और दिलनशीन भी होती है। और खुद फितरत का हाल ये है कि किसी गोशे में भी उलझी हुई नहीं है। उलझाव जिस कदर भी पैदा होता है, बनावट और तकल्लुफ से पैदा होता है। लिहाजा जो बात सच्ची और हकीकी होगी, जरूरी है कि सीधी सादी और दिलनशीन भी हो। दिलनशीनी की इंतहा यह है कि जब कोई बात जहन के सामने आए तो जहन उसको बिला तकल्लुफ कबूल कर ले और किसी तरह की मगारत महसूस न करे। गालिब ने इसी मफहूम को यूं अदा किया है, देखना तकदीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। यही हाल सेहतमंद अदब का है, जिसका मुताला आज की जरूरत है। तबीयत भले ही मुद्दतों से रुकी हुई हो, सेहतमंद अदब के मुताले से इसमें जुम्बिश आ जाती है। ज़ौक़ो फिक्र के जाम गर्दिश में आ जाते हैं। खुदा ने कायनात अर्जी में रोशनी और तारीकी दोनों को पैदा किया, मगर इन दोनों में इम्तियाज जरूरी है। रोशनी राह रास्त पर चलने और मंजिल मुराद तक पहुंचाने की जामिन है, जबकि तारीकी गुमराही की तरफ ले जाती है। सवाल यह है कि सेहतमंद अदब क्या है? इसकी एक पहचान तो यह है कि क्या हम किसी किताब को बार बार पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं और हर बार पढ़ने में इसमें नए नए जहान मानी वाजे हो जाते हैं और हर बार उसकी मख्फी मफाहीम आंखों और जहन के पर्दों पर घूमने लगते हैं। जरूरी नहीं कि जो किताबें आप पसंद करें वही दूसरों को भी पसंद हो। ये पसंद अपनी अपनी वाला मामला है। किताबों के इंतखाब में ज़ौक़ो शौक़, जिंदगी का पस मंजर और जज्बे रवा की कश्ती मौसर साबित हो सकती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि क्या पढ़ा जाए। किताबों के इंतखाब और कारी की दिलचस्पी का अंदाजा करने से कबल अदब के मैदान को जौलागाह बनाना होगा। दिलचस्पी ना होने से किताबों पर नजर तो जरूर दौड़ेगी, मगर जहन किताब की मवाद को जज्ब नहीं कर पाएगा। हमारे मदारिस में तलबा की बेचैनी के जो मुख्तलिफ असबाब हैं, इनमें से एक ये भी है कि उनकी दिलचस्पी की किताबें उनके मुताले में नहीं हैं। फ्रांसिस बेकन का कहना है कि मुताला ज़ौक़ो शौक़ का सामान फराहम करता है, जिंदगी को आरास्ता और पैरास्ता बनाता है और हमारी सलाहियतों में इजाफा करता है। मुताले से इंसान की शख्सियत की तकमील और सीरत की तामीर में मदद मिलती है। तारीख इंसानी का मुताला दानिश्वरी की तरफ ले जाता है। शायरी इंसान की जहनी कुव्वतों और सलाहियतों की जिला का सामान मुहैया करती है। रियाजी के मुताले से जिंदगी के नासुफ्ता गौहर मंजर आम पर आते हैं। फलसफा जिंदगी की गहराई और गीराई का जामिन है। अखलाक की तालीम उलूही सिफात उजागर करती है। मंतिक इसकी सूझबूझ को चार चांद लगाती है। मुताले के दौरान जहर के घूंट भी हर जाम से पीने होते हैं और तिरयाक के नुस्खे भी आजमाने पड़ते हैं। प्यास शर्त है, तशनगी ये लब जरूरी है, क्योंकि इसी सूरत में सैराबी की ख्वाहिश दिल में मौजन हो सकेगी और सैराबी का सरचश्मा इन मुख्तलिफ मनाजिल में तलाश करना होगा اور جستجو و طلب کی راہ سے منزل مراد پانی ہوگی۔

का कलाम पेश कर रहे थे ML नकरा और इस गजल के साथ ही हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशियात जारी है। रूबरू प्रोग्राम के तहत समाप्त कीजिए मारूफ अदाकारा शकीला के साथ की गई एक बातचीत। आपसे महवे गुफ्तगू मरियम काजमी।

0: समीन आपको वो गाना तो याद होगा, बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे। तो ये नदी तो नहीं, हाँ समंदर का किनारा है, और मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है वो, उसका नाम आपको बूझना पड़ेगा। इससे पहले कि आप बूझे, चलिए हम ही बता देते हैं, आज मेरे सामने है शकीला जी। शकीला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल कर हमारे सामईन से और हमसे बात करने के लिए हमें इजाजत दी। शकीला जी, ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपने पहला कदम रखा तो आपकी पहली फिल्म कौन सी?
1: मेरी पहली फिल्म थी कादार साहब की दास्तान, जो 1950 में बनी थी, और उसमें मैंने वीना जी का बचपना किया था।
0: अच्छा, चाइल्ड आर्टिस्ट टाइम किया
1: जी?
0: चाइल्ड
1: आर्टिस्ट, यस। बस वो पहली पिक्चर थी जिसमें राज कपूर और सुरैया जी थी, वीना, अल नासिर जी थे। और उसके बाद फिर मैंने फजलू ब्रदर्स की पिक्चर की थी खूबसूरत, जिसमें सुरैया जी हीरोइन थी। और फिर बाद में आर पार और CID, मगर एज ए हीरोइन मैंने काम किया था अलीबाबा 40 चोर, जो मेरी पहली कॉस्ट्यूम पिक्चर थी
0: महिपाल जी
1: के साथ। और उसके बाद मैंने काफी कॉस्ट्यूम पिक्चर में काम किया, दैट वाज मतलब आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट टाइप ऑफ मूवी। और उसके बाद आर पार, CID और पोस्ट बॉक्स 99 सुनील दत्त साहब के साथ।
0: आपने देवनंद जी के साथ काम किया, गुरुदत्त साहब के साथ किया, उनके साथ आर पार में, तो गुरुदत्त साहब
1: आर पार में
0: जी। तो और उस जमाने की ये बहुत मशहूर हीरो हुआ करते थे
1: जी,
0: है ना? तो ये दोनों फिल्मों में जब आपने काम किया तो आपको कैसे लगा?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ गुरुदत्त जी। इतने अच्छे डायरेक्टर मेरे ख्याल से शायद ही पैदा, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू वर्क इन आर पार। एक ऐसे में यादगार की पिक्चर है वो।

0: सीआईडी में?
1: सीआईडी में ट्रोल प्रोडक्ट प्रोडक्शन था, मगर डायरेक्टर थे अपने राज खोसला साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। और मैंने तो एक ही पिक्चर में उनके साथ काम किया, आगे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं तो चली गई।
0: हाँ, उन्होंने ये फिल्म शुरू किया
1: ये था। हाँ, उन्होंने शुरू किया,
0: उसके बाद से उन्होंने कई फिल्में मेरा साया
1: जी,
0: साधना जी के साथ
1: जी, मगर नथिंग टू मतलब जैसे।

0: अच्छे थे और कारदार साहब थे, कारदार साहब तो बहुत ही अच्छे थे, मगर मैंने तो उनके साथ बचपन छोटा ही काम किया था, मगर आई रियली अडोर, यूज टू अडोर हिम गुरुदत्त जी। और भी मतलब दूसरी पिक्चरों में किया।
1: आप कॉस्ट्यूम फिल्म से निकल के ऐसी मेन स्ट्रीम वाले, ये भी मेन स्ट्रीम ही थी, तो उसमें आ गई, उसके बाद से एकदम से आपने फिल्मी दुनिया को खैर बात कर।
0: खैर एक दिन तो करना ही था, जब एक शादी कर लेते हैं तो दुनिया ही छोड़ के, मतलब मैं इंडिया में नहीं थी, चली गई थी, तो फिर वहां से यहाँ आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था।
1: लेकिन कोई भी एक्ट्रेस का, खुसूसन एक्ट्रेस का, एकदम पीक पीरियड पे जो उसकी एकदम से पॉपुलैरिटी, क्योंकि सीआईडी बहुत ही कामयाब फिल्म थी, और उस मौके पर छोड़ना, जैसे आदमी काम करता है तो फेम के लिए काम करता है, शोहरत के लिए करता है, और वो शोहरत पाने के बाद और पाने की तमन्ना रहती है, लेकिन आपने तो फिर शोहरत पाने का शुरू हुआ था तो आपने छोड़ दिया।
0: हाँ उस वक्त सर अफसोस तो है, क्योंकि उस वक्त कलर पिक्चरें बननी शुरू हुई थी जब मैंने छोड़ा, और मैं मतलब अच्छा काम कर रही थी, अच्छी पिक्चरें चल रही थी, और उस टाइम मेरी लास्ट पिक्चर ये थी उस्तादों के उस्ताद और चाइना टाउन। चाइना टाउन तो आज भी बहुत मशहूर है, उसके गाने बहुत चलते हैं, और काफी लोगों ने कहा कि आप कीजिए, और मैंने जो मुझे एडवांस वगैरह दिए थे वो भी वापस कर दिए। मैंने सोचा जिंदगी में एक दिन सेटल होना ही है, तो उस ख्याल से मैं छोड़ के चली गई।
1: चाइना टाउन में तो शमी कपूर जी,
0: यस, शक्ति सामंत डायरेक्टर थे, और काफी अच्छी पिक्चर बनी, बहुत अच्छी थी। हाँ गाने तो आज भी चल रहे हैं, और कट,
1: लेकिन सीआईडी फिल्म के गाने तो जो मशहूर हुए हैं।
0: हाँ सीआईडी फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए, और सीआईडी फिल्म के बनने के बाद जो पिक्चरें बनती थी वो दूसरे तरीके से बनने लगी, उसी तरह से, क्योंकि उसके पहले इस टाइप की पिक्चरें नहीं बनती थी।
1: सस्पेंस,
0: हाँ राइट,
1: एक थ्रिलर थी, और रहीता जी की पहली फिल्म थी,
0: रहीता जी की पहली फिल्म थी।

0: की आंखों में।
1: शकीला जी, जब आप हीरोइन थी उस जमाने में हम मैगजीन्स में पढ़ते थे करते थे कि आपकी नंदा जी, वहीदा जी और एक जबीन बाबा थी, ये चारों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में।
2: आज भी है, हम लोग काफी मजबूत है इस तरह से,
1: माशाल्लाह।
2: हाँ, बहुत अच्छी तरह से वहीदा जी, नंदा, वहीदा मतलब बेंगलोर जाने के बाद थोड़ा दूर हो गई और जबीन भी अमेरिका जाकर सेटल हो गई तो मिलना, और मैं भी यहाँ नहीं थी, मगर अभी वहीदा जी यहाँ आई है और जबीन भी यहाँ आई है, वो अपने लड़के को पेश कर रही है एज ए हीरो दिस इंडस्ट्री। अल्लाह उसको कामयाब करे। और बस मिलते हैं हम लोग, कभी कभी मिलते हैं,
1: यानी आज भी वो दोस्ती सलामत है।
2: सलामत है जी,
1: क्योंकि कहते हैं ना कि आप लोग सब अपनी अपनी तरह की टॉप हीरोइंस थी उस जमाने में, तो आपस में एक तरह की जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, इसके बावजूद भी आप लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे रही?
2: ये तो पता नहीं, मगर अच्छी दोस्ती रही, क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे के लिए इस तरह से नहीं, जब हम मिलते थे तो बस मिलते थे और हम लोगों का जो उस वक्त का माहौल होता था एक दूसरे के

0: खुश रहते थे। कभी हम लोग खाने पे जाते थे, कभी पिक्चर देखने जाते थे और कभी बैठ के कहीं पर बातें करते रहते थे। मगर ऐसा कभी नहीं था कि ये मुझसे बड़ी है या मैं इससे छोटी हूँ, ये ख्याल कभी नहीं आया। मुझे तो नहीं आया, अब तक दूसरों का
1: यकीनन उनको भी नहीं आया
2: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: तभी तो
2: नहीं, वहीदा का नेचर ही बिल्कुल अलग है और नंदा जी का भी, शी इज ऑल्सो गुड और जबीन भी इस तरह के नहीं है।
1: तो आप स्टैब्लिश्ड हीरोइन थी सीआईडी में और वहीदा जी का पहली फिल्म थी
2: जी,
1: तो किस तरह से आपसे उनकी मुलाकात?
0: मेरी वहीदा से तो सीआईडी में हम काम कर रहे थे और उसके बाद एक दिन नंदा के साथ मेरी रास्ते पे मुलाकात हुई और नंदा ने कहा क्यों नहीं हम लोग आपस में सब मिले, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि बाहर निकलना एक हीरोइन के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत भीड़ हो जाती थी। तो हम लोग बुरका वगैरह पहन के वहीदा जी के घर पे गए उसको डराने के लिए कि हम लोग पाकिस्तान से आए हैं और हम लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो दरवाजा खोला और शायद वो लोग पहचान गई उसमें, वो खुद ही दरवाजे पे थी। तो उसके बाद हमारी इतनी मजबूत मतलब दोस्ती रही कि हमेशा मिलते रहते हैं। अभी इतना मिलना नहीं होता क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, मैं जब भी हम मिलते हैं बहुत प्यार से।
1: और जबीन जी से आपकी मुलाकात कहाँ?
0: जबीन से भी मुलाकात हुई थी, स्टूडियो में कहीं मिले थे और फिर इस तरह से हम लोग ने कहा चलो ये भी अकेली है वो भी अकेले, हम सब मिलके कहीं पिक्चर जाना हो तो ये प्रोग्राम बनाए, कहीं खाने पे जा रहे हैं, कभी ताज में जा रहे हैं, कभी चाइनीज में जा रहे हैं, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो ऐसा होता है।
1: और हीरोज से आप जैसे देव साहब से काम के साथ काम किया, गुरु दत्त जी के साथ, शमी कपूर जी के साथ, इन सब में आप सबसे ज्यादा कम्फर्टेबल किसके साथ
0: थी? मेरे ख्याल से मैं सभी के साथ कम्फर्टेबल थी, सबका अलग अलग तरीका था। राज कपूर जी, श्रीमान सत्यवादी, हाँ सभी बहुत अच्छे थे, सभी के साथ मैं कंफर्टेबल हुआ करती।
1: आपने दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया?
0: अफसोस है नहीं किया, मगर मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और आजकल तो सायरा और ये दिलीप साहब मेरे अपनों से ज्यादा है।
1: अच्छा
0: जी, मेरे अपनों से ज्यादा है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ।
1: उस जमाने की हर हीरोइन की एक ख्वाहिश होती थी कि दिलीप साहब के साथ काम करे, लेकिन बहुत वो खुद फिल्में बहुत कम किया करते थे।
0: हाँ, उनका ये था कि एक तो पहले मैंने पिक्चर जो शुरू की थी, मेरा जो करियर मैंने शुरू किया था कॉस्ट्यूम पिक्चरों से किया था, तो लोगों को ये ऑब्जेक्शन था कि ये कॉस्ट्यूम पिक्चर की हीरोइन है, हालांकि कॉस्ट्यूम पिक्चरों में मैं नंबर वन की हुआ करती थी, मगर लोगों को ये लगता था कि ये कॉस्ट्यूम पिक्चर की हीरोइन है, ये पिक्चर में मतलब सोशल पिक्चर में कैसे काम करेगी। सबसे मुश्किल बात ये आ जाती थी, ऐसे तो मुमताज ने भी काम किया था कॉस्ट्यूम पिक्चरों में और उसके बाद जी जी, मगर बस मैंने ज्यादा काम नहीं किया, बस यही है कि काफी मेरे ख्याल से तकरीबन 10 साल काम किया मैंने स्टार्टिंग से एंड किया, तो ये इतना वक्त पिक्चर में काम करने के लिए बहुत कम होता है
1: जी।
0: जबकि कलर पिक्चर शुरू हुई थी, होने लगी थी और मैंने मतलब जैसे 2-4 ऑफर भी मतलब नहीं किए, छोड़ दिए और पिक्चरें वो सक्सेसफुल हुई, ये सब किस्मत की बात है।
1: आपने अपनी पीक करियर की पीक पर यानी बिल्कुल ऊंचाई पर ये फिल्मी दुनिया छोड़ी, थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने गलती की?
0: नहीं, अब बिल्कुल नहीं लगा ऐसा, सिर्फ ये लगता था कभी कभी कि कलर पिक्चर में काम करती तो और भी अच्छा था, और भी मैं कितनी ऊंचाई पे जा सकती। ऊंचाई पे जाने के बाद भी तो मुझे एक हद तक स्टॉप करना ही पड़ता है, या मुझे करना पड़ता है या मुझे सामने से नहीं मिलता, और मैं कहती हूँ कि मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ और आई एम वेरी कंटेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। जो भी है, ये ख्याल तो आता है कि काश मैं मतलब कलर पिक्चर में काम करती, मगर सोचती हूँ, आज भी सोचती हूँ, मगर जितना किस्मत में होता है उतना ही इंसान को मिलता है।
1: अब आप वापस आ गई हैं, बम्बई में रहने लग गई हैं, पहले तो बाहर रहती थी, तो अब देखिए जैसे वहीदा जी हैं, उन्होंने माँ का रोल करना शुरू कर दिया, नंदा जी ने भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म में, मजदूर फिल्म में शायद उन्होंने काम किया, आपका जी नहीं चाहता?
0: नहीं, मेरा जी अभी कुछ और

0: वो पर्दे पे, बड़े पर्दे पर ना सही, छोटे पर्दे पर देखें।
1: देखिए जो किस्मत में होता वही होता है। अब तो मैं आजाद पंछी उड़ती रहती हूँ यहाँ से वहाँ। फिर अपने आप को बांध लो कोई चीज, मालूम नहीं, शायद कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई मुझे रोल पसंद आ जाए, या मैं सोचूं कि मैं कर सकती हूँ या मैं करूँ, इस तरह का मुझे माहौल मिल जाए तो शायद मैं कर भी लूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं नहीं।
0: आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में, मौसीकी के बारे में, जैसे गाने निकले उसके बारे में आपका क्या ख्याल?
1: अब क्या कहूँ, सुनने को अच्छे लगते हैं। बस वो जो पहले का माहौल था जिसमें कुछ वर्ड्स होते थे जो आपके दिल को टच करते थे, ऐसा लगता था कि ये कुछ हमसे करीब है, मगर आजकल के जो गाने देखने में अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, बस
0: याद नहीं रहते, बोलने
1: नहीं, याद नहीं रहते, मगर वो टच भी नहीं करते, अच्छे लगते हैं, सुन लिया दिल खुश हो गया इस तरह।
0: डांसेस वगैरह, वहीदा जी तो ट्रेन डांसर, आपने कभी डांस नहीं?
1: मैंने डांस सीखा ही नहीं, या मतलब जो डांस मास्टर बताते थे ऐसे ऐसे कर लें, भरतनाट्यम ये सब डांस जो बचपन से सीखते हैं वो अलग बात होती है, मैंने सीखा ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मेरी जिंदगी इस लाइन में बहुत कम अरसे रही और इतने से थोड़े अरसे में आप इतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकते, उसको वक्त लगता है और इस लाइन में रहना पड़ता है।
0: शकीला जी, एक फिल्म आई थी हातिम ताई, है ना, उसमें जयराज जी थे, उसमें भी आपने काम किया था, मर्जीना का नहीं, वो नहीं, वो दली, वो
1: परी बनी थी और वो परी ऐसी थी, वो हातिम ताई की तो एक अलग ही कहानी बन गई, क्योंकि लोग समझने लगे मैं छोटी सी परी हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अहमदाबाद से इधर से उधर से आते थे अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स आकर कहते थे आप ये बच्चों को समझाइए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये परी हमको कहेगी तो हम आगे पढ़ेंगे।
0: अच्छा।
1: हाँ, इत्तफाक देखिए कैसा होता है। और फिर मैं वो बच्चों को समझाती थी, उसमें एक लड़का था जो कुछ 18 साल का था उस टाइम, तो उसने कहा नहीं वो परी मुझे कहेगी तो ही मैं पढ़ूंगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो लड़के को लेकर उसके पेरेंट्स आए और दरख्वास्त की कि प्लीज आप इसके साथ एक दो मिनट बात कीजिए, एक तो बीमार हो गया, कहीं दरख्त से गिर गया और उसने उसको यकीन हो गया कि परी है और वो परी मुझे कहेगी तो ही मैं आगे पढ़ूंगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कभी कभी ये सोच के कि कितना अच्छा काम मैंने किया, वो बच्चे से बात की और उसके बाद पता चला कि उसने अपनी मतलब तालीम मुकम्मल कर ली, फिर वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, अभी कहीं अमेरिका में सेटल है, कभी लेटर लिखा था मुझको कई साल पहले। तो एक तरह का दिल में इस तरह से खुशी होती कि ये परी बन के बहुत बड़ी बात है
0: जी, एक जिंदगी तो सुधरी गई।
1: और खालिद महमूद जो राइटर हैं
0: अभी जिन्होंने फिजा बनाई,
1: जी फिजा बनाई, तो उन्होंने मुझे एक दफा, हम वेनिस में फिल्म फेस्टिवल में गए थे, तो उन्होंने मुझे वहां पर कहा अरे शकीला जी हाउ नाइस टू मीट यू। मैंने कहा क्यों? कहते मैं छोटा था ना तो मैं आपकी पिक्चर देखता था, कई कई बार देखता था। उन्होंने कहा क्यों? कहता वो मुझे परी बहुत अच्छी लगती थी। और उसने बहुत बड़ा सा मिड डे में उन्होंने अपनी तरफ से आर्टिकल लिखा था, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको दिखा दी, और वो बहुत खुश हुए और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे सच इतनी, तो कभी आप देखेंगे पिक्चर ना तो आपको लगेगा छोटी सी परी और वो आकर बॉटल में बंद कर देते हैं। तो काफी लोगों ने कई कई बार देखा और मुमताज ये लोग कहते हैं हमने 100 बार देखा। मैंने कहा क्यों? कहते हमें बहुत अच्छी लगी, तो तुम परी बनती हो ना तो वो चीज बहुत अच्छी लगी। मुमताज और मलका ये लोग से भी मेरे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे रहते थे, तो अभी भी वो मुझे इतनी इज्जत देती है जैसे मैं उनकी कोई बड़ी बहन हूँ।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: बहुत बड़ी बात होती है। और अली बाबा 40 चोर फिल्म जो आई थी उसमें शायद आपने मर्जीना का रोल अदा
1: किया था, उसमें डांस किया था, डांस मतलब जो मास्टर बताते हैं उसी तरह का, मगर वो पिक्चर बहुत सक्सेसफुल,
0: बहुत ज्यादा,
1: और मेरे ख्याल से जितनी कॉस्ट्यूम पिक्चर मैंने काम की है सब सक्सेसफुल है, अफ्रीका में, मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में मुस्लिम लोग बहुत होते हैं। तो एक दफा अभी 10 साहब मिले थे कुछ एक पिछले साल, तो मुझे कहने लगे यूसुफ साहब के सामने कहा अरे शकीला यहाँ से तुम्हें पोस्ट बॉक्स में काम कर रही थी, तब मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा क्यों? कहते कोई मलेशिया से आया था, कोई मिनिस्टर था।

0: प्रंशिका कौन था पता नहीं डॉक्टर का, तो उसने कहा मुझे यहाँ मिलना है तो सिर्फ शकीला से मिलना है। तो बोले हमने पूछा आपको शकीला से क्यों मिलना है, बोले हमने उसकी वो पिक्चर देखी है तो हमको उनसे ही मिलना है। तो मतलब इतने फेमस थे वहाँ पर, इंडिया में इतना नहीं था मगर अफ्रीका मलेशिया और जकार्ता ये सब जगह पे। और वो बोले मुझसे, बोले मुझे किसी और से नहीं मिलना, उसी से मिलना है। और दत्त साहब ने उनको बुलाया, मेरी शूटिंग चल रही थी उनके साथ ही, तो उस वक्त मैं उनसे मिली और बहुत
1: खुशी होती है कि चलो कोई इस तरह से मतलब याद कर लेते हैं।
2: शहीला जी आपको कैसा लगता है जैसे हम जैसे लोग आपको कहते कि हम आपकी फैन हैं और आपकी फिल्में देखते थे और आपका काम पसंद करते थे, तो इतने जमाने के बाद इतना एडुलेशन या कैसा लगता?
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिली खुशी होती है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं और याद रखे हैं। और
2: अपने सुनने वालों को बताइए कुछ पैगाम।
0: बस मेरे सुनने वाले को यही पैगाम है, सबको मेरे तरफ से आदाब शुक्रिया, और फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी,
2: फिर से बातचीत होगी
0: इंशाल्लाह।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।

रेडियो प्रोग्राम के तेज सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे अपने वक्त की मारूफ अदाकारा शकीला के साथ की गई एक बातचीत की पुरानी रिकॉर्डिंग, उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से हमने आपकी खिदमत में पेश की। आपसे गुफ्तगू कर रही थी मरियम काजमी, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेज 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडेश पर हमारी नशियात जारी हैं। मेरी पसंद इस प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब।

तुम्हें बिजलियों की चमक हमने दी है, तुम्हें बिजलियों की चमक हमने दी है। तुम इस हुस्न पर खुद पशेमान रहते, पशेमान रहते हाँ। तुम इस हुस्न पर खुद पशेमान रहते।

0: आशा भोसले सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाजों में ये कव्वालियां सुन रहे थे। फिल्म थी बाबर और ये सुनी चलते का नाम गाड़ी। फिल्म का नगमा किशोर कुमार और मन्ना डे का गाया हुआ। नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकी एस डी बर्मन की।
1: बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम, बाजू।

हमारे सामने फिल्म का नफा सुनिए मन्ना डे और मिस शम्मी का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की।

क्या बर्तन का लेकर आ लो, बर्तन का लेकर आ लो, आशिक है हम निखट्टू हमको न देख भालो, बर्तन का लेकर आ लो, बर्तन का लेकर आ लो।

आप अभी 11 बरस के थे कि आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया। तलाश माश 1-2 बरस बाद दिल्ली खींच लाई। अपनी सौतेली माँ के भाई सिराज खान आरजू के यहाँ कयाम रहा। आरजू जिनका शुमार असातजा में हुआ करता था, मीर की खातिर ख्वाह तरबियत न कर सके, न बहैसियत मामू न बहैसियत उस्ताद। अपना ही हाथ सर पे रहा अपने यहाँ सदा, मुशफिक कोई नहीं है कोई मेहरबान नहीं। ऐन जवानी का आलम था, एक अदद ख्याली इश्क में मुब्तला हो गए। उस जमाने में इस कैफियत को जुनून और इस जमाने में स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। मीर को हर रात चांद में एक माहे पैकरे खूबसूरत नजर आती। क्या पूछते हो आशिक रातों को क्या करे है।

एक दिन वो सीने से लग गया था, गर्मा कर एक दिन वो सीने से लग गया था। तब से हमारी छाती हर शब जला करे है, तब से हमारी छाती हर शब जला करे है। क्या चाल ये निकाली होकर जवान तुमने, अब जब चलो हो दिल को ठोकर लगा करे है। एक आफते जमा है ये मीर इश्क पेशा, पर्दे में सारे मतलब अपने अदा करे है। क्या पूछते हो आशिक रातों को क्या करे है, गाहे बका करे है गाहे दुआ करे है। मीर दिल्ली से कुछ अरसे के लिए भरतपुर रियासत भी गए। वहां के राजा सूरजमल जाट ने रोजीना मुकर्रर किया, मगर जी न लगा, दिल्ली वापस आ गए। बादशाह दौरा शाह आलम सानी ने दरबार में बुलाया, न गए। गरज ये कि मीर जब तक दिल्ली में रहे तबा हाल रहे। ऐ दोस्त कोई मुझसा रुसवा न हुआ होगा, ऐ दोस्त कोई मुझसा रुसवा न हुआ होगा, दुश्मन के भी दुश्मन पर ऐसा न हुआ होगा। और साहिबो जो मीर का हाल था वही दिल्ली का भी। दिल्ली ताराज हुई जाती थी, नादिर शाह, मरहटों, जाटों और अहमद शाह अब्दाली के हाथों। क्या खूब है उस खूनी आलम की गली में, जब हम गए दो चार नई देखी मजारें।

18वीं सदी के दूसरे हिस्से में दिल्ली की तहजीबी विसात उठ गई है, लुट गई है। कभी कभार ख्वाजा मीर दर्द सुनाई दे जाते हैं तो कभी मीर। अलबत्ता लखनऊ में ऐश व निशात की महफिलें खूब खूब गर्म हैं। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा और मीर मोहम्मदी सोज भी वहीं हैं। आखिर को कोई 50 साल

भारत की अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस पांचवा सेमीकॉन इंडिया 2026 कल नई दिल्ली के यशोभूमि में कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुई। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने की खातिर अमरीका के साथ मुजाकरात दोबारा शुरू करने के लिए बैन अवी सालिसकारों को अपनी शराइत से वाकिफ करा दिया है। अमरीका ने अपने शहरियों से कहा है कि वे इलाकाई कशीदगी और सऊदी अरब पर हौसियों के मिजाइल और ड्रोन हमलों के तनाजु में मगरबी एशिया के अपने सफर पर नजरसानी करें। समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। और एशियाई खेलों में भारत की टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा को जापान के खिलाड़ी से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। अब खबरें तफसील से। भारत की अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस पांचवां सेमीकॉन इंडिया 2026 कल नई दिल्ली के यशोभूमि में कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुई। सेमीकॉन से सिस्टम्स इको निजाम की तश्कील के मौजू पर मुनाकिद होने वाली 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 600 से ज्यादा नुमाइशकारों ने शिरकत की। इनमें तकरीबन 300 बैन अवी शर्का 52 ममालिक के नुमाइंदे और 150 से ज्यादा मुकर्रीन शामिल थे। इस तकरीब में मजमूई तौर पर 51,656 रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि तकरीबन 40,000 अफराद ने हिस्सा लिया। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान सेमीकंडक्टर डिजाइन, फैब्रिकेशन, जदीद पैकेजिंग आलात और खाम माल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मसनूई जहानत के शोबों में 56 मुफाहमत नामों, ऐलानात और स्ट्रेटेजिक इकदाम का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था और पॉलिसी साजी और मनसूबाबंदी के मरहले से आगे बढ़कर तजारती सतह पर सेमीकंडक्टर की पैदावार की जानिब भारत की पेशरफ्त को उजागर किया। इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने खबरदार किया है कि सेमीकंडक्टर सनअत को साइबर हमलों और उन ममालिक की जानिब से किसी भी किस्म की रुकावट के लिए तैयार रहना चाहिए, जो भारत को सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। नई दिल्ली में एक मीडिया इदारे से गुफ्तगू करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत को मुमकिन जोग्राफियाई सियासी खतरात से लगातार होशियार रहना होगा, क्योंकि भारत अब ऐसे मुल्क के तौर पर उभर रहा है जो चिप्स को डिजाइन और तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि सनअत, मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को बाहमी तालमेल के साथ काम करना होगा। ईरान ने अमरीका के साथ मुजाकरात दोबारा शुरू करने के लिए बैन अवी सालिसकारों को अपनी शराइत से वाकिफ करा दिया है। वहीं ईरान ने यह भी इंतवाह दिया है कि अगर वाशिंगटन उसके मुतालबात को ठुकरा देता है तो तेहरान फैसला कुन जंग के लिए तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने कहा है कि ईरान की शर्तों में सभी महाजों पर जंग खत्म करना, ईरान के मुंजमद असासे जारी करना और बहरी नाकाबंदी खत्म करना शामिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में रिजाई ने कहा कि ईरान ने अमरीका के साथ मुजाकरात शुरू करने के लिए 7 शर्तों का ऐलान किया है। उन्होंने तेहरान की पोजीशन को साफ और वाज़ेह करार दिया। ईरानी सिक्योरिटी के चीफ ने कहा है कि तेहरान की मंसूबाबंदी का मरकज खलीज ओमान से बहरे अरब तक फैले अमरीकी बहरी असासे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता महीने मुफाहमतनामे की मुद्दत कार खत्म होने के बाद से बैन अवी सालिसकार फरीकैन के दरमियान मुजाकरात का अमल दोबारा शुरू करने पर काम कर रहे हैं। अमरीका ने अपने शहरियों से कहा है कि वे इलाकाई कशीदगी, जंग में अचानक मुमकिन तेजी, परवाजों में रखना और अमरीकी मफादात पर हमलों के तनाजु में मगरबी एशिया के अपने सफर पर नजरसानी करें। यह मशवरा ऐसे वक्त में दिया गया है जब यमन के हौसी लड़ाकों ने सऊदी अरब की जानिब मिजाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से जारी किए गए आलमी मशवरे में कहा गया है कि मगरबी एशिया में अमरीकियों को मशवरा दिया जाता है कि वह इंतहाई चौकसी बरतें और परवाजों की मुमकिन मनसूखी, फिजाई हदूद के बंद होने और दीगर सफरी रुकावटों के लिए तैयार रहें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि साल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक जरूरी होगी। काबिले इतलाक सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी ग्राहकों को इन मराकज से सिलेंडर हासिल करने के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का अमल

पूरा करना होगा। बायोमेट्रिक आधार तस्दीक इस बात को यकीनी बनाती है कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर सिर्फ मजाज और अहल कुंभों तक ही पहुंचे। हर कनेक्शन को आधार तस्दीक से जोड़ने से घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडरों के कमर्शियल और सनअती इस्तेमाल में डायवर्जन की रोकथाम होगी। इसके अलावा इससे जाली और गैर मजाज कनेक्शन खत्म करने में भी मदद मिलेगी और सब्सिडी फराहम करने का अमल शफाफ और मरकूज हो सकेगा। वजारत ने कहा है कि बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का मकसद किसी भी मजाज कुंभे को एलपीजी फराहम करने से इनकार करना नहीं है। वहीं वजारत ने यह भी कहा कि हर ग्राहक के पास इस अमल को पूरा करने के कई आसान तरीके दस्तियाब होंगे। वजारत ने कहा है कि 27 करोड़ 43 लाख सारिफीन पहले ही इस अमल को पूरा कर चुके हैं और उन्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तस्दीक का यह अमल सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम जाकर या तेल मार्केटिंग कंपनियों के एप्स पर भी पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने अब तक बायोमेट्रिक तस्दीक न करने वाले सार्फिन से अपील की है कि वो इस काम को 1 अक्टूबर 2026 से पहले मुकम्मल कर लें। इंतखाबी कमीशन आज कौमी राजधानी दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंप मुनाकिद करेगा। दिनभर जारी रहने वाली इस मुहिम का मकसद शहरियों को वोटर फहरिस्त में नए नाम शामिल कराने, मुजवजा नामों की शमूलियत के अखराज पर एतराज दर्ज कराने और वोटर फहरिस्त में मौजूद मालूमात और तफसीलात दुरुस्त कराने में मदद फराहम करना है। बूथ सतह के अफसरान बीएलओज मुकर्रा पोलिंग बूथों पर मौजूद रहेंगे और दरखास्तें वसूल करेंगे। नए वोटर के इंदराज के लिए फॉर्म 6, किसी नाम के इंदराज पर इतराज या नाम हजफ कराने के लिए फॉर्म 7, जबकि वोटर फहरिस्तों में किसी भी मालूमात को दुरुस्त कराने या अपडेट कराने के लिए फॉर्म 8 जमा कराया जा सकता है। कौमी राजधानी में जारी खसूसी जामे नजर सानी एसआईआर के सिलसिले में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अशोक कुमार ने वाज़ह किया कि इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसरान ईआरओज समाअत के दौरान नोटिस में दर्ज दस्तावेजात के अलावा दीगर दस्तावेजात को भी किसी की नौयत के मुताबिक ज़ेर गौर ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जिसे पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन ने 18 सितंबर को सरहदी जिला के पठानकोट से शुरू किया था, इसे रियासत की आवाम की जानिब से जबरदस्त पजीराई मिल रही है। कल दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहब से यात्रा के 4 मरहलों में से दूसरे मरहले का आगाज करते हुए उसे पंजाब में एक नई तहरीक का आगाज करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा महज एक सियासी प्रोग्राम नहीं, बल्कि पंजाब को मनशियात, जराइम और खौफ से आजाद कराने के लिए इज्तमाई कार्रवाई की अपील की है। शतरंज ओलंपियाड में मर्दों की भारतीय टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। इस दौरान आर प्रगनंदा ने डेविड एंटोन गुलजारो के खिलाफ ड्रॉ खेला। वहीं निहाल सरीन को भी जेमे सेंटोस लतासा के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा। वहीं खवातीन के जुमरे में भारत ने मंगोलिया के खिलाफ 3-1 की जबरदस्त जीत हासिल की। भारत की बेस्वेता श्री ने मशहूर खिलाड़ी मोंगुंटुल बटखुया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लगातार 4थी जीत दर्ज की। एशियाई खेलों में भारत के टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा को जापान की पसंदीदा खिलाड़ी यूई सका

काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का तो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मिली सर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से, और इस प्रोग्राम की अगली पेशकश है टावर हाउस फिल्म का नगमा मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी रवि ने।

0: है चाइना टाउन फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: किसी को भी अगर होश रहे।
2: हाय हाय हाय हाय सकते

और बहरी नाकाबंदी खत्म करना शामिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में रज़ाई ने कहा कि ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 7 शर्तों का ऐलान किया है। उन्होंने तेहरान की पोजीशन को साफ और वाज़ह करार दिया। ईरानी सिक्योरिटी के चीफ ने कहा कि तेहरान की मंसूबाबंदी का मरकज खलीज उम्मान से बहरे अरब तक फैले अमरीकी बहरी असासे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता महीने मुफाहमत नामे की मुद्दत कार खत्म होने के बाद से बैन-अल-अक़वामी सालिसकार फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करने पर काम कर रहे हैं। अमरीका ने अपने शहरियों से कहा है कि वो इलाकाई कशीदगी, जंग में अचानक मुमकिना तेजी परवाजों में रखना और अमरीकी मफादात पर हमलों के तनाजुर में मगरबी एशिया के अपने सफर पर नजरसानी करें। यह मशवरा ऐसे वक्त में दिया गया है जब यमन के हौसी लड़ाकों ने सऊदी अरब की जानब मिजाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी महकमे खारजा की जानब से

0: चलिए हमें इजाजत दीजिए।
1: ऐसी फिल्म जिसमें प्यार है, परिवार, दोस्ती, दुश्मनी, रहस्य और एक्शन। हो सकता है फिल्म का गाना सुनकर आपने फिल्म के नाम का अंदाजा भी लगा लिया हो। फिल्म का नाम है रखवाला। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं धर्मेंद्र, लीला चंद्रवरकर और विनोद खन्ना। फिल्म का निर्देशन अदुत्री सुब्बाराव ने किया था।

अपने छोटे बेटे सुरेश के भविष्य की चिंता है। वो दीपक से सुरेश की रक्षा करने का वचन लेती है। दीपक अपनी माँ को वचन देता है कि वो हर परिस्थिति में, चाहे कैसा भी संकट आए, अपने भाई की रक्षा करेगा। लेकिन लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। परिवार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो कई लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये रहस्य कलत

रखवाला साथ नजर आए। इसी के साथ फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने दिया था। फिल्म के गीतों में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे महान गायकों की आवाजें आपको सुनाई देती हैं। तीसरी खास बात रखवाला तमिल फिल्म कावला कारन का हिंदी रूपांतरण थी। और खास बात यह कि फिल्म में रोमांस और गीत संगीत के साथ साथ रहस्य और एक्शन को भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। साथ साथ अगर हम गीत संगीत की बात कर रहे हैं तो क्यों ना सुन लेते हैं इसी बात पर एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

और साथियों देखते ही देखते हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुकी है बहुत सारी ईमेल्स और आपने हमें भेजना शुरू कर दिए हैं अपने बहुत सारे संदेश और प्रकृषण खेरा विशु विशाल शालिनी टिवानी और आपके परिवार के सभी सदस्य। और जो मेल्स आई हैं हमें वो आई हैं बहुत सारी, हमारे साथियों ने मेल रिपीट भेजी है तो हम ले नहीं पा रहे हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

तो श्रोताओं, ये थी वर्ष 1971 की फिल्म रखवाला की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें माँ का प्यार है, भाई के प्रति जिम्मेदारी है, प्रेम है, दुश्मनी है, साजिश है और सच्चाई के लिए संघर्ष है। धर्मेंद्र का दीपक अपने परिवार

0: बरामद की गई थी। पुलिस ने चार मुलजमान भी एक पिस्तौल से जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। सूचना के प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर सनत नू उन्होंने देशों तो साइबर हमलों से होर रुकावटा लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस खेत्र विच अगे वधे। एक मीडिया संस्था नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि भारत नू संभावी भूसियासी जोखमां बारे सुचेत रहने की जरूरत है क्योंकि यह एक समर्थ चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले देश वजों उभर रहा है। बहुत सारिया कंपनियां और देश इस नू एक खतरे वजो देख सकते ने।
1: We have to continuously be watchful of the
2: भारत चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे। हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: पहली अक्टूबर तो सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग लिए आधार न जुड़िया बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लाजमी होगा। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि सिर्फ योग्य परिवारों को ही सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलन। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी योग्य परिवार को एलपीजी तो वांझा करना नहीं है। बांग्लादेश में ढाका के जाफराबाड़ी चौराहे से कई बम धमाके हुए ने। एक दिन पहला स्थानक पुलिस थाने के बाहर भी सुतरा के धमाके हुए सन। इस ताजा घटना में एक रिक्शा चालक जख्मी हो गया है। यमन के हौसी लड़ाकों वालों सऊदी अरब को निशाना बना के मिजाइल से ड्रोन हमले करने के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव दरमियान अमरीका ने अपने नागरिकों को तनाव के संभावित तौर पर तेजी से बढ़न उड़ाना विचलन और अमरीकी हितों को निशाना बना के हमले होने संबंधी चेतावनी दिंदया पश्चिमी एशिया की यात्रा से मुड़ विचार करने की अपील की है। खेडा में भारत की इला वेनिल वाला रिवान ने अज जापान में आईजी नागोआ एशियाई खेडा में औरतों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। इस तो पहला भारत ने औरतों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। भारत की औरतों की हॉकी टीम ने एशियाई खेडा की शानदार शुरुआत कर दिया। अपने पूल बी के शुरुआती मैच में उज़्बेकिस्तान ने 19-0 नाल हराया। भारत का अगला मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एला वेनिल वाला रिवन विदर्शता के विनोद और सोनम उत्तम सरकत ने एशियाई खेडा 2026 में औरतों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने से बधाई दी है। औरतों के क्रिकेट में भारत ने जापान के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में एशियाई खेडा के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश के सामने 196 दौड़ों का टीचा रखा है। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शिवाली वर्मा ने अपना पहला सफेद गेंद वाला अंतर्राष्ट्रीय सैकड़ा लाके इतिहास दर्ज किया। एशियाई खेडा में सैकड़ा लाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई है। इस दौरान सलामी बल्लेबाज सुमिति मंदाना न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को पिछे छड़ दिया और कदे 2020 में सब तो वह दौड़ा बढ़ाने वाली खिलाड़ी बन गई है। आखिर चकार खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में चुगित्ते ते जलवायु गतिशीलता के भविख बारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समाप्ति सैशन में संबोधन करेंगे। विकसित भारत में नशा मुक्त युवा मुहिम के हिस्से वजो आज देशभर में प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। केंद्रीय कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज फाजिलका की सादगी सड़क तो पंजाब भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीजे पड़ाव की शुरुआत कर रहे हैं। इस नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:10 होगा।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इंतजाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में वीर गार्जियन दो तरफा फिजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है। हौसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे जीते हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शिफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली

0: दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। उम्मीद है कि इजलास के दौरान बिजली महकमे के मरकजी वजीर मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक इस कॉन्फ्रेंस में अदालती हिकमत अमली, साइंसी मालूमात, माहौलियात से

वो 46 साल की थी। मुतल्ला पायल मेहता मुंबई गई हुई थी कि अचानक बेचैनी होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीरों अमित शाह, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव ने उनके इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। मुंबई में आज सुबह सवेरे कला चौकी में गणेश उत्सव मंडल के नजदीक पीने के पानी के आरजी स्टॉल में करंट लगने से दो

0: ஆந்திரப்பிரதேஷ் கர்நாடகா கேரளா மாஹே தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கராய்க்கல் அண்ட் தெலங்கானா டூரிங் த டே. மத்திய மகாராஷ்டிரா ஒடிஷா ஈஸ்ட் ராஜஸ்தான் கேஞ்சிடிக் வெஸ்ட் பெங்கால் ஜார்க்கண்ட் கோங்கன் கோவா மத்திய பிரதேஷ் மராட்வாடா தெலங்கானா விதர்ப் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ் அக்கம்பனிட் பை லைட்னிங் அண்ட் கஸ்டி விண்ட்ஸ். அண்ட் நவ் பிஃபோர் வி எண்ட் தி புல்லட்டின் தி ஹெட்லைன்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன். President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh will be organized at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia's Houthis launch missile and drone attacks in Saudi Arabia. Indian shooters shine at Asian Games with two silver medals in Nagoya, Japan. India storms in the finals of Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nissin, Japan. Shefali Verma becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer with the women's T20 international. And IMD forecasts heavy rainfall of Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी. युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन. हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा. जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते. भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी. और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है. एक रिपोर्ट.
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्यप्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया. इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया. 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए. सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई. इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया. साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई. अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे. 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन. जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे. 14 राज्य इसमें भाग लेंगे जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है. 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा. इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा. इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा. युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है. विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं. समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है. नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 3रे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया. उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष

0: सिंह ढिल्लो और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफवाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
2: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपा गोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।

0: पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
1: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
1: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा। ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए शिवा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला

0: सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई है और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक निश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मान आप महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सुजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद कर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 2:30। जी हाँ, आपको रहता है बेसब्री से इंतजार इस समय का। आज है रविवार और रविवार आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं आज अपने इस कार्यक्रम को सुनने, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत का आज जन्मदिन भी है। और खैर, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज आपके एक ही कलाकार कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त कुसुमलता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में अगर आप शिरकत करना चाहें, अपना कोई भी ऐसा वाक्य जो आपको याद आ जाए, या कोई पसंदीदा गीत, या फिर कोई बात करनी हो, तो आप भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर अपनी डिजिटल चिट्ठी। जी हाँ, डिजिटल चिट्ठी इसलिए क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है और इस ईमेल के जरिए भेजने वाले संदेश को हम कहते हैं डिजिटल चिट्ठी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लेकिन स्वागत करते करते हम एक छोटा सा एक मधुर जो सुर है वो बांध लेते हैं अपने साथ, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे सुर बंधने वाले हैं, और क्योंकि ये तो आप अपने आप जान ही जाएंगे। खैर, कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ मैं, क्योंकि आज का सफर जो है थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करेंगे उस फिल्मकार की जिसने फिल्मों में सिर्फ अपनी कहानियां नहीं कही, बल्कि जीवन के अंदर चल रही जो भी इंसान के अंदर कहानियां होती हैं उनको पर्दे पर उतारने की कोशिश की। वो कहानी जिसमें प्यार है, टूटना है, रिश्तों की उलझन है, अकेलापन है, सपने हैं और सबसे बड़ी बात जिंदगी की सच्चाई है। जी हाँ, आज का जो एक ही कलाकार का हमारा विषय है, एक ऐसी शख्सियत महेश भट्ट।

जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, जिनकी फिल्मों के जरिए आपने जाना होगा कि उन्होंने अपनी फिल्मों में हर एक उस जिंदगी की सच्चाई को छूने की कोशिश की जो इंसान के भीतर चलती है। ये एक ऐसा नाम है जिसने हिंदी सिनेमा में अलग अलग तरह की कहानियों को अपनी खास नजर से देखा, कभी अर्थ के जरिए रिश्तों के भीतर की बेचैनी सामने रखी तो कभी सारांश में उम्र, अकेलेपन, जिंदगी के अर्थ को छुआ, और फिर आशिकी जैसी फिल्म के जरिए प्रेम और संगीत को एक ऐसी लोकप्रिय पहचान दी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो आज के अगले 30 मिनट हम सिर्फ महेश भट्ट की फिल्में नहीं गिनेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन सा नजरिया था जिसने महेश भट्ट को महेश भट्ट बनाया। कौन है महेश भट्ट दोस्तों? महेश भट्ट का नाम हिंदी सिनेमा के उन फिल्मकारों में लिया जाता है जिन्होंने निर्देशन के साथ साथ लेखन और निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया। बात करेंगे लेकिन सुनते हैं पहले ये गीत।

तो बात कर रहे हैं आज हम महेश भट्ट की, आज उनका जन्मदिन भी है। हम सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं, और साथ में हम बताना चाहेंगे कि 20 सितंबर 1948 को बॉम्बे में जन्मे महेश भट्ट ने फिल्म दुनिया में अपनी फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत 1970 के दशक में की थी। उनकी पहली निर्देशित फिल्म मंजिले और भी है 1974 में आई, लेकिन हर फिल्मकार की तरह उनके लिए भी सफर एक फिल्म से शुरू होकर पहचान तक नहीं पहुंचता। उसके पीछे होते हैं कई प्रयोग, कई असफलताएं, कई सवाल, और सबसे जरूरी अपनी आवाज खोजने की कोशिश। महेश भट्ट की फिल्मों में एक चीज बार बार दिखाई देती है, इंसान की कमजोरी को छिपाया नहीं जाता। जी हाँ, उनके किरदार हमेशा परफेक्ट नहीं होते, गलतियां करते हैं, टूटते हैं, कभी अपने फैसलों से जूझते हैं और कभी अपनी परिस्थितियों से। यही वजह है कि उनकी फिल्मों के किरदारों में दर्शक अक्सर खुद को तलाशता हुआ दिखाई देता है, और अब जरा माहौल को थोड़ा सा फिल्म संगीत के जरिए जोड़ देते हैं।

दोस्तों, संगीत के बिना महेश भट्ट की सिनेमाई दुनिया की चर्चा अधूरी लगती है। और अब बात उसी फिल्म की जिसने प्रेम और संगीत को एक नई लोकप्रिय पहचान दी, आशिकी।

गीत भी सुनते रहिए और बातें भी। जी हाँ, क्योंकि समय जो होता है ना बहुत ही थोड़ा होता है हमारे कार्यक्रम का और बातें बहुत ज्यादा, तो हम चाहते हैं कि गागर में सागर वाली बात कर दें, यानी कि कम समय में बहुत सारी बातें कर लें। तो बात कर रहे हैं आज हम एक ही कलाकार कार्यक्रम में महेश भट्ट की। अर्थ के जरिए उन्होंने रिश्तों को देखने का नया नजरिया बनाया। साल था 1982, फिल्म आई अर्थ, और यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये रिश्तों के भीतर मौजूद सवालों की कहानी थी। शादी क्या है, प्यार क्या है, विश्वास क्या है, और अगर किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो क्या जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। अर्थ ने इन सवालों को बहुत ही सीधे तरीके से सामने रखा। फिल्म में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार थे। फिल्म का केंद्र था एक वैवाहिक रिश्ता जिसमें प्रेम, विश्वास और विवाह के बाद संबंध की जटिलता सामने आती है। महेश भट्ट के अपने जीवन के अनुभवों का प्रभाव भी इस फिल्म से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी फिल्म की असली ताकत सिर्फ ये नहीं होती कि उसकी कहानी किससे प्रेरित है, उसकी असली जो ताकत होती है ना वो होती है कहानी दर्शक के भीतर कौन सा सवाल छोड़ जाती है। जी हाँ, और अर्थ भी यही करती है, वो पूछती है कि अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो क्या इंसान भी टूट जाता है, या वो खुद को दोबारा बना सकता है, जोड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि अर्थ को आज भी एक सिर्फ पुरानी फिल्म कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो लीजिए सुनते हैं अर्थ फिल्म का ये गीत।

और फिर आई इनकी अगली फिल्म सारांश, जिंदगी का अर्थ। जब ये फिल्म बनी तो महेश भट्ट के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में इनको गिना जाता है। नाम तो हमने आपको बताया ही। 1984 में आई ये फिल्म एक बुजुर्ग दंपति की कहानी के माध्यम से दुख, अकेलेपन, जिंदगी के अर्थ को सामने लाती है। फिल्म में अनुपम खेर ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि उस समय अनुपम खेर अपने करियर की शुरुआत में थे, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने एक अभिनेता के रूप में गंभीर पहचान बनाई। सारांश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली और भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि बनी। दोस्तों सोचिए, एक माता पिता, उनका इकलौता बेटा उनसे दूर चला जाता है। घर वही है, कमरे वही हैं, यादें वही हैं, लेकिन घर में मौजूद एक इंसान की कमी पूरी जिंदगी को बदल देती है। यही है सारांश की संवेदना, और शायद इसी वजह से ये फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है। अब जिंदगी हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज छीन लेती है तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं? महेश भट्ट के सिनेमा में ऐसे सवाल बार बार लौटते हैं और यही उनकी खासियत है। दोस्तों महेश भट्ट का सिनेमा सिर्फ गंभीर और संवेदनशील सवालों फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने मुख्य धारा के लोकप्रिय सिनेमा में भी अपनी जगह बनाई। 1986 में आई नाम ने उनके करियर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसके बाद महेश भट्ट ने ऐसा सिनेमा बनाया जिसमें भावनाएं भी थी, कहानी भी थी और दर्शकों से जुड़ने की लोकप्रिय क्षमता भी, यानी एक तरफ गंभीर विषय, दूसरी तरफ आम दर्शक से सीधा संवाद। यही संतुलन महेश भट्ट के करियर की एक महत्वपूर्ण पहचान बन गया। और अब 1990 की फिल्म आशिकी। महेश भट्ट के निर्देशन और राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने प्रेम कहानी और संगीत को केंद्र में रखा। लेकिन आशिकी की सबसे बड़ी याद क्या है? जी हाँ, उसका संगीत। आज भी 1990 के दशक के रोमांटिक संगीत की बात होती है तो आशिकी का नाम जरूर आता है। आशिकी से दिल है कि मानता नहीं तक एक ऐसी फिल्म जिसने प्रेम कहानी को संगीत के साथ साथ बहुत मजबूती से जोड़ा, और महेश भट्ट ने कई अलग अलग तरह की कहानियों पर काम किया। 1991 में आई दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान और पूजा भट्ट की जोड़ी, एक रोड ट्रिप की कहानी। जी हाँ, प्रेम का हल्का फुल्का अंदाज। यहाँ महेश भट्ट ने एक दूसरा रूप दिखाया, जहाँ अर्थ और सारांश की गंभीरता थी, वहीं दिल है कि मानता नहीं से रोमांस और मनोरंजन का रंग दिखाई देने लगा। उसी दौर में आई सड़क, जो बहुत चर्चित हुई और चर्चित फिल्मों में भी शामिल हुई। 1980 से 1990 के दशक में महेश भट्ट लगातार अलग अलग शैलियों में काम करते नजर आए, कभी सामाजिक और कभी भावनात्मक कहानी, कभी प्रेम, कभी अपराध, कभी संघर्ष और कभी संगीत से भरी कहानी। यही विविधता उनके फिल्मी सफर को खास बनाती है।

गीत भी सुनते रहिए और अपना नाम भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं के संदेश आ चुके हैं। तो जो बिल्कुल 2:30 पर हमें संदेश आया, पांडा पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, इशात लखन, सावित्री बाई, इनका हमें संदेश मिला, मसरूर हसन जी का, दिग्दर्शन गौर जी का, अमर रमेश कुमार जी का, फारूक अली, ताज मोहम्मद, दिग्दर्शन गौर, बाबू शिवा, आर कुमार, हरजिंदर शिंदे और हिरमानी वर्मा, धर्मेंद्र छिपा जी का, रोहित वशिष्ठ, धर्मेंद्र छिपा, अनिल मोहन जी, संजय धिंगिया जी, राधेश्याम देवांगन, राजकुमार डूडी, रोशन देवांगन जी कहते हैं हम भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम शानदार चल रहा है, प्रस्तुति लाजवाब रही, क्या बात है। सुदर्शन मुखी जी ने भी संदेश भेजा हमें शांति नगर सोनीपत से, और पीएस नावकर जी ने भी हमें संदेश भेजा। आप सभी का धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में शिरकत की।

क्योंकि समय अब सिर्फ रह गया है 5 मिनट का और बात करनी है बहुत सारी। तो चलिए हम बता दें कि महेश भट्ट एक ऐसे कहानीकार के रूप में हम इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं जिसने रिश्तों की दरारों को भी कहानी के जरिए ढाला, अकेलेपन को पर्दे पर उतारा, प्रेम को संगीत से जोड़ा, जो निजी अनुभवों को लाखों दर्शकों की भावनाओं से जोड़ सकते हैं, अर्थ से सारांश तक, नाम से आशिकी तक, दिल है कि मानता नहीं से सड़क तक और जख्म तक उनका सफर एक हमें एक बात जरूर याद दिलाता है। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाली तस्वीर नहीं है, सिनेमा वो एहसास है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी हमारे भीतर चलता रहता है। इसी एहसास के साथ मैं कुसुमलता आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो इंद्रप्रस्थ, जी हाँ इंद्रप्रस्थ चैनल, और याद रखिए कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचती हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे, जी हाँ, कार्यक्रम ब्रज माधुरी। 3 बजने को है, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 बजे हम पेश करेंगे नई तकनीर की शरी रिवायत और खिदमत के हवाले से डॉक्टर रसीद आलम की तहरीर का द फीचर शेर के पर्दे में उसने गम सुनाया का दूसरा और आखिरी हिस्सा। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के महरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अलाकवामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नौजवानों में मनुष्यात के बेजा इस्तेमाल के खात्मे के लिए पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में जारी वीर गार्जियन दो तरफा फजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है, हौसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे जीते हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शेफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। स्मृति मंथाना खवातीन के T20 में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के महरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अलाकवामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। उम्मीद है कि इजलास के दौरान बिजली महकमे के मरकजी वजीर मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। माहौलियात और आबोहवा के महरिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में अदालती हिकमत अमली, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के तबादले के लिए एक प्लेटफार्म फराहम किया है। इस कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेस, मुख्तलिफ वजारतों के

0: विनिल वलारेवन और सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने एशियाई खेलों में मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया। भारतीय टीम ने मजमूई तौर पर 1898 प्वाइंट हासिल किए। इस मुकाबले में चीन पहले मकाम पर रहा। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस काबिले सताइश कामयाबी से इन खेलों में भारत के तमगे जीतने का सिलसिला शुरू हो गया है और मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात है। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने भी खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ मांडविया ने नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी आने वाले दिनों में मजीद तमगे जीतकर मुल्क की शान बढ़ाएंगे। भारत बांग्लादेश को दूसरे सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने बांग्लादेश के सामने 196 रन का निशाना रखा था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शेफाली वर्मा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। वह एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों पर T20 मैचों की अपनी पहली सेंचुरी बनाई। नायब कप्तान स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन स्कोर किए जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 40 रन बनाए। इधर सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना खवातीन के T20 मैचों में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। वह न्यूजीलैंड की सुजी बैट्स के 4758 रन के रिकॉर्ड से आगे निकल गई हैं। अब भारत की खवातीन टीम मंगल के रोज फाइनल में सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगी। श्रीलंका की टीम पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नौजवानों में मनुष्यात के बेजा इस्तेमाल के खात्मे के लिए पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में जारी वीर गार्जियन दोतरफा फजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है। हौसियों ने सऊदी अरब पर मिजाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के 2 तमगे जीते हैं और भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शेफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। स्मृति मंधाना खवातीन के T20 में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे हिम्मत है फिल्मी नगमों पर बमड़ी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं अपने जमाने की मारूफ अदाकारा जिसे आप आर्या पार हेरोइन के नाम से जानते हैं, जिसने सीआईडी फिल्म में काम किया, जिसने चाइना टाउन में काम किया। उस जमाने की मारूफ अदाकारा बादशाह जहां के नाम से उन्हें जाना जाता है, लेकिन उनका फिल्मी नाम था शकीला। आज की नगमी यानी कि आज के प्रोग्राम की नगमी उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं। हम आपकी खिदमत में पेश करें क्योंकि आज उनका यौम वफात है।

स्टडी फिल्म का नगमा सुन रहे थे शमशाद बेगम की आवाज में। नगमा लिखा थे मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकार ओपी नैयर। और लीजिए सामने सुनिए श्रीमान सत्यवादी फिल्म का नगमा, मुकेश सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। मौसीकार हैं दत्ताराम।

0: वो क्या चीज है आह जिसके लिए,
1: वो क्या चीज है आह जिसके लिए,
0: वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले,
1: उठाकर चले।
0: कोई ना उम्मीदा न करते निगाह, कोई ना उम्मीदा न करते निगाह,
1: कोई ना उम्मीदा न करते निगाह,
0: कोई ना उम्मीदा न करते निगाह, तो तुम हमसे मुंह भी
1: छुपा कर चले,
0: तो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले, कि तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले, जबी सजदा करते ही करते गई,
1: जबी सजदा करते ही करते गई,
0: जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम
2: अदा कर चले,
0: हक़े बंदगी हम अदा कर चले, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, कहें क्या जो पूछे कोई हम समीर,
1: कहें क्या जो पूछे कोई हम समीर,
0: कहें क्या जो पूछे कोई हम समीर, जहां में तुम आए थे
2: क्या कर चले,
0: क्या कर चले, जहां में तुम आए थे क्या कर चले।
3: मीर साहब, आज लखनऊ और देहलवी शायरी का फर्क वाज़े हो गया। लखनऊ की शायरी वाह की शायरी है और दिल्ली की

0: मीर कमोबेश 28 बरस लखनऊ में रहे मगर फकीराना, उसी लखनऊ में जो उन दिनों ऐशो इशरत का गहवारा था। लख लख नवाब आसिफुद्दौला ने 200 रुपया महाना मुकर्रर किया था मगर बात बात पर नवाब से रूठ जाते और दरबार से अक्सरहा गैर हाजिर ही रहते, उमूमन गोशानशीन रहते। और कुछ मशगला नहीं है हमें, गाहो बेगा गजल सराई है। अपने घर के किसी तारीख कोने में बैठे गुलो बुलबुल पर शेर कहते मगर खिड़की के पट न खोलते कि देख लेते कि उस पार एक बाग भी है। आखिर कोई सी बेकसी इसी बेचारगी के आलम में 20 सितंबर सन 1810 में लखनऊ में वफात पाई। कल जाकर हमने मीर के दर पर सुना जवाब, मुद्दत हुई कि यहां वो गरीबुल वतन नहीं। इस अजीम शायर की वफात के बाद भी हमने उससे वफा न की, उसका मजार उजड़ जाने दिया। लखनऊ में जहां उनके दफन होने का गुमान है वहां एक निशानी बना दी गई है। दोनों तरफ से रेलगाड़ियां शोर मचाते हुए गुजरती हैं। उसी मीर के मजार के सिरहाने जिसने कहा था, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है।
1: शेर के पर्दे में उसने गम सुनाया। नई तकनीकी शेरी रिवायत और खिदमत के हवाले से भी आप सुन रहे थे डॉक्टर सईद आलम की तहरीर करदा फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा। सदाकार थे डॉक्टर सईद आलम और नसीम अहमद थिलकवा। पेशकश अली मोहतशिम रजा की थी। मॉडरेटर थे राजेश कुमार श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमी।

अनुराधा प्रभा और उदित नारायण की आवाजों में आप सुन रहे थे ये नगमा फिल्म थी हम तुम्हारे हैं सनम। और लीजिए सामने आप सुनिए कंचन मनहर और आनंद की आवाजों में इंदिवर का लिखाई गीत जिसे मौसी की सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म है कुर्बानी।

तरुण भरी मान इस फिल्म पर हम आप सुन रहे थे नितिन मुकेश साधना त्रिगम और साथियों की आवाजों में मौसीकार थे राजेश रोशन। और सामने सुनिए अंधा कानून फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज में नगमंगार आनंद बख्शी मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अच्छा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे इकबाल कुरैशी की मौसीकी सजाए नगमा, फिल्म थी चार चार चार। और आप सुनिए मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजों में दोस्ताना फिल्म का नगमा, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगली फिल्म का दुगान आप सुन रहे थे नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में, नमानिगार सितारे सार अख्तर, मौसीकार खय्याम। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश रोशन की मौसीकी से जय नगमा, आवाज मोहम्मद रफी की है, फिल्म है दादू।

0: आसमान पर जुजी तौर पर बादल छाए रहे और अगले दो दिन के दौरान मौसम साफ रहने की पेशगोई की है। खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नौजवानों में मुनशियात के बेजा इस्तेमाल के खात्मे के लिए पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इंतजाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में वीर गार्जियन दो तरफा फिजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है। हौसी ने सऊदी अरब पर मिजाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे जीते हैं और भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शेफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समय शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम गिरादिल खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नशरियात के साथ हम गिरादिल खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन की यह पंजाबी सेवा है। शाम के 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा का आगाज कर रहे हैं शाही जबान सराइके के प्रोग्राम झोंक माही दे नाल।

0: आकाशवाणी के विदेश प्रसारण सेवा दसिराय की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते सत श्री अकाल करेना। आज असा हाजिर है आप सब दे नाल है प्रोग्राम यादों के झरोखों से। हिंदे विच असाडे नाल हैं बहन कृष्णा सलूजा जी। एक खास गल ए है कि कृष्णा जी की पैदाइश जड़ी है वो आजादी करने पहले दी है। मेरे को बहुत सारी यादा ऐसी हो सन जो असाडे नाल अज साझा करे सन। मैं कृष्णा जी सलूजा जी का आपका स्वागत करेगा। राम राम जी नमस्ते। यही गल तो शुरू करे सा कि तुम्हारी पैदाइश केड़े साल की है?
1: 1940
0: यानी आजादी करने लगभग 7 साल पहले की तुम्हारी पैदाइश।
1: 47 हाँ 6 साल दी गई हाँ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हूं हले तुसा कितनी बहन मेरा आवे?
1: 7 बहन मेरा से।
0: ते आजादी मिली है 15 अगस्त 1947 को, तो वंड थी गई है अद्धा हिस्सा हिन्दुस्तान का, हिन्दुस्तान रह गया अद्धा हिस्सा पाकिस्तान रह गया। जेडे वेले तुसा इथा आए आवे तो 15 अगस्त कनू पहले आए आवे या बाद च आए आवे?
1: 15 अगस्त को नू बाद च आए।
0: बाद च आए आवे कि आए आवे? ट्रेन विच आए आवे?
1: ट्रेन विच आए आसे पहली गड्डी च।
0: हुन कनू पहले 4 गड्डी आ चुकी हैं।
1: साडा मामा है ना वो पाकिस्तान रह गए।
0: अच्छा उथा रह गए
1: बच्चे को? मेरे बच्चे किथे गए? वो पेके नाल आ गए।
0: हाल तक वे उथा रहा पेन
1: गुजर गए?
0: अच्छा गुजर गए।
1: मुरादाबाद ही जानी।
0: अच्छा तो उन्हां नाल कोई चिट्ठी पत्री? उन्हां नाल
1: चिट्ठी पत्र दी है इन्हें बे चिट्ठी पत्र ते क्या होनी है? आए दिल्ली मोए दिल्ली एंटरांदे मुरादाबाद आन।
0: अच्छा
1: यारी दोस्ती बनाई रखी और घर घर बैठा मैं किथे मेरी घरवाली होवे कार मेरी लेकिन साली और साला लब्बे
0: तो वल इत्था आ गए हो वल भी तुहाडे नाल आ गए हन?
1: ना ना सारा गिरना है नाल मिल गया हो ना उन्होंने।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: तू छीन लो हां खा तू हम चल दी अदगा आधी रात 2-2.5 बजे तक मैं उठी सा।
0: तुसा उथा लगभग 7-8 साल दे आवे उथा स्कूल लेंदे आवे? स्कूल दी पढ़ाई शुरू थी गई है?
1: ना उथा उथा स्कूल कहने पईया।
0: अच्छा।
1: स्कूल इथा आके पारगंज पढ़ गए पहली।
0: अच्छा। कच्ची जमात होंदी आई
1: कच्ची क्लास।
0: अच्छा वैसे उथा तुसा मेरे को दस्या है पहले के भाई पैदाइश जेड़ी है तुहाडी?
1: हां कोटली कोटला कहो कुछ भी कहो।
0: ए क्या मुल्तान है चांदे? मुल्तान
1: मुल्तानी चाहते दादी दादा सब हैं
0: उत्तम वड्डे बहन मेरा स्कूल वेंदे
1: हैं। हाँ

0: है नहीं आई तो मेरी दादी ने लिखा कृष्ण भगवान आ गए वे।
1: अच्छा
0: हाँ दादी ने लिखवा दे पहले लेटे हुए मैं कुटे छोटी जिंदगी गेंद के अपने हाथ पे समाया हाथ पे फेरा ठीक ठीक है।
1: अच्छा
0: हाँ पंद्रह हजार जी गए आदमी खून उत्ते समाओ मेरा कृष्ण भगवान आ गए।
1: एक शहर की गल
0: है कोतली दी।
1: अच्छा
0: तो वाल्मीकि को अपने हाथ संभाल के फिर पंद्रह हजार बात है
1: बीमार है ऐसे।
0: हाँ बीमार तो है दमे समी होंगे अगे तो होंगे अगे हूं तो बतेरे इलाज अगे तो इलाज भी एडे कहना होंगे
1: हकीम होंगे पहले
0: हकीम होंगे देसी इलाज होंगे देसी होंगे हूं तो अंग्रेजी दवाइया चल पी
1: जी ट्रेन रेलगाड़ी तुसा आया वे बेपरिवार भी हिस्से हो सन सारे पहाड़गंज आए हैं या कोई ट्रेन भिवानी चली गई आई कोई डब्बा
0: वनसानी लक्कर आई अपनी अपनी जगह जो मौका मिले अपना लह पे अस भी कैंप कई लथे छोर पै गए मेरी बेन जमी गड्डी च।
1: अच्छा गड्डी
0: कई जगह ते सारे मेरे मामा नाल आए मेरी नानी नाल आई बावी दी नानी मेरी नानी तो मैं डिठी कह नी बावी दी नानी सद नाल रही आई वो 107 साल दी मोई है वाल असी पहाड़गंज आए पहाड़गंज उथे कमरा मिल गया है एक सात बेन बिराज से
1: हूं वे टब्बर तो वे वे होंगे छी
0: सारे वे टब्बर हो
1: छी सात सात
0: बरांडे थले अंडर आंदे कठे हैं चैन का कमरा भी हो गए रोड़ा ना डेने
1: प्यार भी बहु हों वे एक दूजे वास्ते जान
0: प्यार ही बड़ा हों अजकल तो खून का पानी बन गए अजकल कोई प्यार
1: क्या वजह तो क्या वजह लगती है कि क्यों ठीक है
0: ये क्या वजह है ठीक है मन नहीं खराब ठीक है नहीं काले मन ठीक है काले मन तो कुत्ता भी नहीं बह सकता वही पूछ फटा के बंद है भक्ति भाव किया ना कदे तो मन कित साफ थी वे मन साफ थी नहीं भजन सिमरन नाल
1: वड़े वास्ते इज्जत कहनी
0: है
1: वड़े वडेरे वास्ते इज्जत कहनी घट थी गई है।
0: हाँ
1: शादी वेले जेड़े वेले तुसा आए आवे परिवार कितना वड्डा है तुहाडे उत्ते कितनी जिम्मेदारी
0: मेरी कोई जिम्मेवारी सारा परिवार आई कोई ना
1: अच्छा आई कहना
0: एक नीना बेन बिरान बाकी परिवार अपने घर होंगे पुछा दे पहाड़गंज थे बारह टूटी
1: अपने वेले बहु फिल्म डिठिया हो सन तुसा।
0: हाँ
1: कोई फिल्म बारे दसो केड़ी फिल्म तुसा डिठिया
0: मैं एक वक्त डिठी है।
1: अच्छा
0: एक काजल डिठी मीना कुमारी दी।
1: अच्छा
0: बलराज सैनी दी वक्त है।
1: हाँ बलराज सैनी
0: देखने फिल्म जाम पा डिठी है विदाई विदाई डिठी है संतोष मां डिठी है धार्मिक पिक्चर दे दी है
1: रेडियो भाई घर बच
0: रेडियो भाई रेडियो हूं दे के आई कहीं को मैं ठीक करवावन गई हूं
1: क्या सुनते आवे रेडियो ते समाचार सुनते आवे खबर आदि
0: समाचार सुनते वैसे गाने सुनते चौंक तो बथेरे होंगे
1: पंद्रह अगस्त
0: छब्बीस खत्म हो गया।
1: हाँ
0: मुझे ठीक गया
1: एक मैं ये आखे सा जेड़ा मां बोली दा भाषा दा खजाना जेड़ा तुहाडे कोल है ना वो अज दी पीढ़ी कोल कह नहीं बहुत सारे ढेर सारे इंझे लफ्ज हैं जेड़े तो आपको पता है साको भी पता कह नहीं वो हौले हौले सब तक पहुंचावने बहुत जरूरी है जेकर तुसा बोले सो असा सिखसू असा बोले सो असा अगली
0: पीढ़ी मेरे विराह है ना वो अदन बैठा रहे मेरे को आस पास आप भवन सबका बड़ा परिवार हो गया मैं भी छोटी नहीं बैठी मैं दो त्रियां पोत्रियां जलोत्रे इन।
1: अच्छा
0: हाँ
1: जलोत्रा वर्ड ते पुत्रा दे मतलब दोतरी दा अगली
0: दी दा बच्चा अब दोतरे दा बच्चा।
1: अच्छा
0: वो जलोत्र बन गया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: और पोत्री पोत्री दा बच्चा ते डाडी बन गया उसे
1: आजकल ते रिश्ते ही घट थी गए
0: रिश्ते ही घट थी गए
1: एक एक डूडू बच्चे हैं ना कोई सगा चाचा हो सी ना कोई सगा मामा हो सी
0: एक बच्चा पैदा थे नी
1: ना हुंदी बुआ
0: पांच बच्चे मेरे हैं सात असी बेनी मेरा से इन बड़े बड़े तो परिवार है और हरा भरा परिवार है
1: हूं तो ना तो सकी मासी होसी ना चाचा होसी मामा होसी एक एक डूडू बाबा
0: बेरा दे घर बेरा दे घर भी नहीं है आने भी है अज तक सारा प्यार मोहब्बत बहुत है पर लेकिन हूं किसी का कोई मोहब्बत का नहीं चाहे कुछ भी थी जाए बुआ आंदी है बुआ दे बच्चे बुआ दी दिया बुआ दी डोतरिया शादियां ती आम अखर सत बेन बिरा भरना अपने सामने सब को बड़ी मैं वो बानन बहन जी कोई गाल सुनाओ पिछली मैं बैठो जी वो बानन बड़ा मजा मजे गिंदे।
1: हाँ नहीं पिछली गाली याद करके तो बहु मजा आंदे प्रोग्राम का ना ही है याद हो के जरूर खोसे

0: ऐसा का प्यार सामना था, आजकल कोई प्यार नहीं करे। आओ बहन जी, आओ बहन जी, हम बहन जी को सलीन दे
1: ना ना।
0: दीदी
1: दीदी थी गन सारे,
0: अगर काका
1: दीदी दावी दी थी गे, आजकल दे छोटे बाल दी रखे दी।
0: मेरी भाभी बैठी होंगी आई ना, मेरा मामी ने आमना भाई बैठी है। हाँ काका आ।
1: अच्छा
0: मेरे को जो ज्यादा ये चीज है। आ काका नहीं हूं नहीं मैं अंदर ठहर के आसा। अच्छा
1: असा साहब कुछ खावण पीवण की शह बारे दसो, डोली रोटी।
0: हाँ डोली रोटी थी गई, सुहार दी बेसनी रोटी थी गई, सुहार दी
1: सुहाजना।
0: ए सुहार
1: सुहार क्या होंगे?
0: पोचा मारिया रख दिता, आज सारा दिन ठंडा रहना,
1: ठंडी खांदे आसे,
0: ठंडी रोटी कम नहीं है ना। बैंगन का रेता चल पामना, मैं बैंगन का रेता पाया।
1: शीतला माता का वर्त हूं लिया, शीतला माता का वर्त।
0: हां शीतला माता पुजी असि जंडी ते वेंदी असि, जंडी पुजी असि, गुगे पेंदे आसे, सारे काम कर बैठे।
1: आज कौन गुगे पेंदे? कोई
0: अनवटे आंदा आई।
1: हां अनवटे आंदा आई,
0: अनवटे बाला दित्ता आंदा आई।
1: बाला दित्ता क्या वो भी वरत आई?
0: बाला दा हुंदा आई।
1: अच्छा
0: जिवें आदे भई ओ नाक जेड़ी है भई हुंदी कटोरे नाल कटी, कंडल वाला कटोरा होवे, कोटे दे कटोरे होने हन अजे अस्टील दे प्रधान ने,
1: पहले पितल दे आउंदे हन, कलाई थींदी आई।
0: हां जस वरतदी ऐसे
1: भांडे पितल दे आउंदे,
0: अजकल जस पे वरती ने, जस पे वरती ने।
1: डोली रोटी किवें बनदी आई?
0: डोली दी रोटी वी ते बड़ी मेहनत आ, जनानियां बाबरिया कोल मुल्तानी बेचन सारे, कोई मुल्तानी गाहक मिले भेजा। अच्छा हमको गेंदना हो, वो गेंद के एक पेरे जीती मल्लो, मल के हमको कपड़े दिवे लुका रखो। ओ फुंडा सी, ओ फुंडा सी वाल अट्टा मल्लो, ओ फुंडे ते ता मल्लो अट्टा।
1: फुंडने च कितना
0: नहीं ते अट्टा जाया वे सी,
1: कितना टाइम लगदे फुंडने च?
0: किते सारा दिन लगदे, तलो उठाओ उनको डोली को, घंटा दो घंटे ते उठदे लग वेंदे, घड़ी घड़ी देते हैं शोर पै वेंदे, डोली उठी आइए डोली उठी आइए डोली उठी पाइए। वाल वाली को वेलनिया दाल पा के, खोया पाओ दाल पाओ, वाली रखिया पांच मिनट वाल कराई गे दी रखी और तलने शुरू की। अगर मैं डिशनिंग बनाईया हूं मैं बीमार हूं नहीं मैं बना सकती।
1: अजकल बाल तो क्या नहीं बने दे? अजकल बाल तो नहीं बने दे ना
0: अगे साल बना गया। हां हूं विचार है वो प्रेमा दे ना ना बना सक, बड़ी स्वाद लगती है।
1: अच्छा
0: मैं देख सीलम को बड़ी स्वाद लगती है।
1: अच्छा
0: डोली डोली करेंदी
1: हूं वे तो कुछ गीत गावन शादी ब्याह ले या कोई लोक गीत तो कोई याद है तो वो सुनाओ सबको।
0: मैं मौज भरी है लुटी जदो दा तेरा लार परिया, मैं मौज भरी है लुटी जदो दा तेरा लार परिया, चंगा होया मेरे बच्चे रुस गए, चंगा होया मेरे बच्चे रुस गए, रोटी पकान कोल छुट्टी जदो दा तेरा लार परिया, मैं ता मौज भरी लुट्टी जदो दा तेरा लार परिया, चंगा होया मेरा गोट रुस गई, चंगा होया मेरा गोट रुस गया, मैं गाला सुनन कोलो छुट्टी कि जदो दे मैं तेरा लार परिया, मैं ता मौज भरी है लुट्टी जदो दा।

0: क्योंकि जदो दा तेरा लर परिया चंगा होया मेरे पेके रुस गए चंगा होया मेरे पेके रुस गए आन जान कल छुट्टी जद दा तेरा लर फरिया मैं ता मोज बरिए लुट्टी जद दा तेरा लर फरिया चंगा होया मैनू सतगुर मिल गए चंगा होया मैनू सतगुरु मिल गए आवागमन कल छुट्टी जदो दा तेरा लर पिया
1: वाह जी वाह
0: मोज बरी है लुट्टी जदो दा तेरा लर परिया
1: वाह जी वाह वाह ये शादी वाले
0: लगा
1: बहुत वधिया शादी वाले भी गांदे हैं
0: हाँ गांदे हैं
1: अच्छा
0: ये गांदे हैं मैं वेंदी पईया मैं वेंदी पईया भाभी को मिलन मैं वेंदी पईया मैं वेंदी पईया मैं वेंदी पईया भाभी को मिलन मैं वेंदी पईया सास मेरी मैं कुमारेंदी सास

0: vendi पहिया, मैं वेंदी
1: ना
0: पहिया,
1: जी ना,
0: साबे को मिलन मैं वेंदी
1: वेंदी पहिया गीत दे नाल ही साडा भी वंजन दा प्रोग्राम थी गए। हुण प्रोग्राम खत्म करन दा वेला थी गए। मैं कुछ संजय पाउजा को इजाजत देवो, वल मिलसूं इंज ही कोई प्रोग्राम विच। अजा साडे नाल हन कृष्णा सलूजा जी, हुण मैं कोई इजाजत देवो। राम राम जी, नमस्ते। अज दे प्रोग्राम दे प्रस्तुत करता हन डॉक्टर सुरेश मीना। जय हिंद।

0: प्रिंसिपल साहब जी घर ही हो, लंघ आइए।
1: लंघ आओ बच्चिया वाले ओ लंघ आओ। आ गए जी आ गए जी आ गए।
2: जय हिंद कबूल करो।
1: जय हिंद जी। जय हिंद कमल जी।
2: की गल, अज बड़े मिट्टियों मिट्टियों होए पए हैं।
1: अज नवे मिशन ते हैं।
2: अच्छा, वो कहड़ा?
1: सफाई अभियान।
2: क्या बात है, क्या
1: किन्ना
2: बात।
1: चंगा लगदा वे अपनी अखां नूं, अपनी सेहत नूं, ते अपना चुगिरदा जदों साफ सुथरा हुंदा वे।
2: ये तो है ही है जी। देखो, ये क्या भी गया कि जिथे सफाई उथे खुदाई।
1: बिल्कुल जी। ते सफाई करे कौन? आपां इह तां जरूर चाहने हां कि सब कुछ साफ सुथरा होवे।
2: पर मैं भी रानी ते तू भी रानी ते कौन भरूगा पानी।
1: बिल्कुल जी। ते जे आपां अपने हिस्से दा ही काम कर लईए, अपने हिस्से दी बंदी सफाई कर लईए,
2: बिल्कुल ठीक
1: तां यकीन करना किते जान दा दिल नहीं
2: है।
1: करना।
2: हाँ बिल्कुल ठीक है, तुहाडी गल
1: तुसीं इक गल देखी होनी कमल जी,
2: बिल्कुल।
1: इथों मां प्यो जदों बच्चियां कोल विदेशां च जांदे आ गए की कहिंदे आ? बड़ियां सफाइयां उत्थे उत्थे तां निकलण दा दिल नहीं करदा, पर उही मां प्यो जदों इंडिया वापस आंदे आ
2: बिल्कुल।
1: पोलीथीन दे लिफाफे, गंदगी, कार दा शीशा थल्ले करके बाहर सट के बड़ा स्माइल करदे आ।
2: तुसीं बिल्कुल मेरे ना मन की गल बुझ ली भी। मैं कैसे परिवार नूं जानदा जिहड़ा सच्ची ये करदा भी घरों जदों अपने इंग्लैंड तों आउंदे आ ते सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके ते चौंक दे विच जिथे चरस्ता उत्थे पिंड दे कोल जाके रख दिंदे।
1: ते अज यही काम किया मैं, पिंड दी सफाई।
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: ते इसे लिए कपड़े मिट्टो मिट्टी हो गए, पर बड़ी खुशी हुंदी है जदों आपां अपने चुगिरदा देखदे आं साफ सुथरा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। इथे देखो लोकी घर दी सफाई नूं तां बड़ी महत्ता दिंदे आ, पर जे किते सड़क दे उपर कह लईए जां किते आले दुआले पिंड दी कोई फिरनी दे उपर कोई चीज गंदी मंदी पई आ जां गंद पिया, उहनूं असीं कहिंदे इह कड़ा साडी है। पर जिहड़ा दिमाग नूं हथ मार के देखना चाहिदा भी इह तां साडी सारिआं दी सांझी है ते सारिआं दी जिम्मेवारी है।
1: साडे देश दे प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाया वे
2: बिल्कुल
1: देश नूं साफ सुथरा करन लई।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ते उसे लड़ी च साडा सारिआं दा फर्ज बनदा वे अपने चुगिरदे नूं साफ सुथरा रखीए।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखो जदों देश दा मुखी सानूं कोई गल कहिंदा ते उहनूं तां फिर सानूं सारिआं नूं मनणा चाहिदा। जे आपां अपने घर दे वड्डे दी गल ही नहीं मनदे ते

0: व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। अरुणेश भाई देखिए, आज पत्रोत्तर कृषि पत्रोत्तर लोक संगीत के साथ कार्यक्रम है, तो खत भी भाइयों का कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल सुनील भाई, देखिए ऐसा है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ना, और इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे किसान भाई बहन, क्योंकि उनकी पसंद के लोक गीत हम सुनवाते हैं और साथ ही बहुत सारी जानकारी
0: हमें और भी मिली है जो पिछले कार्यक्रम,
1: तो उनकी फरमाइशों पर आधारित हम तो सुनवाएंगे ही, लेकिन क्यों ना सुनील भाई पहले एक जानकारी दे देते हैं अपने किसान भाई बहनों को कि आज जो है हम कौन सी योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
0: आज देखिए पहले बात कर लेते हैं किसान उत्पादक संगठन की, जो किसानों का एक ऐसा समूह है जो बाजरा गेहूं या अन्य फसलों के उत्पादन और बाजार में बिक्री से जुड़े काम करता है, ताकि किसानों की उनकी उपज के सही दाम मिल सके। इसके देखिए जो सामूहिक संगठन है, छोटे और सीमांत किसानों का एक पंजीकृत समूह होता है, साथ ही यह आमतौर पर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है और किसानों की सौदेबाजी की क्षमता और आय को बढ़ाता है।
1: बिल्कुल, ये प्रमुख लाभ हैं। और कुछ और अगर लाभ की अगर हम बात कर लें तो इसके तहत जो बीज होते हैं, उर्वरक और कीटनाशक, इनकी थोक खरीद में कम खर्चा आता है, और जो आधुनिक कृषि उपकरण है, मशीनरी है, इनकी सामूहिक उपलब्धता भी होती है, और बेहतर बाजार तक पहुंचना भी एक प्रमुख बिंदु है। इससे क्या होता है कि जो बिचौलियों की भूमिका है वो लगभग खत्म होती है, तो इसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलता है।
0: और थे के साथ ही बैंकों से जो कार्यशील पूंजी है और कृषि लोन में आसानी से सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का सीधा लाभ भी उन्हें मिलता है। साथ ही आधुनिक खेती और उन्नत तकनीकों की जानकारी और मिट्टी की जांच और फसल प्रबंधन की सलाह भी इसके तहत मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: तो काफी अच्छा ये संगठन है भाई, इससे किसान भाइयों को भी लाभ है और जो संगठन बनाने वाले हैं उनको भी लाभ है। तो आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो दिनेश गिरी और खताब के हाथ में दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल सुनील भाई, पहला ये जो संदेश हमारे पास आया है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या का। और साथ ही में एक और संदेश आया है फातिमा कॉलोनी श्री राम पूर्व महाराष्ट्र से, एंड नासिर शेख, नासिर साजिद और शाहिद का। इसके अलावा
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव खोकरवाली से, श्री गंगानगर से विनोद वारसा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा एक और संदेश आया है नरसाना भिवानी से, जगदीश चांडलिया, राजवीर, सतीश चांडलिया, ऋतिक और केला देवी जी का। और साथ ही गांव उगला जिला अंबाला हरियाणा से, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। इसके साथ ही हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का भी मैसेज आया है। और साथ ही दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा के साथ साथ कुणाल मेहरा जी का भी संदेश आया है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और ये फरमाइश हमें मिली है सिद्धेश्वर नगर से, इसको भेजने वाले पंजाब रामटेक, यशोधरा और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिले बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल कौशल्या और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से, राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला, गुड्डू, मनु, शिव, करणपुरी, इस्माइल टुटेजा का। और साथ ही भोला कॉलोनी घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल वाणी जयराम। और भी एक संदेश आया है कस्बा

0: दिनेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना दिनेश गिरी से, और आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल, और साथ ही खत लेने से पहले क्यों ना हम एक सवाल ले लें।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक विनोद कुमार का सवाल आया है, ग्राम माजरा, जिला झज्जर, हरियाणा से, और इन्होंने लिखा है कि वे सर्दी के समय गेंदे के फूल का उत्पादन लेना चाहते हैं, और क्योंकि सर्दी आने में भी 2-3 महीने बाकी हैं, तो क्या ये सही समय है, उपयुक्त समय है गेंदे के फूल का बुवाई करने के लिए, और अगर ये समय उचित नहीं है तो फिर कौन सा समय उचित है, और इसके साथ ही किस तरह की जमीन हो, मिट्टी हो, भूमि हो, उसका चयन कैसे करें, और साथ ही इसके लिए उन्नत किस्में कौन सी हैं बीज की, और इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि वे गेंदे के फूल का अच्छा उत्पादन पा सकें।
0: विनोद भाई, देखिए, आप गेंदे के फूल का उत्पादन लेना चाहते हैं सर्दियों में, और अगर सही बात की बात करें तो, अगर सही समय की बात करें तो देखिए सितंबर का दूसरा सप्ताह इसके लिए सबसे उचित माना जाता है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है भाई, आप बिजाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें देरी बिल्कुल ना करें, अब जल्दी से आप इसकी बिजाई कर दें। और जहां तक भूमि चयन की बात होती है कि गेंदे की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही भाई देखिए, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए, और आपका खेत अगर तैयार है तो भाई इसमें देरी ना करें। उन्नत प्रजातियों की अगर बात करें तो आप अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा दो प्रचलित किस्में हैं, जिसमें अफ्रीकन गेंदे में जो मुख्य किस्में हैं उसमें पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा बहार, जीनिया गोलू और मैन इन द मून प्रमुख हैं, और फ्रेंच गेंदे की अगर बात करें तो पूसा अर्पिता, फ्लेम, फर्स्ट लेडी और गोल्ड लेडी, ऑरेंज लेडी आदि प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भाई उन्नत किस्म ले सकते हैं, लेकिन जहां से भी बीज लें उपचारित बीज लें, और भाई उपचारित ना हो तो उसे उपचारित अवश्य कर लें। देखिए, नर्सरी में गेंदे के बीज की बुआई के बाद पौधा 1 माह में रोपण के लिए तैयार हो जाता है, तो सही समय पर आप रोपाई करें। और भाई अफ्रीकन गेंदे की अगर बात करें तो 40 से 40 सेंटीमीटर, फ्रेंच गेंदा 30 से 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी जो उचित मानी जाती है, और गहराई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है। भाई खरपतवार नियंत्रण का आपने ध्यान रखना, साथ ही सिंचाई आदि का ध्यान रखकर समय पर आप रोपाई करें, और भाई रोपाई से 60 से 70 दिन के अंदर फूल आना शुरू हो जाता है, और ये 90 से 100 दिन तक लगातार चलता है। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे गेंदा फसल से भरपूर उत्पादन।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है सुनील भाई कि आपने ये जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो ये जानकारी का लाभ न सिर्फ हमारे विनोद कुमार जो श्रोता हैं उनको मिलेगा, बल्कि हमारे अन्य जो किसान हैं जो कि गेंदे का फूल का उत्पादन करना चाहते हैं उनको भी आपके द्वारा दी गई इस जानकारी को लाभ मिलेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और ब्रजेश हैं के जो है हमारे ये कलाकार हैं, और इनके लिए जो रिक्वेस्ट आई है वो मैं आपके पास देख रहा हूँ, कुछ फरमाइश आई है।
0: बिल्कुल, फरमाइश आई है, काफी फरमाइश आई है। ये पहली फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर से, और इसको भेजने वाले मुकेश कश्यप, सीता कश्यप और उनका समस्त परिवार।
1: इसके अलावा जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस का भी मैसेज आया है, और साथ ही जो है जिला अम्बाला और कस्बा है बराड़ा, यहाँ से संदेश आया है रवि कुमार का, राहुल का, रणजीत कौर का।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई, ये फरमाइश मिली है कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद से, उसको भेजने वाले करमवीर सिंह और उनका समस्त परिवार।
1: इसके अलावा भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान का भी संदेश आया है।
0: ब्रजेश से उपदेश सुनना चाहते हैं सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का।
1: इसके अलावा दादरी गेट भिवानी से भी कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल का मैसेज आया है,
0: और ये फरमाई समय मिली है साले बाटा छत्तीसगढ़ से, इसको भेजने वाले हैं जीतू, केवल, किरण और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा की।
1: इसके अलावा और भी संदेश हमारे पास आ रहे हैं जी।

0: टीबी मार्केट अहमदगढ़ मांडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया और हिना शकीला राजिया, इन सबका संदेश भी हमें मिल चुका है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव फ्रांसी जिले आईसा से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी की।
0: और एक संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू काव।
1: ये फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और कणु वर्मा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: ओल्ड लिसनर ग्रुप ऑफ इंडिया रामगढ़ कैंट से ये संदेश आया है महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह हीरा, भारत भूषण श्रीवास्तव। और इसके अलावा एक और संदेश आया है कालानौर से नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा का।
1: ये फरमाइश हमें मिली है भाई एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ग्राम रजौनी जिला महोब बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: इसके अलावा दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से भी एक संदेश आया है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरी, बेबी चाहत और सादिया का। और इसके साथ ही जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का भी संदेश मिल चुका है।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगा शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भटिंडा रोड मंडी से उसको भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और उनका समस्त परिवार।
0: सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका का भी संदेश मिला है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव चोलदा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और उनके समस्त परिवार की तरफ से। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है कुमार हेड़ा, सैयद मसरूर, साइना हसन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अनारकली बाजार जगराऊं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गवैया मल्होत्रा और जयपाल यादव का भी संदेश मिल चुका है।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ब्रजेश से ये उपदेश।

0: रनेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर ब्रजेश से उपदेश सुना। और देखिए, सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं और उपयोजनाएं चलाई जाती रही हैं। ऐसी एक जो उपयोजना वर्षा आधारित क्षेत्र विकास भारत सरकार के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत चलाई जा रही है, जो एक उपयोजना है। और इस उपयोजना का जो मुख्य रूप से जो वर्षा पर निर्भर जो कृषि क्षेत्रों में टिकाऊ और समय कृषि को बढ़ावा देती है।
1: बिल्कुल सुनील भाई, और बात करें अगर वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना के बारे में, जो कि अभी आप जानकारी दे रहे थे, तो अगर इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात करें तो आप सबको जैसे कि पता ही है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी इलाके में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा जो है प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। इससे क्या है कि फसल में नुकसान होता है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए भी ये योजना जो है लाभदायक है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन के लिए भी ये योजना काफी अच्छी है। और इससे है क्या कि किसानों की आजीविका में सुधार होता है और वो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं।
0: बिल्कुल, साथ ही देखिए, एकीकृत कृषि प्रणाली की अगर बात करें तो किसानों को खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी जैसी गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि आमदनी के स्रोत बढ़ाए जा सके।
1: और इसके अलावा अगर मुख्य गतिविधियों की बात करें तो जल संरक्षण की दिशा में भी बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि जो तालाब होते हैं और जल संचयन क्षेत्र होते हैं वहां पर इसका जो है लाभ मिलता है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य, जिसमें कि जैविक खाद है, हरी खाद है, और मृदा परीक्षण यानी मिट्टी की जांच को भी बढ़ावा मिलता है। और साथ ही फसल में विविधता आती है, जैसे कि दलहन, तिलहन और मोटा अनाज यानी मिलेट्स जैसी कम पानी की आवश्यकता वाली जलवायु अनुकूल फसलों को भी समर्थन मिलता है।
0: और देखिए, पात्रता की बात करते हैं, सभी किसान पात्र, देश के सभी छोटे सीमंत और बड़े किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आवश्यक जो दस्तावेज की बात एक बार भाइयों को बता दें तो देखिए, आधार कार्ड जो आपका बैंक खाते से लिंक हो, भूमि के दस्तावेज जिसमें खसरा खतौनी और लीज एग्रीमेंट वगैरह आता है, और साथ ही बैंक की पासबुक जिससे कि सब्सिडी आपके सीधे खाते में आ सके, इस तरह के आपको जो आवश्यक दस्तावेज करने हैं ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
1: और अब सुनील भाई, अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ओम वीर आर्या, और इनको सुनने के लिए जो संदेश हमारे पास आए हैं, तो अगर हम बात करें, पहला जो ये संदेश आया है शीशपाल अकेला का, और ये संदेश इन्होंने लिखा है जटवाड़ा गाजियाबाद से। और इसके अलावा ज्ञानेन्द्र सरधाना जी का जो है भी मैसेज आया है, और गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार, पिंकी, वंश और भूवेश का भी संदेश हमें मिल चुका है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, और इसको भेजने वाले राशिद हुसैन अंसारी और उनका समस्त परिवार। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है वो मिली है भाई हमें हितेंद्र दास की असम से, और साथ ही हमें फरमाइश मिली एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट की।
1: इसके अलावा पुराना तालाब डुमराओं से ये संदेश आया है वली उल्लाह अंसारी, बेगम शबनम राज और असमा अंसारी का, और दूसरा संदेश है जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातिमा राज और असलम राज का। और इसके अलावा बाबा कुटीर रायगढ़ से संदेश आया है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान का, और अनारकली से जो अनारकली बाजार है जगराओं पंजाब से सुनील का, उनका भी संदेश आया है और वो भी ओमवीर आर्या को सुनना चाहते हैं।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई बन्ने बुजुर्ग प्रेरा टीकमगढ़ से, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी और उनके समस्त परिवार की तरफ से, ममना जिला हमीमपुर से फरमाइश मिली है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा एक और संदेश आया है ग्राम ममना जिला हमीरपुर, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियम और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ओम वीर आर्या से ये उपदेश।

0: रणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना ओमवीर आर्या से। और अब देखें, मौसम की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में 17 से 25 सितंबर तक मानसून की विदाई हो जाती है, और उत्तरी मध्य भारत की बात करें तो 25 से 30 सितंबर तक मुख्य रूप से मानसून चला जाता है। आने वाले समय में धूप खिली रहने की आशंका और बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। देखिये, अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 24 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब कल के कार्यक्रमों के बारे में भाइयों को बता दें, कल 5:10 पर कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे, और साथ ही भाई देखिए 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि ड्रोन सेवा उद्यम के बारे में जानकारी देंगे, और 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाए सक्षम, और साथ ही भाई जो कल जो बाजार भाव के बारे में भी चुनिंदा मंडल की जानकारी देंगे।
1: और इसके अलावा देखिए श्रोताओं, हमें आपके सुझावों का लगातार इंतजार रहता है, क्योंकि उससे हम हमारे कार्यक्रमों को एक गति मिलती है और गति से ही प्रगति होती है। तो आप हमें इसके लिए संदेश भेज सकते हैं, हमें हमारा पता जो हमारे नियमित श्रोता हैं उनको तो मालूम ही है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए हम बता देते हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 110001।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो।

0: 伤痕累。
1: वो श्रोताओं, आज का गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर

0: ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया, कहा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनोट्रांस 2026 में भाग लेगी, वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कैंसर देखभाल में नवाचार और किफायती उपचार विषय पर सेमिनार को संबोधित किया और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों में कृषि जल संरक्षण इकाइयां स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
3: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल चार मेहता ने भी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य साझेदार राज्य के रूप में भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस कड़ी में दिल्ली पर्यटन और परिवहन

0: कास निगम और दिल्ली नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक का ऐतिहासिक टाउन हॉल केवल भवन नहीं बल्कि दिल्ली के समृद्ध इतिहास और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित होने के बाद ये परिसर देश दुनिया से दिल्ली आने वाले पर्यटकों को पुरानी दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ऐतिहासिक टाउन हॉल, प्रेस बिल्डिंग और पार्क का संरक्षण करते हुए एक ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक भवन की मूल विरासत पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसका अनुकूलित पुनः उपयोग करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में होने वाले इनोट्रांस 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत करेगी। इसके माध्यम से वो मोबिलिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी।
2: इनोट्रांस 2026 जर्मनी के बर्लिन में हर दो वर्ष में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला और रेल परिवहन उद्योग पर आधारित केंद्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMIL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जमुआर ने कहा कि इनोट्रांस 2026 DMRC और DMIL की विशेषज्ञता को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए एक अहम मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दुनिया भर के परिवहन अधिकारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और मोबिलिटी लीडर्स के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। DMIL ने पिछले 3 महीनों में 5 अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जमा की हैं, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार की एक अहम शुरुआत है। इनोट्रांस 2026 संस्करण उन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेगा जो रेल परिवहन को बदल रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने आज इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित कैंसर देखभाल में नवाचार और इलाज को किफायती बनाने से जुड़े विशेष सेमिनार को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए नवाचार और किफायतीपन का साथ साथ चलना जरूरी है। उन्होंने कैंसर की रोकथाम, जागरूकता, शुरूआती जांच और समय पर रेफरल को प्रभावी कैंसर देखभाल की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि समय पर बीमारी की शुरुआती पहचान से जान बचाने के साथ परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से भी राहत मिलती है।
3: फॉर अ पेशेंट एंड देयर फैमिली, किसी मरीज और उसके परिवार के लिए कैंसर का निदान केवल एक चिकित्सकीय चुनौती नहीं है बल्कि यह भावनात्मक तनाव, अनिश्चितता और भारी आर्थिक बोझ भी लेकर आता है। इसलिए वहनीयता को नवाचार से अलग मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता, दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है बीमारी का शुरुआती चरण में पता लगाना।
0: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने मरीजों को 35 वर्षों तक सहानुभूतिपूर्ण सहयोग देने के लिए कैंसर सहयोग की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज नायर सर्विस सोसाइटी और ग्लोबल नायर सेवा समाज द्वारा आयोजित नायर शिखर सम्मेलन 2026 और विद्याधिराजा महोत्सव समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान संत और समाज सुधारक चट्टम्पी स्वामीकल ने सामाजिक भेदभाव और जातिगत रूढ़ियों के विरूद्व समाज को जागरूक कर समानता और समरसता का संदेश दिया। ये आयोजन उनके इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इसी भावना के साथ दिल्ली में रह रहे केरलम के सभी भाई बहन अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए दिल्ली की विविधता को समृद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में हरितालिका तीज महोत्सव 2026 में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीज व्रत नहीं बल्कि नारी के संकल्प और शक्ति की गाथा है। माता पार्वती के तप और संकल्प से जुड़ा ये पर्व आज भी सभी माताओं और बहनों की आस्था, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने हरितालिका तीज को नेपाली और गोरखाली नारी की शक्ति और स्वाभिमान का पर्व बताते हुए समाज की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय कॉलेज के 55वें वार्षिक

0: समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। श्री सूद ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों और उनके सफर का जश्न मनाना उनके लिए खुशी का अवसर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: राजधानी में विभिन्न रामलीला समितियों ने आज भूमि पूजन और ध्वजारोहण के साथ श्री रामलीला महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ किया। आज ऐतिहासिक लवकुश रामलीला समिति ने लाल किले के सामने लवकुश पार्क में भव्य भूमि पूजन और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भूमि पूजन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भगवान श्रीराम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की। श्री हनुमान ध्वज को भूमि में स्थापित कर दिल्ली के रामलीला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि रामलीला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का जीवंत उत्सव है।
2: प्रभु राम की जो मर्यादा है, उनके जो सिद्धांत है, वो प्रतिपादित होते रहे और हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के गुण गाते रहे। रामलीला हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है और आज से विधिवत रूप से भूमि पूजन के साथ दिल्ली में रामलीला महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी।
0: श्री खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली की रामलीलाएं देश की सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली प्रतीक हैं, जो नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों में आज 11 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और निगम पार्षद रोहतास बिधूड़ी तथा मंजू भी उपस्थित रहीं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इन कार्यों पर खर्च की जा रही राशि दिल्ली सरकार के अनुसूचित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाए। पुरानी दिल्ली में विकसित फाउंडेशन के सहयोग से लाल किला और अंगूरी बाग क्षेत्र में आयोजित अभियान में करीब 400 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अंगूरी बाग में पौधारोपण भी किया गया। पूर्वी क्षेत्र में स्वामी दयानंद मार्ग और उत्तरी क्षेत्र के तिमारपुर, गांधी विहार, वजीराबाद और जीटीबी नगर में विशेष सफाई अभियान चलाए गए। इस दौरान नागरिकों को कचरे के उचित निस्तारण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनोट्रांस 2026 में भाग लेगी। वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं युवा कवि हिमांशु शुक्ला।
4: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो में आपके लिए जुड़े हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के कवि कवित्री।

0: उपस्थित हैं, जिनमें डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी हैं, दीप शिखा श्रीवास्तव दीप जी हैं और डॉक्टर सलोनी चावला जी हैं। तो आइए हम इनकी रचनाओं से, इनकी कविताओं से जुड़ते हैं आप सभी के साथ और आनंद लेते हैं इनकी रचनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जहां कविताएं होती हैं वहां कहते हैं स्वर्ग अपने आप जमीन पर उतर आता है। मौसम ने आज कुछ ऐसा रंग जमाया है, हवा ने भी जैसे कोई गीत सुनाया है। हल्की सी ठंड, चाय की प्याली और शायरी का साथ, लगता है आज की शाम में खुद को कविता से सजाया है। कुछ मौसम कविता लिखवाते हैं, कुछ मौसम कविता सुनवाते हैं और कुछ शामें ऐसी होती हैं जो कवि और श्रोता दोनों को ही अपना बना लेती हैं। तो आइए आज की इस शाम को शब्दों की गर्माहट, भावनाओं की मिठास और कविताओं की खुशबू से महका दें, क्योंकि जब शब्द जब दिल से निकलते हैं तो असर करते हैं। मैं सबसे पहले आवाज देता हूं, हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी को, और इनको मैं आमंत्रण देता हूं मोहम्मद अलवी साहब की इन चार पंक्तियों के साथ। शरीफे के दरख्तों में छुपा घर देख लेता हूं, मैं आंखें बंद करके घर के अंदर देख लेता हूं, उधर उस पार क्या है ये कभी सोचा नहीं मैंने, मगर मैं रोज खिड़की से समंदर देख लेता हूं। तो स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी का, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सभी श्रोताजनों को, मैं ऋषि मौर्य अपने एक मुक्तक से आप सभी लोगों से रूबरू होता हूँ।

0: जवानों के दिल।
1: क्या
0: और मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रेरणा से मैंने एक कविता लिखी है शेरनी, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। कि घूंघट की लाज रखी घूंघट उतार दई, मीन जैसी आंखों में अंगार भरे शेरनी, आंचल में बांधी सुते ममता बढ़ाए दई, चूड़ियां उतार दई कृपाण लिए शेरनी, पायल ने की छनक घोड़न के टाप संग, पायल ने की छनक घोड़न के टाप संग, युद्ध के मैदान में बवाल लगे शेरनी, प्रखर प्रचंड रण देख ललकारी जब, अश्व में सवार पाषाण लगे शेरनी, चपला से तेज गति तेज तलवार ने की, चपला से तेज गति तेज तलवार ने की, पलक झपक धड़ काटती है शेरनी, युगन जुगन की प्यासी धरती की प्यासी, पापियों के खून से बुझाए रही शेरनी, पापियों के खून से बुझाए रही शेरनी, और तोपन और मतन को ठेंगा दिखाए दी, खुद मुस्काए के चढ़ाए रही शेरनी, खुद मुस्काए के चढ़ाए रही शेरनी, मुंह में लगाम रखी आंखें शिकार करी, मुंह में लगाम रखी आंखें शिकार करी, वे अजब गजब कमाल करे शेरनी, अहे में बहे में तोड़े जान ले वे जान से, अहे में बहे में तोड़े जान ले वे जान से, रूप ऐसा रौद्र का दिखाए रही शेरनी। और इसी करतार में हम आपको अयोध्या ले चलते हैं, और अयोध्या में 14 साल पूरे हो चुके हैं, भगवान राम अभी लौट के नहीं आए हैं, तो भरत की जो विरह वेदना है वो हम आपके सामने रखते हैं।

0: बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपका डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी,
1: धन्यवाद,
0: शुभकामनाओं के साथ। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच में देश की प्रसिद्ध कवित्री दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी हैं, और आपकी रुचियां बहुत सारी हैं। आप कविताएं लिखती हैं, आप गजल लिखती हैं, नज्म, मुक्तक, हाइकू, कहानी, लघु कथाएं, नाटक, नुक्कड़ नाटक, ऐसी बहुत सी आपकी रुचियां हैं लेखन के प्रति, और आपको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपको आमंत्रण देता हूं प्रभाकर माचवे जी की इन चार पंक्तियों के साथ। निर्जन की जिज्ञासा है निर्झर की तुतली बोली में, विटपो के हैं प्रश्न चिन्ह विघों की वन्य ठिठोली में, इंगित है कुछ और पूछ लूं इंद्रचाप की रोली में, संशय के दो कर लाया हूं आज ज्ञान की झोली में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी, आइए अपनी कविताओं से हमारे श्रोताओं का मन मोह लीजिए।
1: बहुत धन्यवाद आकाशवाणी दिल्ली का, मैं बहुत धन्यवाद देती हूं, और अपने श्रोताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, नमस्कार करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस अभी अभी बीता है, तो हिंदी हिंद की अभिलाषा है ऐसा मैं मानती हूं, और भारत माता के मस्तक की बिंदी हिंदी के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं।
2: स्वागत है।
1: हिंदी खड़ी बाजार में मांगे अपना हक, दोयम दर्जा ही मिला अपने घर में नाहक, करें प्रयास सार्थक चुकाएं अपना कर्ज, सिर्फ हिंदी दिवस मनाकर ना निभाएं अपना फर्ज।
0: वाह बहुत खूब।
1: हिंदी सिर्फ भाषा नहीं हिंदुस्तान की अभिलाषा है, हिंदी सिर्फ भाषा नहीं हिंदुस्तान की अभिलाषा है, रसों की चाशनी में घुली भावों का बताशा है, हिंदी प्रेम का अंकुर है, प्रिय का उज्जवल उर है, संस्कारों की धरती है और मर्यादा का अंबर है, हिंदुस्तान के हृदय का भाव है, शहरों का अदब नेह का गांव है, सरल सुग्राह्य रूप इसका जिसमें ज्ञान का ठहराव है, माँ भारती के गले का हार है, गंगा की धवल धार है, मानस की सरस चौपाइयां भूषण की तीखी कटार है, कृष्ण की बंसी का स्वर शिव धनुष की टंकार है, मीरा की रागिनी मनोहर दिनकर की हुंकार है, महादेवी का राग संचित निराला का राग विराग है, पंत का प्रकृति प्रेम समाहित जिसमें सुभद्रा की सी आग है, और माँ की स्नेह भरी पाती है, माँ की स्नेह भरी पाती है, घर घर की दीया बाती है, संचित संस्कृति अनमोल हिंदी भाषा नहीं हमारी थाती है, हिंदी भाषा नहीं हमारी थाती
0: है। बहुत क्या बहुत सुंदर।
1: और कहना चाहती हूँ आप सभी से कि कवियों की कलम उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है, और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं।

0: इसी को लक्ष्य में करके मैं कवियों की कलम से एक प्रश्न करती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा।
1: स्वागत।
0: राग रंग से सजा सजा के नैनों के अभिराम लिखे, मधुर अधर मुस्कानों पर सिंदूरी अरुण ललाम लिखे, लिखा पायल कंगना हार लिखे वही श्रृंगार लिखे, जी हजूरी लिखी सबने दरबारी संज्ञान लिखे, जी हजूरी लिखी सबने दरबारी संज्ञान लिखे, दफ्तर बंगला पाकर सबने सरकारी गुणगान लिखे, आत्मश्लाघा के वश में सबने चरण वंदन सौ बार लिखे, अब मौन धरे क्यों बैठी हो, अब मौन धरे क्यों बैठी हो, भाव शून्य होकर ऐठी हो, सत्य लिखना है धर्म तुम्हारा, चुप रहने का क्या मर्म तुम्हारा, मक्कारों से भयभीत हुई हो या निज गौरव से रिक्त हुई हो, प्रश्नों के इस उमड़े ज्वार को आज सच की दरकार है, बोल मेरी कलम लिख सके जो उस सच को, क्या तुझमें वो अंगार है।
1: वाह वाह वाह।
0: दीनहीन दुखियों की पीर और खुदाओं के बिकते जमीर, सौ सौ मील चलती राचारी, दांव लगा बैठा व्यभिचारी, पोषक पर शोषक के वार, छूटे आंगन टूटे दीवार को आज सच की दरकार है, बोल मेरी कलम लिख सके जो उस सच को, क्या तुझ में वो अंगार है।
1: बहुत खूब।
0: कब तक नर्तक बनकर नक्कालों की जयकार करोगी, या दर्शक बनकर अन्याय स्वीकार करोगी, दिनकर की रणभेरी हो सुभद्रा की तुम चेरी हो, अब निर्बल में हुंकार भरो तुम, दुर्बल की ललकार बनो तुम, जीत लिखो या हार लिखो, पर युग परिवर्तक बन तुम सच हर बार लिखो, तुम सच हर बार लिखो, तुम सच हर बार।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविता।
0: और इसी क्रम में मैं और एक अपनी छोटी सी रचना सुनाना चाहती हूँ, यायावर।
1: स्वागत है।
0: यायावर से बीते दिन बंजारों सी ये रातें, दिल आवारा बादल ढूंढे खुशियों की बातें, बढ़ता रहा यूं ही जीवन ठहरा सा कहीं ये मन, पथरीली राहों पर खोजे समतल सा एक उपवन, मुट्ठी भर सपनों के बीच चाहतों की बरखा से सींचे, उपजे समय की धरा पर नन्ही नन्ही अखियां मीचे, कर कंटक कभी पांव शूल चुभे, कभी हर्षित पुष्प प्रसून खिले, डगर में मिला कभी सूर्य प्रखर, कभी मिला अंधकार गहन, युग पर्व संवत्सर बीते, आशाओं के समर भी जीते, मिला जो पद पाथे ये मुझे, लगा हृदय स्वीकार किया, मैं पथिक प्रवासी चकित, बहती नदियां सी निरंतर, आदि अंत और अनंत से भ्रमित, सागर में जा मिली चिरंतन, सागर में जा मिली चिरंतन।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविताएं आपने पढ़ी दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी, और बहुत ही भावपूर्ण आपकी कविताएं, बहुत ही खूबसूरत शब्दावली आपकी, और इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत शाम चल रही है, बहुत ही खूबसूरत कविताओं का आनंद हम सब ले रहे हैं, आशा है कि हमारे श्रोतागण भी इन कविताओं का आनंद ले रहे होंगे। और अब इसी श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सलोनी चावला जी, और आप देश की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, और आप साहित्य शिरोमणि सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, अगीत के लेखिका और गायिका हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। मैं अदम गोंडवी साहब की चार पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूँ। अचेतन मन में प्रज्ञा कल्पना की लौ जलाती है, सहज अनुभूति के स्तर में कविता जन्म पाती है, उठाता पांव है विज्ञान संशय के अंधेरे में, अचानक उस अंधेरे में ही बिजली कौंध जाती है, अचानक उस अंधेरे में ही बिजली कौंध जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सलोनी चावला जी, आइए आपको सुनते हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी प्यारी पंक्तियों से बुलाने के लिए, और कला की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए और दिल्ली आकाशवाणी का आभार प्रकट करते हुए, श्रोताओं को नमस्कार करते हुए, मैं एक कविता तरन्नुम में पेश करना चाहती हूँ जो आज के युग में बहुत मायने रखता है।

0: बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी पहली कविता थी।
1: बहुत सुंदर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी दूसरी रचना बिना तरन्नुम के सुनाना चाहूंगी। दुश्मनों में वफा, दोस्तों में बेवफाई देखी है हमने, मरहम में नमक की परछाई देखी है।
1: क्या बात।
0: खींचते रहे लोग ऊंची लहरों की तस्वीरें, हमने डूबकर समुद्र की गहराई देखी है। हमने डूबकर समुद्र की गहराई देखी है। खुश नसीब चलते रहे सीधे साफ रस्तों पर, खुश नसीब चलते रहे सीधे साफ रस्तों पर, हमने एक कदम सागर दूजे खाई देखी है। वक्त दूर नहीं जब डिजिटल पलंग भी मिलेंगे, बस हम वो जमाना है जिसने चारपाई देखी है।
1: क्या बात है।
0: बस हम वो जमाना है जिसने चारपाई देखी है। आज खरौंदे सिमट गए, आसमां भी हुआ तन्हा, हमने भरे घर में दादी चाची और ताई देखी है। कदम बढ़ाते रहो, बढ़ने का नाम है जिंदगी, हमने रुके हुए पानी में उगती काई देखी है। आज के बालक बहुत ज्यादा समझदार, हमने तो मात पिता की पिटाई देखी है।
1: क्या बात है।
0: हमने तो मात पिता की पिटाई देखी है। शमा को मालूम था कि वो बुझ जाएगी, लोगों ने तो सिर्फ लौ की अंगड़ाई देखी है। लोगों ने तो सिर्फ लौ की अंगड़ाई देखी है। बनी बनाई पोशाकों का दौर है आज, बनी बनाई पोशाकों का दौर है आज, हमने हर घर में कढ़ाई बुनाई देखी है।
1: वाह।
0: हमने हर घर में कढ़ाई बुनाई देखी है।
1: बहुत अच्छे।
0: अमन और शांति बस किताबों में अमर है, हवा की नैनों ने देश देश में लड़ाई देखी है। दौलत की कद्र महलों में रहने वाले नहीं करते, करता है जिसने सिक्के सिक्के की कमाई देखी है। काबिलियत जिसमें भी ज्यादा होती है, जमाने ने हमेशा उसी में बुराई देखी है।
1: सही बात है।
0: कर्म फल के तमाचे हल्के नहीं होते जनाब, अच्छे अच्छों की अच्छी खासी धुलाई देखी है। अब अंतिम, न्याय का लफ्ज बेमायने हो गया सलोनी, निर्दोषों को सजा, दोषियों की रिहाई देखी है। दुश्मनों में वफा, दोस्तों में बेवफाई देखी है, हमने मरहम में नमक की परछाई देखी है। हमने मरहम में नमक की परछाई देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका सलोनी जी, और बहुत

0: खूबसूरत कविता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो आइए, खूबसूरत संचालन कर रहे हमारे सुप्रसिद्ध कवि हिमांशु शुक्ला जी को मैं चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुन्दर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुन्दर नहीं गिरता। तो ऐसे ही समुन्दर दिल वाले को हिमांशु शुक्ला जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आकाशवाणी दिल्ली का। और जैसा कि बहुत ही खूबसूरत शाम ये रही, हमारे बीच में जो भी कवि कवित्री जुड़े उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, और जैसा कि मुझे आमंत्रण दिया गया है, और मैं माँ हिंदी को समर्पित अपनी चार पंक्तियां देता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। है शब्द शब्द अर्थपूर्ण, पंक्तियों में सार है, शाश्वत है मात्राएं, व्याकरण अपार है, गद्य पद्य काव्य सब माँ हिंदी के प्रारूप हैं, पर्याय संधि अलंकार सब हिंदी के श्रृंगार हैं, सब हिंदी के श्रृंगार हैं। ये मेरी पंक्तियां माँ हिंदी को समर्पित। और अब मैं सीधे सीधे आपको अपने गीत से जोड़ता हूँ, इस गीत को सुने। मैं

0: इस दोधारी तलवार से मैं, इस दोधारी तलवार से मैं बेमतलब के भी लड़ता हूँ। लो आज अभी कह देता हूँ, मेरी जान मैं तुझ पे मरता हूँ। लो आज अभी कह देता हूँ, मेरी जान मैं तुझ पे मरता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा गीत था। और आइए अब मैं आपको सीधे द्वापर से जोड़ता हूँ। ये कटाक्ष सुने, जो राधा जी का एक कटाक्ष है कन्हैया के लिए।
0: कृष्ण कृष्ण जप

0: कमाल है।
1: भाग्य से ही हारी हूँ मैं, कैसा ये कमाल
2: क्या
1: है।
2: बात, क्या बात, अच्छा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे माधव को अक्सर सुनिएगा जो क्या कहते हैं त्रिलोक के स्वामी राधा जी से राधे।

0: बहुत
1: और
0: अच्छा
1: एक बहुत छोटी सी अपनी एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देता
0: जी।
1: हूँ। और ये कविता आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी हमारे बीच में घटित हो रहा है महिलाओं के साथ में, उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। और आज के परिवेश में महिलाओं को क्या करना चाहिए, इस कविता के अंत में आपको ये सुनाई देगा। इसका शीर्षक है चूड़ियां गई भाड़ में। इस कविता को सुनिएगा। कुछ नहीं बदला युगों से हर तरफ शैतान है, कुछ नहीं बदला युगों से हर तरफ शैतान है। भेष मानुष का धरे हैं कर्म से हैवान है। जानकी भी त्रस्त थी त्रेता युगी अब कर्म से, द्रौपदी अल्प वस्त्र थी द्वापरी दुष्कर्म से। कल युगी इस दौर में केशव कहां से लाओगे, लुट चुकी अस्मत धरा की क्या नवतलक भी जाओगे। वेद विद्या सब है मिथ्या ज्ञान का नाम मोल है, गर आत्मा अमृत साधे तो देह भी अनमोल है। न्याय घुट घुट मर रहा इन शकनियों की आड़ में, न्याय घुट घुट मर रहा इन शकनियों की आड़ में। तुम खुद सुदर्शन साध लो अब चूड़ियां गई भाड़ में। तुम ही दुर्गा शक्ति भी हो, तुम ही दुर्गा शक्ति भी हो, बेवजह क्यों मौन हो तुम। प्राण देह से खींच लो अब और बताओ कौन हो तुम, और बताओ कौन हो तुम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में हमने बहुत ही खूबसूरत कविताएं सुनी, बहुत ही खूबसूरत गीत सुने। और आज हमारे बीच में जो उपस्थित थे देश के सुप्रसिद्ध कवि कवित्री डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी, दीप शिखा श्रीवास्तव दीप जी और डॉक्टर सलोनी चावला जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कविताओं से, अपने गीतों से, अपनी रचनाओं से श्रोताओं के दिल में उतरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
3: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे युवा कवि हिमांशु शुक्ला। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आपने कार्यक्रम कवि की गोष्ठी का आनंद लिया और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का और ठीक 9:00 आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज। 9:15 पर आप उर्दू में खबरें सुन सकते हैं और आज 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो नाटक पगली। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 8:30 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ तलत। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ जो लिया गया है फिल्म फुकरे से और इस गीत को गाया है सोना महापात्रा ने।

नए को पुराना और पुराने को फिर से थोड़ा सा नया कर देने में जो मजा है ना, और जो उसकी एक ताजगी बनी रहती है वो जबरदस्त है। जैसे इस गीत के जो बोल थे वो बहुत जबरदस्त थे, कहीं उसमें पीछे फोक म्यूजिक जो है, वो गीत जो है, जो लोकगीत है उसका टच था, लेकिन जो म्यूजिक था वो आज के दौर का था। तो दोनों को फ्यूजन कर गया कमाल। और अगला गीत जो है वो है सुखविंदर सिंह की आवाज में, और फिल्म है एक था टाइगर।

और अब इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे। अब से कुछ ही देर बाद आप मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम में, जो होगा 11:10 पर। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। तो मिलते हैं कुछ ही देर में, सुनते हैं ये आखिरी गीत जो है फिल्म चमेली से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 8:45 होने को हैं और अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को

0: सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं। इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक

0: बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था।
2: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रूपये के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रूपये के इनाम में झारखण्ड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
3: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
4: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
3: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार

0: लगातार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
1: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
2: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack including 100

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। रात के 9:15 हुए हैं। अब हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

जी आकाशवाणी है, आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। आइए इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम से आपको मुतारस करवा दें। अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम एक फनकार के तहत राधिका चोपड़ा की आवाज में कुछ गजलें। खबरों का वक्त रहेगा 9:45। 9:55 पर बात होगी आप सबकी सेहत के हवाले से। मार्केट मंत्रा इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा रात 10 बजे। आप सबकी फरमाइश पर मबनी प्रोग्राम तमिल इरशाद पेश किया जाएगा रात 10:30 से। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बड़े सगीर से। 11:45 पर कव्वालियां सुन सकते हैं आप। फनकार रहेंगे अब्दुल हमीद साबरी कव्वाल और हमनवा। आलमी खबरें नशर की जाएंगी रात 12 बजे। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में रात 12:10 पर आप सुन सकेंगे पंडित उमा शंकर मिश्रा से सितार पर राग देसी तोड़ी। 12:30 पर प्रोग्राम आखिरी शब्द सुन सकते हैं आप। 12:50 पर खबरें नश्र की जाएंगी और रात 1 बजे ये मजलिस आज की खत्म हो जाएगी।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम के साथ हिना मौज हाजिर है, मेरा आदाब कबूल कीजिए। इस प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे राधिका चोपड़ा की गाई हुई कुछ गजलें।

0: इसके साथ ही आज का एक फनकार प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। वक्त है खबरों का।
1: ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं फैसल हबीब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबोहवा से मुतालिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी तआवुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रकात के मुस्तकबिल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फजाई मशक के दौरान तिपचिस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की ये पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के दो तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीम ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हालिया दिनों में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफात की वजह से आबोहवा से मुतालिक मजबूत इकदाम और आलमी ताउन की फौरी जरूरत है, ताकि आबोहवा की तब्दीली के मुजर असरात से निपटा जा सके। सदर जमहूरिया आज शाम नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुनक़िदा माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रका के मुस्तकबिल के बारे में दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रही थी। सदर मुर्मू ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली से इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से अदम तवाजुन पैदा हो रहा है, जिनमें हयातियाती तनवो, पानी की दस्तियाबी और जमीनी वसायल भी शामिल हैं। भारतीय फजाइया के सरबराह मार्शल AP सिंह और जापानी फजाइया JASDF के सरबराह जनरल ताके हीरो मूर्तिया ने आज जोधपुर में फजाई करतब के दौरान मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के जंगजू तैयारे तिपचिस की परवाज की। दोनों सरबराहान ने ये परवाजें साथ साथ की। दोनों मुल्कों के फजाई सरबराहान ने ये परवाजें भारतीय फजाइया और जापानी फजाइया की मुश्तरका फजाई मशक वीर गार्जियन 2026 के तहत अंजाम दी। ऐसा पहली बार है कि जापानी फजाइया के जंगजू तैयारे इस दो तरफा मशक के तौर पर भारतीय सरजमीन पर परवाज कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी में मजीद गहराई लाना है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तिपचिस की परवाज का जनरल मूर्तिया का फैसला भारत में तैयार करदा जंगजू तैयारे पर उनके एतमाद की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का फजाई शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसमें तहकीक व तरक्की और तैयारे तैयार किया जाना भी शामिल है। वीर गार्जियन 2026 मशक का आगाज 9 सितंबर को हुआ था और ये 22 सितंबर को अख्ताम पजीर हो जाएगी। भारतीय फजाइया के स्वर्ण किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में एक फजाई शो के तहत एक सहरंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें 9 हवाक MK-132 तैयारों ने एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए करतब पेश किए। दिफाई उमूर के वजीर मबलकत संजय सेठ ने इस शो का नजारा किया और टीम की यह कहते हुए तारीफ की कि इस फजाई शो का मकसद नौजवानों को तहरीक देना है कि वो फौज में शामिल हों। यह दो रोजा फजाई शो कल शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के इज़दादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने आज वाराणसी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान झारखंड की ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम तृतीया प्रस्तुति कमेटी TPC के सरबराह ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरदार जी को एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया। دنیش گنجو تقریباً دو دہائیوں سے مفرور تھا. جھارکھنڈ پولیس اور قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے اس کے تعلق سے معلومات فراہم کرنے پر مجموعی طور پر 30 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کر رکھا تھا. اس کے خلاف اغوا، جبری وصولی، آتش زنی، مجرمانہ سازش اور سرکاری ملازمین پر حملوں سمیت 50 سے زیادہ مقدمات درج تھے. ان مقدمات میں عام شہریوں اور پولیس اہلکاروں کو مبینہ ہلاکتیں بھی شامل تھیں. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کرشنا نے اس انکاؤنٹر میں شامل اے ٹی ایس ٹیم کے لیے 2 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے. گنجو کے لیے اعلان کردہ کل انعامی رقم میں سے 25 لاکھ روپے جھارکھنڈ پولیس کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے، جبکہ این آئی اے نے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا تھا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یوکرین نے روس پر رات بھر 1000 سے زیادہ ڈرون حملے کیے ہیں، جس میں ماسکو کو نشانہ بنا کر کیے گئے سینکڑوں ڈرون حملے بھی شامل ہیں. ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے اسے راجدھانی پر کیا گیا اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا ہے اور ایک تیل ریفائنری اور ایک رہائشی عمارت کو نقصان پہنچنے کی اطلاع دی ہے. جناب سوبیانن نے بتایا کہ ماسکو کے وسیع علاقے میں اس حملے سے 2 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں. روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس کی فوجوں نے ملک میں 1100 یوکرینی ڈرونز مار گرائے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کے ملک نے اس حملے میں تیل اور لاجسٹک ٹھکانوں پر بہت سے میزائلز اور ڈرونز داغے تھے، جن میں یوکرین کے اپنے بنائے ہوئے فلیمنگو اور پیلیکان میزائلز بھی شامل ہیں. پاکستانی حکام نے جیل میں قید سابق وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کو آج گرفتار کر لیا ہے. انہیں اگلے ہفتے ان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک منصوبہ بند احتجاج سے پہلے گرفتار کیا گیا ہے. علیمہ خان کو لاہور میں گرفتار کیا گیا اور کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا. وہ اپنے 73 سالہ بھائی کی رہائی کے

0: लिए मुहिम चला रही हैं जो 2023 से कैद में हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने पंजाब में आवामी नज्म व नस्क के 1960 के हुक्म इम्तनाई के तहत उन्हें 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। इस कानून के तहत हुकाम को यह अख्तियार हासिल है कि ऐसे अफराद को हिरासत में ले लें जो आवामी जगहों और नज्म व नस्क के लिए खतरे का सबब बन गए हों। खान की पीटीआई पार्टी साबिक क्रिकेटर व सियासतदान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितंबर को एक एहतजाज का मंसूबा बना रही है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 81वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस माह की 26 तारीख को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 81वें इजलास के आला सतह के सेशन से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉ जयशंकर मुख्तलिफ कसीर जहती और दो तरफा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का मौसम खजां का सेशन कल से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। 10 रोजा सेशन 7 इजलास के साथ 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सेशन के दौरान हुकूमत मुख्तलिफ कानूनी तजावीज पेश करेगी जिसमें जीएसटी से मुतालिक तजावीज, बल्दियाती हुकूमत और तजारत के तरीकेकार शामिल हैं। जापान के एची नागोयो में जारी एशियन गेम्स के आज इफ्तिताही दिन भारत ने चांदी के दो तमगे जीतकर एक मजबूत शुरुआत की। तीन खिलाड़ियों की टीम इवेनिल वेलेरा, विदारा विनोद और सोनम मास्कर ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता जबकि इलेवेनिल ने भी इन्फरादी मुकाबले में एक और चांदी का तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। क्रिकेट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश से 114 रन से जीत हासिल की। शेफाली वर्मा ने अपने टी20 इंटरनेशनल का पहला सेंचुरी 49 गेंदों पर 100 रन बनाया। स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन बनाया। भारत ने 4 विकेट पर 195 रन बनाकर बांग्लादेश को 81 रन पर आउट कर दिया। फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेला जाएगा। सुचिता त्रिपाल एशियन गेम्स में खवातीन के रिवायती 60 किलोग्राम्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क की पहली एथलीट बनकर तारीख रकम की है। टेबल टेनिस में भारतीय खवातीन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से और सिंगापुर को 3-2 से जबकि मर्दों की टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त दी लेकिन ईरान से 0-3 से हार गई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबो हवा से मुतालिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी ताउन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के मुहरकात के मुस्तकबिल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरक फजाई मश के दौरान 23 तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाई के सरबराहान ने बताया कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारी की अभी तक की यह पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संगी मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश के स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल की रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज पर। आइए समय अब बात करते हैं हम सबकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं हिना मौज। एक बार फिर मेरा आदाब कबूल कीजिए। समय जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब इंसान फिक्र, परेशानी और टेंशन में मुब्तला हो जाता है। रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, घर और खानवादे की परेशानियां या फिर मुस्तकबिल की फिक्र, ये सब हमारे जहन पर जब असर अंदाज होते हैं तब हमारी जिंदगी में, हमारे जिस्म में, हमारे जहन में टेंशन या फिर स्ट्रेस की वजह बन जाते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ये दिमाग से जुड़ी हुई परेशानी है लेकिन समय इसका असर हमारे दिल और पूरे जिस्म पर भी पड़ता है, इस बात से हम नावाकिफ हैं। जब इंसान तनाव यानी टेंशन में होता है तो

0: इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। अगर तनाव बार बार हो या लंबे अरसे तक जारी रहे तो दिल की सेहत पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। टेंशन के दौरान कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज महसूस होने लगती है, बेचैनी, घबराहट, पसीना आना या फिर सीने में भारीपन महसूस हो सकता है। हालांकि इन अलामात को हमेशा सिर्फ टेंशन ही समझ लेना ये सही नहीं होगा। अगर इस तरीके की कोई परेशानी आपको होती है तो आप इस बात को डॉक्टर को जरूर बताएं, ये किसी और बीमारी की अलामत भी हो सकती है। सवेन, जब हमारी जिंदगी में टेंशन बढ़ जाती है तो हमारी नींद भी मुतासर हो जाती है। नींद पूरी न होने से थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और इंसान का रोजमर्रा का रूटीन भी बिगड़ सकता है। टेंशन कम करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में बस छोटी मोटी सी कुछ तब्दीलियां करनी जरूरी हैं। अगर इन तब्दीलियों को हम कर लें तो हमारी जिंदगी में टेंशन थोड़ा कम हो सकती है। मसलन रोजाना कुछ देर पैदल चलना, गहरी सांस लेने की मशक करना, पूरी नींद लेने की कोशिश करना और बैलेंस डाइट यानी अपनी ग़िज़ा जो है वो इस तरीके की रखें कि जिसके अंदर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन आपके जिस्म को मिल सकें। और अगर आपको ज्यादा घबराहट या परेशानी महसूस होती है तो किसी भी अजीज से आप बातचीत करें तो उसमें आपको मदद मिलती है जिससे आपको टेंशन कम होती है। इसके अलावा काम के दौरान छोटे छोटे से ब्रेक लेना और हर वक्त मोबाइल या सोशल मीडिया में मशगूल रहने के बजाय कुछ वक्त अपने लिए निकालना भी फायदेमंद होता है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी शख्स को सीने में तेज दर्द या दबाव, सांस लेने में परेशानी, अचानक बहुत पसीना आना, चक्कर या बेहोशी जैसी अलामत हो तो इसे सिर्फ तनाव ना समझें यानी टेंशन ना समझें और बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें। ऐसी सूरत में फौरन मेडिकल मदद हासिल करना जरूरी होता है और सामेन ऐसे में फौरन अपने डॉक्टर से सलाह करें। किसी भी फर्स्ट एड की जरूरत है तो वो आप लें जरूर। सामीन, दिल सिर्फ हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा नहीं है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का साथी है। इसलिए जिस तरह हम अपने दिल को अच्छी ग़िज़ा और बेहतर आदतों से सेहतमंद रखते हैं, उसी तरह अपने जहन को भी सुकून देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपनी जिंदगी में तनाव को हावी होने न दें, बजाय इसके कि तनाव को हावी करें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ तब्दीलियां करके उसे अपने आप से दूर करें और सेहतमंद रहें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
1: सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be able to address fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद राजेश और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. अपने सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
0: वेलकम स्नेहा.
2: थैंक यू.
1: पहले हेडलाइंस के साथ राजेश.
0: ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल कंडीशंस आर मेट. Foreign portfolio investors withdraw nearly 21,000 crore rupees from Indian equities in September so far. And in bullion market, gold and silver prices rise last week.
1: Iran ne kaha uski shartein puri hone tak Hormuz jal damru madhya band rahega. इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21,000 करोड़ रुपए निकाले और सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर से तेजी.
0: As a disclaimer, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first story. Iran has said that the Strait of Hormuz will remain closed until their conditions are met and commitments from the United States are implemented. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf made these comments according to Iran's semi-official Fars news agency. Ghalibaf said Iran would continue to fight and negotiate using military force against its enemies and diplomacy to consolidate what it considers gains on the battlefield. Meanwhile, the wider regional conflict continues. Saudi Arabia stated that it intercepted a ballistic missile launched towards Riyadh yesterday, while Yemen's Houthi movement has claimed attacks against Saudi targets. More from our correspondent.
3: Iranian officials have once again said that reopening the Strait of Hormuz depends on US commitments, including an end to fighting and changes to sanctions and restrictions on Iranian shipping. The strait remains heavily disrupted, even as US Central Command has claimed that it has helped more than 2,000 commercial vessels pass through the waterway in the past 2 months. The US State Department, citing the Houthi hostilities with Saudi Arabia, has renewed its travel alert for the West Asia region. The US has warned that the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Manish Shiva for Akashvani News from Dubai.
1: जी, और चले कुछ श्रोताओं के पास जो इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के साथ. दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: जी नमस्कार आप सभी को.
1: नमस्कार.
4: मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल की जितनी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो सारी की सारी एक फाइनेंशियल डिजिटल मोड से हो रही है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो गोल्ड के बॉन्ड्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट में रीट्स के इन्वेस्टमेंट्स हो या बॉन्ड्स या पीपीएफ वगैरह शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड वगैरह हो, तो जितने भी एसेट क्लास है सब में डिजिटल माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो ऐसे में डाइवर्सिफाई करने के लिए इस लेवल पे कितना जरूरी आप समझते हैं कि जो फिजिकल एसेट्स होते थे पहले जिनको हम ओन करते थे, जैसे वो प्लॉट या घर हो सकता है या फिजिकल गोल्ड हो सकता है, तो फिजिकल एसेट्स का होना भी कितना जरूरी है एक बैलेंस बनाकर रखने के लिए।
2: योगेश जी, जो आपका ओवरऑल सवाल है वर्चुअल एसेट्स वर्सेस फिजिकल एसेट्स का, तो हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान रहते हैं, बट जहां तक डिजिटल ओनरशिप की बात है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वेल यू गेन द एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास वाया दैट मेथड, बट फिजिकल एसेट से आप ओनरशिप से जो एक हमारे दिमाग में एक चीज आती है वो रहती है एक साइकोलॉजिकल, हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास है। डिजिटल या वर्चुअल कोई भी चीज होती है तो हमें लगता है कि इसकी पकड़ हमारे हाथ में नहीं है, बट जब भी कोई एसेट

0: क्लास का एक्सपोजर हमें लेना होता है, ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको साइड में रख के हमें ये देखना होता है कि किसी भी चीज को जब आप चाहे फिजिकल ओन कर रहे हो चाहे वर्चुअल ओन कर रहे हो, बट उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए, मतलब वो आपके किसी गोल से लिंक्ड है या फिर वो किस टाइप का एक रिस्क या फिर लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे कैसे हैं उस फिजिकल एसेट्स में जो आपको सोचना चाहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम की बात है, तो अगर हम फंड्स के पर्टेनिंग बात करें तो जैसे हमारे कुछ बेसिक थंब रूल्स रहते हैं विच हेल्प अस डाइवर्सिफाई अ पोर्टफोलियो, कि हम एएमसी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम कैटेगरी लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, हम एसेट क्लास लेवल पे डाइवर्सिफाई करें, ये कुछ चीजें करके हम लंबे समय के लिए अपना पोर्टफोलियो संतुष्टि से बना सकते हैं।
1: जी, आपने जैसा कहा अभी स्नेहा, या जैसा सवाल था इनका कि डिजिटल सब कुछ लगभग डिजिटल हो गया है, तो ये सहूलियत है, और लेकिन ये सवाल इनके मन में क्यों आया, मैं उस पर विचार कर रहा था कि क्या इसके पीछे डर क्या है, क्या सब कुछ डिजिटल है तो कहीं सब कुछ कॉलैप्स हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब कुछ जमीन पर है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहे हैं, और वहां से फिर वो शेयर बाजार में अगर जा रहे हैं या बॉन्ड मार्केट में जा रहे हैं तो वहां से भी वो फिर वो कंपनी एक्चुअली वो बाजार में है वो पैसे।
0: पर यहां इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि चाहे वो बाजार में है, आपने लगाए हुए हैं, ये सब एसेट क्लासेस एक रेगुलेटरी बॉडी के अंडर है, जिनका मेन बेनिफिट ही यही है कि इन्वेस्टर की सुरक्षा और इन्वेस्टर का जो एक एक्सपीरियंस है उसको कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए मतलब यहां पे कुछ डाउट नहीं रखना चाहिए।
1: कोई ऐसी कोई हवा हवाई चीज नहीं है डिजिटल की अचानक कॉलैप्स हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ
0: सारे रिकॉर्ड्स डिजिटली रहते हैं
1: जी।
0: मतलब पुराने टाइम पे वो जो शेयर सर्टिफिकेट वाली बात होती थी, काफी लोगों को पता नहीं होता था कि अंदर पड़ा हुआ है कुछ या वो पेपर
1: भूल जाते थे। अभी भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास ऐसे।
2: So, Sneha, the domestic investors are actually focusing quite a bit on macroeconomic data, the geopolitical developments. You also have the foreign institutional investors' flows, the commodity prices and global bond yields. In such a scenario, what should an investor be doing when it comes to mutual funds? How should they navigate particularly the geopolitical situation that's prevailing today?
0: Right. So, you know, there is a specific problem here, which is that in the last 3-4 years, information has been all over. The information flow and thereby the interpretation of every minor macro detail has really reached investors in a way that, so let's say for people who entered post-COVID, we've always been talking about how their experience for 2-3 years had been spectacular given the kind of returns or the right. run-up that they were seeing in their portfolios. But suddenly when things started to change, I would not say collapse, change being that is the market design, the ups and downs, then the information started taking importance beyond a particular investor's circumstances or situations. So I would say for investors in a world where everything sort of seems haywire or for the time being, all of that, it is good to know all of it to remain aware of what is happening in the macro world and, you know, outside the domestic as well. But when it comes to your own portfolio, you should be grounded in the fact that how your personal policies are, how your circumstances are, how your situation is. If, let's say, you need some money for a very important thing which you had been investing for, you should really not think about what is happening in the geopolitical arena or anywhere in the world, because you invested your money for this day, so you should pull it out. If, in case you do not need your money, just continue with your asset allocation, with your SIPs. Don't be scared because of, you know, what is happening out there, because this is the most tough part, you know, staying in the game when things look red in your portfolio.
2: So are there any sector specific mutual funds that you would recommend that people should focus on?
0: I would say specific to sectors, more than that, to understand and, or let's say, to sort of keep control over where you are investing, you should actually be investing into diversified funds.

0: thereby you will be giving the fund manager the opportunity to with the macro developments to, let's say, change the sectoral exposures or the company dynamics within the portfolio for your benefit. And yeah, that should be the focus, and so, not really the...
1: So the mantra, according to you, should be that one should continue to invest.
2: Bilkul. Sneha ki raay yahi hai, Rajesh, ki aap girte hue bazaar ka fayda uthaye aur bazaar mein paisa lagate rahe taki aap kam price pe units khareed sake, mutual fund mein bane rahe. Agle caller hai Jaipur se Shivam, swagat hai aapka, sawal puchhe.
3: Ha, namaste sir.
2: Namaste.
3: सर, मैं अभी आने वाले 7-8 साल के लिए लगातार मंथली एसआईपी करना चाहता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड में. तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पारस्परिक का फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो कौन सा बेटर रहेगा सर, प्लीज ये बताइए.
0: शिवम जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आप अपने टाइम होराइजन को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, एंड इसीलिए आपने जो एसेट क्लास सिलेक्ट करी है वो भी बिल्कुल सही है, विच इज इक्विटी. जब भी कुछ चुनाव की बात आती है इन अ कैटेगरी लाइक फ्लेक्सी कैप, तो जैसे अभी हम पहले श्रोता को बता रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन एक की रहती है अपने पोर्टफोलियो के लिए. तो हमें हमेशा जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कम से कम 2 फंड्स का चुनाव करें फ्लेक्सी कैप, मतलब किसी भी कैटेगरी में वैसे, बट आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहा तो 2 फंड्स का चुनाव करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि किसी भी एक फंड पे हमारी जो पोर्टफोलियो की डिपेंडेंस है उससे प्रॉब्लम ना रहे, और जब इन्वेस्ट करें तो एसआईपी के माध्यम से ही करें.
2: जी, आइए और अगली खबर पे नजर डालते हैं. इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआईज ने भारतीय शेयर बाजार से 20,974 करोड़ रुपए निकाले हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है. वैसे देखा जाए तो देश के शेयर बाजारों में कुल बिक्री के जरिए एफपीआईज ने 23,676 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन प्राथमिक बाजार में उन्होंने 2,700 करोड़ रुपए का निवेश भी किया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 25 आधारभूत अंकों की वृद्धि से वैश्विक तरलता की स्थिति पर अनिश्चितता और बढ़ गई है. भारतीय ऋण बाजार में भी एफपीआईज की बिकवाली का दबाव बना रहा. सितंबर में अब तक एफपीआई ने एफएआर के जरिए ऋण प्रतिभूतियों से 10,296 करोड़ रुपए निकाले हैं. वीआरआर के जरिए 1,817 करोड़ रुपए की निकासी हुई, जबकि जनरल लिमिट मार्ग से समीक्षा अवधि के दौरान 1,068 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई.
1: इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, वी हैव इन आवर स्टूडियो म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट नेहा सूरी विद अस, सो यू कैन कॉल अस एट 2331444 or 2331-0481 or 2371-7106. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. Shankar, a warm welcome. Please ask your question.
4: Good evening, Market
1: Mukherjee. Good evening.
4: Ma'am, my question is about REITs fund. If someone is invested in REITs fund, what should be the allocation into REITs fund as far as equity and debt is concerned and gold? What should be the REITs fund investment? And secondly, REITs fund earns on what? Do they earn on rental income, or do they earn on price appreciation of property? How this model of REITs work? Can you please explain to us? Thank you.
0: So, Shankar, when it comes to the kind of allocation you should have beyond the traditional equity and debt allocation. By traditional, I mean equity asset class and debt asset class overall versus, let's say, gold or REITs. In your portfolio, while majorly equity and debt should be along with as per your asset allocation, for a REITs kind of exposure or, say, gold, you can look to have, let's say, a 10 to 15% kind of an allocation. Having said that, now even, equity mutual funds have the leeway to invest some portion in REITs or the listed real estate and gold / silver or any kind of commodities. So there is no longer a need to have a specific allocation carved out for, say, gold or REITs. Having said that, if you're still looking for some, of course, you can look to have a lower allocation, as I said, around 10%. When you say how they earn, while the details of that I will definitely have to look at, but since they are listed, the price

0: appreciation is well part of it. So that part remains same as shares.
1: जी और अभी के जो हालात हैं स्नेहा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं, और लेकिन आमतौर पर ये गिरता हुआ बाजार जब काफी समय तक कायम रहता है और देर तक, तो थोड़ी घबराहट तो होती है. चलिए हम इस पर आगे चर्चा रखेंगे जारी अपनी. और नोएडा से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं. विनोद स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
2: सर मेरे पास SBI का कॉन्ट्रा फंड है, वो बहुत अच्छा प्रूव नहीं कर रहा है. ऊपर मैंने मार्केट मंत्रा में ही मैंने सुना था कि SBI कॉन्ट्रा में आप निवेश कीजिए एसिप, लेकिन कोई अच्छा परसेंटेज उसमें जनरेट नहीं हो रहा है, तो कृपया सलाह दें.
0: विनोद जी, हम जिस कभी भी जिस भी कोई भी इक्विटी फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते टाइम कि हमारा कोई भी फंड होता है वो हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उसके बेस्ट फेजेस आएंगे और उसके वर्स्ट फेजेस आएंगे, और कुछ ऐसे फेजेस होंगे जब आपको ना ही कोई बेनिफिट हो रहा होगा, बहुत ही मिडलिंग टाइप ऑफ फेजेस होते हैं. यही वो एक्चुअल फेजेस होते हैं जब हमें उसमें लगे रहना होता है, बिकॉज अगर वो फंड आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल कंप्लीट करता है तो हमें उसके जो एक मिडलिंग फेज होता है उसमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए. स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग एज अ स्ट्रैटेजी रहती है, ये इसमें चुनाव ऐसे शेयर्स या स्टॉक्स का करते हैं फंड मैनेजर्स जिनकी संभावना ऐसी रहती है कि ये अभी मार्केट से अलग चल रहे हैं, बट जब मार्केट का एक दूसरा टाइप ऑफ लेट्स से डायरेक्शन आएगा तब ये आपको बेनिफिट देंगे. तो कॉन्ट्रा और जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टाइल्स होते हैं, इनमें थोड़ा जो एक धैर्य या पेशेंस होता है वो हमें ज्यादा लेकर चलना होता है. ओवरऑल फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में सूटेबल है, आप SIP के माध्यम से उसमें लंबे समय से करते आ रहे हैं तो भी आपको समय देना चाहिए. और अगर आपने हाल फिलहाल में स्टार्ट करा है तो इक्विटी को रंग दिखाने के लिए कम से कम 3 या 5 साल हमें चाहिए ही रहते हैं, तो मेरी समझ में आपको बने रहना चाहिए.
3: फ्रॉम ओडिशा वी आर जॉइंड इन बाय अंबुजा. अ वार्म वेलकम अंबुजा.
4: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
3: गुड इवनिंग.
4: माई क्वेश्चन इज व्हेन आई विल टेक ए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, व्हाट डिसिप्लिन शुड आई फॉलो.
0: सो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इज अ वेरी यू नो अ वेरी न्यू एंड अ वेरी गुड वे ऑफ लेट्स से कंटिन्यूइंग द कंपाउंडिंग पार्ट ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टिल गेटिंग सम लिक्विडिटी इन योर फेवर. I would say you should just not, whenever taking any kind of loan, according to me, one particular aspect remains that any kind of, you know, interest payment, you should remain on top of it. And you should not, let's say, consider this particular aspect of taking a loan for every liquidity needs that crops up. So you should have discipline in the sense that you are taking loan against your mutual fund units for this particular reason, because you are not able to arrange for any other, let's say, way out. While this remains a good way to take, you know, to get some liquidity immediately, but a dependence of a kind that this becomes your way to go every time should be, I guess, taken care of.
1: जी, अगला कॉलर है मुंबई से पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
5: Hi, good evening, Market Munda team.
1: Good evening.
5: I've got two questions. One is, if I have a 5+ year horizon, how many funds should I actually have in my portfolio, and how do I avoid over diversification in my portfolio? One is that, and the second one is about mutual funds now investing in foreign markets. So, how good or bad are these? And especially now at such a time when, say, the US markets or other markets are doing outperforming the Indian market, so is it a good time to invest in such funds? Thanks.
0: Right. So, Pankaj, taking your second question first, you know, one important aspect of diversification beyond AMC and fund level diversification or asset class diversification is having some diversification or some of your money beyond the domestic or the, you know, local horizon, which becomes the domestic country. So having some allocation to international funds is a really good way of, you know, topping up diversification in your portfolio. Having said that, international specific mutual funds, which are, you know, 100% investing in those, sort of are going through a blockage of a kind that you are, you know, not able to invest in those funds. But there are funds out there, if you, you know, let's say search, a Google search would tell you that there are funds which are investing some portion of their

0: their investments, their money into international specific stocks, which can be a good way to start if they are, you know, overall diversified. Now, coming to your first question, that since you're beginning, you have a long-term horizon, how many funds you should have. So there is no scientific formula or rule of thumb as such that, you know, these many funds will get you this much kind of a benefit of any kind. How you should go about selecting is something that I can help you with. One, looking at your time horizon and risk appetite, have some sense of asset allocation, how much equity you want, how much debt you want. Secondly, in case of equity, you can look to have, let's say, 1-2 flexi cap, multi cap as core of your portfolio, because they are diversified. They get you large, mid, small all at once. And then when you have some experience already, then you can look to have some 20% into small and mid cap, which require longer horizon because of the risk that they get you. But of course, the return benefit for the generation of wealth of your overall portfolio can enhance with that kind of exposure.
1: Dinesh from Delhi joins us now. Dinesh, a warm welcome.
2: Namaskar. I am Dinesh Kumar from Delhi, Ashok Vihar. I want to ask that from long-term perspective benefits, which funds are likely to perform better? Gold funds, silver funds, or aggressive hybrid funds? Thank you.
0: Right. So, Dinesh ji, the kind of comparison that we are making here is somewhat not aligned, because aggressive hybrid funds are a mix of equity and debt, while gold and silver become part of the commodities. And we've seen historically how, there have been times when commodities or gold, let's say here, performs really well when there is uncertainty in the equity market, which hurts, of course, aggressive hybrid funds since they are about 65-70% in equity. So I would say you can look to have, if you're looking for a long-term horizon, you can look to have exposures of all of these asset classes into your portfolio, because a combination is what will help you in the long term. And, you know, specific allocations, standalone allocations may not be able to generate that much benefit.
3: Ji, MP se DS Sharma hamare saath hain. Swagat hai, aapka sawal poochhein.
4: Hello.
3: Ji.
4: Namaskar, sir.
3: Namaskar.
4: Main DS Sharma bol raha hu, Mansoor MP se.
3: Ji.
4: Main 2017 mein maine SBFC से कुछ फंड्स लिए थे सर
3: जी.
4: बैलेंस में करीब 15 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए एक टैक्स सेविंग में, और कुछ दूसरे भी लिए थे. 2-3 साल तक तो उनके मेरे पास में रिजल्ट आते रहे, मगर अब क्या है, 2-3 साल से उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है. बैंक जाता हूँ तो कहते हैं ये है ही नहीं हमारे अकाउंट में, जबकि मेरे पास में उनका हार्ड कॉपी है, सब कुछ है. तो क्या करना चाहिए सर?
0: जी डियर शर्मा जी, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बैंक को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें सर्च करके वो मिलना चाहिए, या फिर अगर आपने डायरेक्टली बैंक के साथ करा था तो बिल्कुल ही मिलना चाहिए. और अगर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बीच में था जिसके साथ आपने करा था, आप उनसे मदद ले सकते हैं. और दूसरा तरीका ये रहता है कि आप हम एज इन्वेस्टर्स, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम डायरेक्टली जो AMC है जिनसे हमने इन्वेस्ट करा है उनको भी रीच आउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के जरिए, या फिर सेबी भी अलाउ करता है हमें कंप्लेन रेज करने का. तो ये तरीके आप,
1: कोई अम्बेसमैन नहीं है जिनके पास जा सकते?
0: बिल्कुल, सेबी, तभी मैं बोल रही हूँ कि वहां पे भी होगा.
3: अगली खबर पर नजर डालें हम. सोने और चांदी की कीमतों में पिछले सप्ताह फिर तेजी देखने को मिली. ये बढ़त मुख्य रूप से सप्ताह के अंत में आई रिकवरी के कारण रही, जिसे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से समर्थन मिला. एमसीएक्स में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 1% की बढ़ोतरी हुई और ये 1,54,381 रूपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी के वायदा भाव में 2.8% की बढ़त दर्ज की गई और ये 2,41,603 रूपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने के वायदा भाव में सप्ताह के दौरान 0.4% की बढ़ोतरी हुई और ये $4,390.70 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर बंद हुआ.
1: फ्रॉम जयपुर वी आर जॉइंड इन बाय जितेंद्र. वार्म वेलकम जितेंद्र.
5: हेलो. हाँ मैडम, ये एक्टिव फंड क्या होता है? एक नया NFO आया है शायद, मोतीलाल ओसवाल का ना, किसका एक्टिव फंड, तो क्या मतलब वो किस टाइप का, मतलब एक्टिव से क्या समझ में आ रहा है?
0: जितेंद्र

0: transactions comprise more than 95% of the total volume of UPI person-to-merchant transactions. It added that the intent of levying reasonable MDR is to ensure that UPI remains accessible and convenient for everyday transactions while supporting long-term ecosystem sustainability.
1: जी, अगली कॉलर है पंजाब से मीनाक्षी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ भटिंडा से। मेरा सवाल लगभग इन्हीं इसी से मिलता जुलता था कि अगर मैं यूपीआई में यूपीआई के थ्रू एसआईपी में इन्वेस्ट करती हूँ और अमाउंट अगर 2000 रुपए है तो क्या एमडीआर लागू होने के बाद उस पर कोई असर आएगा?
3: मीनाक्षी जी, अभी तक जो मैं आपको बता सकती हूँ वो यही है कि एज एन एसआईपी इन्वेस्टर हम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बाकी आगे आने वाला समय ही बताएगा।
0: Domestic investors are expected to focus on macroeconomic data, geopolitical developments, foreign institutional investor flows, commodity prices and global bond yields for cues in the week ahead. On the economic front, market participants will closely track core industries data. The primary market is also set for another busy week with 6 main board initial public offerings, IPOs, opening for subscription. Globally, investors will monitor developments surrounding the West Asia conflicts. Focus will also be on anticipated visit by Chinese President Xi Jinping to the United States.
1: और जल्दी जल्दी स्नेहा, हम दो चार सेंटेंस में अगर हम बताना चाहें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बस गिरते हुए बाजार का फायदा उठाएं, बाजार में बने रहें, आप आगे क्या जोड़ना चाहेंगे इस पे?
0: और कंपाउंडिंग कैसे होती है? हाउ शुड वी आस्क यू नो आस्क द लिसनर्स टू बी वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द म्यूचुअल फंड्स।
3: सो अगर आप 1 से 2 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको जो एक बढ़ोतरी दिखती है उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं।
1: थैंक यू सो मच। वक्त इतना ही है आज स्नेहा कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी धन्यवाद।
0: Headlines once again, Iran says Strait of Hormuz will remain closed until conditions are met. FPI withdraw nearly 21,000 crore rupees and in bullion market, gold and silver prices rise last week. That's what we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
6: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। वक्त है आप सबकी फरमाइश पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद का। तामिल इरशाद प्रोग्राम के साथ हिना मौज हाजिर है। पुरखलूस आदाब। पहला नामा जो आपकी समातों की नजर करने वाले हैं उसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभुदयाल खटक ने, जाकिर सुमैया और सुभान जुड़े हैं पंडरपुर से। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से शामिल हुए हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज अब्बासी। राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन मुल्ला दाखा से, मुल्लापुर दाखा से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर मालूजा शामिल हुए हैं बंजनू कटीला से। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, रामचंद्र रावकर, अनु रावकर, रोहित रावकर और इनके अहले खाना काले मल्ला कोपर गांव से। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। संभल से छोटे अंसारी,

मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, हार्दिक बत्ता पटियाला से शामिल हुए हैं। हर गोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, प्रतीक्षा संधू। तो आप सबकी फरमाइश पर लीजिए ये नवा आवाज मोहम्मद रफी की है और फिल्म है मेरे महबूब।

बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से शिरकत की है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती ईरानी ने। विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, हर्ष सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से शामिल हुए हैं गोविंद, वैष्णो, दिव्या, सुमन और कृतिका और इनके अहले खाना। चमनपुरा उदयपुर से सबीहा खानम, फरीदा बानो, रईसा खातून। तो आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा फिल्म ताजमहल से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है।

अगले नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार ने। ये पैगाम हमें रिसाल हुआ है कोरिया से डोनट बापो और छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से शामिल हुए हैं अशोक जाटव। मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा रेडवे कॉलोनी रेलवे रोड गंजनवाड़ा से, रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, बेबी अलीजबा शेख, फलक तबस्सुम शेख। अमीर खुसरो रोड गंजनवाड़ा से डॉ दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनबर और भुवन प्रकाश गौतम। कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और रिश्पा गुप्ता शामिल हुए हैं पिपरिया से। सुभाष योगी, राजू मिगलानी, डब्बू और बब्बू कृष्णा कॉलोनी हांसी से, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और इनके अहले खाना। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और इनके साथी फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी और मोहम्मद रेहान शामिल हुए हैं जसपुर उत्तराखंड से, नरेंद्र मिर्गे, प्रदर्शनी मिर्गे और डॉ प्रियंका काल पांडे साई नगर आरवी महाराष्ट्र से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, चिनमिरी क्रासिया कालरी से, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली पाठक शामिल हुए हैं। और आप सबकी फरमाइश पर अगला नगमा मोहम्मद रफी साहब के साथ आशा भोसले की आवाज में, फिल्म है बहू बेगम।

जरूर से बाबा साहेब वडोदे आदिचर पे और इनके साथ हैं चंद्र प्रभा वडोदे। अक्षय रामेकर, दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। नांगलोई नई दिल्ली से उषा जटोलिया, राजेंद्र जटोलिया। जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम आलम आरा। रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले अकोला महाराष्ट्र से। गोकुल चौक बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी और बुल्की वाली फन्नाजा। निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक फूल वाले। राकेश पेड्रो सानिका शामिल हुए हैं कोलकाता से। सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे, श्रद्धा मालोदे कोपरगांव से। गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर शामिल हुए हैं कुंडलवाड़ी से। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से। अल्तमश खत्री, समीना मुदस्सर और इनके साथी जुमानगर खंडवा से। पीवी नोहाकर, निर्मला नोहाकर, विशाल नोहाकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह और भारत भूषण श्रीवास्तव। कोपरगांव से सुरेश मालोदे, मुमताज मोहल्ला नव गांछिया से इजराइल अंसारी और सीरत अंसारी। तो आप सबकी फरमाइश पर नगमा कोहिनूर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडिया वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर दौरान प्रोग्राम लीजिए, सुनिए खबरें बरे सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है बरे सगीर की खबरों के साथ मैं फैसल हबीब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबोहवा से मुतालिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी तआवुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरक फजाई मश्क के दौरान टेपचेस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की यह पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के दो तमगे जीते हैं। खातिन क्रिकेट में फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हालिया दिनों में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफात की वजह से आबोहवा से मुतालिक मजबूत इकदाम और आलमी ताउन की फौरी जरूरत है, ताकि आबोहवा की तब्दीली के मुजिर असरात से निपटा जा सके। सदर जमहूरिया आज शाम नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुनक़दा माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिका के मुस्तकबिल के बारे में दो रोजा कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी इजलास से खिताब कर रही थीं। सदर मुर्मू ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली से इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से अनमताव तवाजुन पैदा हो रहा है, जिनमें हयातियाती तनव्वो, पानी की दस्तियाबी और जमीनी वसाइल भी शामिल हैं।

0: सेना ने मुल्क में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके मुल्क ने इस हमले में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों पर बहुत से मिसाइल्स और ड्रोन दागे थे, जिनमें यूक्रेन के अपने बनाए हुए फ्लेमिंगो और पेलिकॉन मिसाइल्स भी शामिल हैं। जापान के आइची नागोया में जारी एशियन गेम्स के आज इफ्तिताही दिन भारत ने चांदी के दो तमगे जीतकर एक मजबूत शुरुआत की है। तीन खिलाड़ियों की टीम एलेवनिल वेलासारा विनोद और सोनम मास्कर ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि एलेवनिल ने भी इंफरादी मुकाबले में एक और चांदी का तमगा हासिल किया। संसद महोदय द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है। क्रिकेट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश से 114 रन से जीत हासिल की है। शेफाली वर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल का पहला सेंचुरी 49 गेंदों पर 100 रन बनाया। स्मृति मंधना ने 19 गेंदों में 37 रन बनाया। भारत ने 4 विकेट पर 195 रन बनाकर बांग्लादेश को 81 रन पर आउट कर दिया। फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेला जाएगा। सुचिका त्रिपाल एशियन गेम्स में खवातीन के रिवायती 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क की पहली एथलीट्स बनकर तारीख रकम की है। भारतीय खवातीन की बैडमिंटन टीम ने कजाकिस्तान से 3-0 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हॉकी में मर्दों और खवातीन दोनों टीमों ने एक बड़ी जीत के साथ शुरुआत की है। मर्दों की टीम ने इंडोनेशिया को पोल ए के मैच में 13-1 से शिकस्त दी, जबकि खवातीन टीम ने अपने पोल बी में उज़्बेकिस्तान को 19-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबोहवा से मुतालिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी तआवुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फजाई मशक के दौरान तैपचिस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारी की अभी तक की यह पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संगे मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर।

दिया आपने लता मंगेशकर की आवाज में आदमी फिल्म का ये नगमा सुना। इसकी फरमाइश भेजी थी झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। अलीगढ़ डबली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, कुलदीप गांधी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके, श्रव्या राम टेके। कोटला पंजाब से रौनक खातून, सबीहा खातून, मुस्कान खातून। समीरा खान, कामरान खान और हुरैन अजीम, मोहल्ला पठान, कुरावली से। नागपुर से भारती प्रकाश रंभाड़े, जानवी रंभाड़े, वैष्णवी हर्षल रंभाड़े। मोंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, अनिल मोहन, उषा मोहन, तिल्लू नायक, पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से। उत्तम सिंह भगत, श्वेता भगत और कीसू पाखोड़ झारखंड से। जॉन सीना, बिया टेलर, सुमित सरिता शामिल हुए दिल्ली उत्तम नगर से। के संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव विदर्भ अकोट से। तो आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा आवाज रफी की है और फिल्म है दिल दिया दर्द लिया।

अगले नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई है चेन्नई ताम्बरम से शाहिद अली इफ़त फारूकी और हिफ्ज़ा अली ने। बाजार फैल शहगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद रिजवान मोहाल ने। कलनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, हिना सईद खोकर ने। दादाजी रोड खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद हसनैन, हस्सू बाबा, सफीहा अरहान खोकर ने। हिरामन सारिका सोनाली और इनके साथी शामिल हुए हैं महाराष्ट्र से। आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान और इनके साथी बागवान मंजिल छोटी बलिया से।

नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले आरती जोंधले शामिल हुए हैं। शबनम अकरम तबरेज और इनके साथी ठीकरी मध्य प्रदेश से। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी। बाबू भाई और भारती देवी जवाहरनगर उदयपुर से। फैज अहमद शाकिर मुल्ला जी, साबिर मुल्ला जी शामिल हुए हैं कर्नाटका हुबली से। ग्राम जगड़गांव अहमद नगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल।

जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा कैथल से, चौधरी सुब्रत शामिल हुए हैं कोलकाता से, एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से, जॉन डिकेस्टो रोजी डिकेस्टो विलिस डिकेस्टो जनकपुरी सहारनपुर से,

देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता और अनिकेत भटकर मानेवाड़ा रोड नागपुर से। मिश्रीलाल वर्मा, मीरा देवी वर्मा और चेतन वर्मा छत्तीसगढ़ तखतपुर से। कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और विश्वकर्मा परिवार। शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी और इनके बहुत सारे अहले खाना शामिल हुए हैं मटकली जिला बरेली से। पानीपत से आशा गुगलानी, जय केवत, संदीप गुगलानी। बेगम सोनम शेख, मारिया आयत शेख, मोहम्मद अरीफ शेख, बांद्रा अरमा कोट मुंबई से। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर ये नगमा, फिल्म है दिल अपना और प्रीत पर आई, आवाज लता मंगेशकर की।

अगले नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई है कर्नाटका गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर बरहट्टी, आसिफ इकबाल।

वासे नगर वीर शहर से किशन सबकार, आशा सबकार, साई विशाल सबकार। अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और वैदिक फूलमाली। रोशन जहां, मन्नत जहां, नुसरत जहां, जेल रोड जालंधर से। नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, चरौदा छत्तीसगढ़ से। स्टेशन रोड जामतारा झारखंड से बबलू अंसारी, डब्लू अंसारी, बेबी आलिया। अजीम बकार, निशा अजीम और मोहम्मद माहिरा अजीम, इंदिरा चौक दिल्ली से। इरशाद अहमद शाह और शाहजहां बेगम कस्बा बलराम से। बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और रूपा शर्मा। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, गांव फरासी हिसार से।

इंदुकर नगर से विजय चौहान, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता और अनिकेत चौहान, आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर से ये नगमा।

इसी के साथ आज का फैमिली स्टार प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। पेश खिदमत है कव्वालियां, फनकार हैं अब्दुल हमीद साबरी कव्वाल और हमनवा।

0: तेजस की परवाज का जनरल मोरेता का फैसला भारत में तैयार करदा जंगजू तैयारी पर उनके एतमाद की एक वाज़ह मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का फिजाइया शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसमें तहकीक को तरक्की और तैयारी तैयार किया जाना भी शामिल है। वीर गार्जियन 2026 वर्ष का आगाज 9 सितम्बर को हुआ था और ये 22 सितम्बर को अख्ताम पजीर हो जाएगी। भारतीय फिजाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में फिजाई शो के तहत एक सेहर अंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें 9 हॉक एम के 132 तैयारों ने एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए करतब पेश किए। दफाई उमूर के वजीर ममलिका संजय सेठ ने शो का नजारा किया और टीम को यह कहते हुए तारीफ की कि इस फिजाइया शो का मकसद नौजवानों को तहरीक देना है कि वो फौज में शामिल हों। वजारत दिफा ने बताया कि तलबा, एनसीसी कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम NSS के रजाकारों समेत 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस शो का नजारा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सेठ ने इस तकरीब को फिर पसंदी, इतिहास से की जाने वाली कार्रवाई, तालमेल के साथ किए जाने वाले काम, पेशावराना महारत का एक काबिल जिक्र इम्तिजाज और भारतीय फिजाइया की शानदार सलाहियतों का एक सबूत करार दिया। यूक्रेन ने रूस पर रात भर 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें मॉस्को को निशाना बनाकर किए गए सैकड़ों ड्रोन हमले भी शामिल है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबायानिन ने इसे राजधानी पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है और एक तेल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने की इत्तला दी है। जनाब सोबायानिन ने बताया कि मॉस्को के वसी इलाके में इस हमले से 2 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि इसकी फौजियों ने मुल्क में 1100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनके मुल्क ने इस हमले में तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों पर बहुत से मिसाइल्स और ड्रोन दागे थे, जिनमें यूक्रेन के अपने बनाए हुए फ्लामिंगो और पेलिकान मिसाइल्स भी शामिल है। विदेश खाजा डॉ जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 21वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। वजीर खारजा इस माह की 26 तारीख को अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 21वें इजलास के आला सतह के सेशन से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉ जयशंकर मुख्तलिफ कसीर जहती और दो तरफा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम ने जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमशीरा अलिमा खान को कल गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अगले हफ्ते उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI की तरफ से एक मनसूबा बंद एहतजाज से पहले गिरफ्तार किया गया है। अलिमा खान को लाहौर में गिरफ्तार किया गया और कोट लखफत जेल में मुंतकिल किया गया। वो अपने 73 साल भाई की रिहाई के लिए मुहिम चला रही हैं, जो 2023 से कैद में है। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने पंजाब में अवामी नज्म नस्क के 1960 के हुक्म इम्तनाई के तहत उन्हें 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। इस कानून के तहत हुक्काम को यह अख्तियार हासिल है कि ऐसे अफराद को हिरासत में ले लें जो अवामी जगहों और नज्म नस्क के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। खान की PTI पार्टी साबिक क्रिकेटर व सियासतदान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितंबर को एक एहतजाज का मनसूबा बना रही है। उत्तर प्रदेश के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने कल वाराणसी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान झारखंड की मनुआ इंतहा पसंद तंजीम तृतीय प्रस्तुति कमेटी TPC के सरबराह ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह बोक्ता उर्फ सरदार जी को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया। गंजू के लिए ऐलान करदा कुल इनामी रकम में से 25 लाख रुपए झारखंड पुलिस की जानिब से मुकर्रर किए गए थे, जबकि NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था। मुल्क भर में संकल्प समारोह का इनेकाद किया गया, जो 100 हफ्ते के नशा मुक्त युवा अभियान के हिस्से के तौर पर था। अभियान का मकसद एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशे से पाक एक नौजवान बिरादरी तैयार करना था। नौजवान और खेलकूद की वजारत ने बताया कि इस मुहिम में नौजवानों ने सरगर्म हिस्सा लिया और पूरे मुल्क में 1067 जगहों पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। जापान के आइची नागोया में जारी एशियन गेम्स के इब्तदाई दिन भारत ने चांदी के 2 तमगे जीतकर एक मजबूत शुरुआत की। 3 खिलाड़ियों की टीम विदर्शा विनोद इलावेनिल वलारिवन और सोनम मास्कर ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि एला वेनिल ने भी इंफरादी मुकाबले में एक और चांदी का तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है। क्रिकेट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश से 114 रन से जीत हासिल की है। शेफाली वर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल का पहला सेंचुरी 49 गेंदों पर 100 रन बनाया। स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन बनाया। भारत ने 4 विकेट पर 195 रन बनाकर बांग्लादेश को 81 रन पर आउट कर दिया। फाइनल मैच में भारत और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेला जाएगा। सुचिका तिनियाल एशियन गेम्स में खवातीन के रिवायती 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क की पहली एथलीट बनकर तारीख रकम की है। भारतीय खवातीन की बैडमिंटन टीम कजाकिस्तान से 3-0 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हॉकी में मर्दों और खवातीन दोनों टीमों ने एक बड़ी जीत के साथ शुरुआत की है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए आसार से निपटने के लिए आबोहवा से मुतालिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी तवान पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहरकात के मुस्तकबिल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फिजाइया सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फिजाई मश्क के दौरान तेजस तैयारों की परवाजी की। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारी की अभी तक की पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 21वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वफद की क्यादत करेंगे और एशियाई खेल मुकाबले में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्द और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात मीडिया वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। पेश खिदमत है क्लासिकी मौसिकी का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए पंडित उमा शंकर मिश्रा से सितार पर राग बीसी तोड़ी।

देखो ये बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा नाता इतना ही है कि तुम गुरु हो, मैं शेरी हूँ।

शबनम हूँ मैं, मोती हूँ मैं, कलियों पे फूलों पे छाया हूँ मैं, कलियों पे फूलों पे छाया हूँ मैं, शबनम हूँ मैं, मोती हूँ मैं, कलियों पे फूलों

0: इसके साथ ही आज का आखिरी शब प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है मीडिया वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए खबरें।
1: ये आकाशवाणी है और आप अब्दुल हफीज से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसा से निपटने के लिए आबोहवा से मुतालिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी ताउन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहरकात के मुस्तकबिल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फिजाइया सबराहान ने जोधपुर में मुश्तरक फिजाई मशक के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की यह पहली परवाज दिफाई तालुकात में एक अहम सन्नी मील है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खातिन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हालिया दिनों में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफात की वजह से आबोहवा से मुतालिक मजबूत इकदाम और आलमी तआवुन की फौरी जरूरत है, ताकि आबोहवा की तब्दीली के मुजर असरात से निपटा जा सके। सदर जमहूरिया कल शाम नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से मुनाकदा माहौलियात और आबोहवा के मुहरिकात के मुस्तकबिल के बारे में दोरोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रही थी। सदर मुर्मू ने कहा कि आबोहवा की दिल्ली से इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से अदम तवाजुन पैदा हो रहा है, जिनमें हयातियाती तनवो, पानी की दस्तियाबी और जमीनी वसाइल भी शामिल है। भारतीय फिजाइया के सरबराह मार्शल एपी सिंह और जापानी फिजाइया जेएएसडीएफ के सरबराह जनरल ताके हीरो मोरिता ने कल जोधपुर में फिजाई करतब के दौरान मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के जंगजू तैयारे तेजस की परवाज की। दोनों सरबराह ने ये परवाजें साथ साथ की। दोनों मुल्कों के फिजाई सरबराह ने ये परवाजें भारतीय फिजाइया और जापानी फिजाइया की मुश्तरक फिजाई मशक वीर गार्जियन 2026 के तहत अंजाम दी। ऐसा पहली बार है कि जापानी फिजाइया के जंगजू तैयारी इस दोतरफा मशक के तौर पर भारतीय सरजमीन पर परवाज कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी में मजीद गहराई लाना है। फिजाइया के सरबराह एपी सिंह ने इस मशक को भारत जापान दिफाई तालुकात में एक बड़ा सन्नी मील करार दिया है। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस की परवाज का जनरल मोरिता का फैसला भारत में तैयार करदा जंगजू तैयारे पर उनके एतमाद की एक आवाज मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का फिजाई शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसमें तहकीक और तरक्की और तैयारे तैयार किया जाना भी शामिल है। वीर गार्जियन 2026 मशक का आगाज 9 सितम्बर को हुआ था और 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय फिजाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में एक फिजाई शो के तहत एक शहर अंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें 9 हॉक एमके 132 तैयारों ने एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए कर्तव्य पेश किए। दिफाई उमूर के वजीर मुमलिकत संजय सेठ ने

0: परवाजें की। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की यह पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संगमील है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉ जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वफद की क्यादत करेंगे और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के दो तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडिया वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। रात के 1 बजने वाले हैं, अब हमारी आज की मजलिस खत्म होती है। कल सुबह 9:30 पर हम अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शुभ खैर, जय हिंद,
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आधारित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू द्वारा दी गई जानकारी, तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ संधू की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस में यह नया हमला ऐसे समय हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइन न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सहायता। लाई हूं आपके लिए बेहतरीन खूबसूरत गोल्डन एरा के वो गीत जो हमेशा हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आई मिलन की बेला। आज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे गीत सुनहरे कार्यक्रम, गीतों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया है मदन मोहन ने और फिल्म का नाम है वो कौन थी।

अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में ये गीत। इसे सुनते हैं अगला गीत फिल्म रूप सुंदरी से। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर की।

गगन भी जो दिशाएं जो पवन भी।

अभी आप सुने, आपने सुना जहां आरा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और आयशा भोसले की आवाज में। लेकिन सुनते हैं अगला गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आयशा भोसले की। ओपी नैयर का संगीत है, गीतकार हैं SH बिहारी। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

इसे सुनते हैं अगला गीत फिल्म संगम से। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीतकार है शैलेंद्र। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: यो सो मोहम्मद रफी और उषा तिमोंती की आवाज के साथ ही ये गीत सुनाए कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें जाने की इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति कहीं और चले गए या अन्य श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सर्विस वोटर सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चल रही लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोस ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण

आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइन न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन की आवाज में गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ। जुड़े रहिए एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल के साथ।

सो नॉन स्टॉप गीत संगीत कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3 बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपनी मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हेती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोन्स के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि एफबीआई और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद और डी गुरकेश ने अनीश गिरी

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत और गजल।

जनाब अब्दुल हमीद आदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें आदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार से

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे गोट्टू वैद्यम उषा विजय कुमार रागम चारुकेसी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक के। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना उषा विजय कुमार का रागम चारुकेसी में गोटू वैद्यम वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह 5 बजने को हैं और अब आप समाचार सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम जिन्हें आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं।

अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे खास कार्यक्रम आओ योग करें, और उसके बाद 5:20 पर आपको सुनाएंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर सुबह हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पवार टंडन का बांसुरी वादन राग ललित में।

सुबह 10 बजकर, माफ कीजिएगा, सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, और 6 बजकर 40 मिनट पर सुनेंगे धर्म ग्रंथों से प्रेरणा कार्यक्रम चिंतन में आज का ये विषय होगा। हर रोज की तरह आज भी सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ, और 6 बजकर 55 मिनट पर सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सुबह 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका होगा और 7:30 पर आप सुनेंगे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम थे जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: 7 गुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो, गुर प्रसाद हर गुण साध गावो।

इन सतगुरु सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया, हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत् संत सरे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुरु रामदास सार अपार परे।

हार अपार परे कवि कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास हार अपार परे।

संतोख सरोवर बसे अमेरा सरसन प्रकाश है, मिलत शांत उपजे दुरत दुरंत नाशे, सुख सागर पायो दिंत हर मकना हुटे, संजम सत संतोख सील स्नह मुफुटे, सतगुर प्रमान बिदने सरयो जग जस तुर बजायो।

आयो जग जितो सतगुर परमान मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनित नाम निदान रिद सिद्ध ताके दासे सह सरोवर मिलो पुरख पेट्यो अविनाशी आधले पवित जित लागत रे सो गुर नाम दृढ़ायो गुरु रामदास कल उचरे।

सत गुर नाम एकले मन जपे धरा तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जीओ तारण तरण खेण मात्र जाको दृष्ट तारे शब्द रद विचार है काम क्रोध खोवै जीओ जिया न सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवै जीओ जाको देख दरिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जीओ सत गोर नाम एकले मन जपे दृढ़

0: सतगुर शब्द यथा अमेत तारास गुट मत माता संतोख पिता सर सह समायो आयुनि संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचर तै जगत उदारन पायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचर तै जगत उदारन पायो
1: तरन करन पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

0: अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो माने तब ही पयो परसन राज जोग तकत दियन राज जोग तकत दियन गुर राम दास।
1: हाँ बल बल जाओ सतगुरु साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फल मन बच कर्म जान अंत दूजा न मान नाम सोया पार सार दीनो गुर थार नल काव पार स्पर्श कच कंच न होए चंदना सुवास जास नृत अन तार जाके देखत द्वारे काम क्रोध की निवारे जी। हम बल बल जाओ सतगुर।

होर मारे जम मैं आवे जाए इहो शरीर जजरी है

सदा आनंद रहै दिन राती विच हौ मैं जाए। जिनी पुरखी हर नाम चित लाया

तेन मिलया मल सब जाए, तेन मिलया मल सब जाए, सच्चे सरनाई।

ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੌ ਜਰ ਪਹੁੰਚੈ ਆਏ।

शरीरा मेरेया इस जग में है आएक ए शरीरा मेरेया इस